यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 MHz पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास के 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून 2026, सुबह के 5:53 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

6:05 पर कार्यक्रम सुप्रभात के साथ नुपुर आपके साथ होंगे। 7 बजे समय रहेगा हिंदी में समाचार का। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR 7:05 पर लेकर हाजिर होंगे रविंद्र सिंह, और 8 बजे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में आपके साथ होंगी नुपुर।

सुबह 9 बजे समय रहेगा प्रोग्राम दिल की तराने, गाने नए पुराने रविंद्र सिंह के साथ। 10 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचार का।

सुबह 10:05 पर प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक में आपके साथ रहेंगी निहारिका। 11 बजे समय रहेगा हिंदी में समाचार का। प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स सुबह 11:05 पर आपके साथ रहेंगे रंजन। 12 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे और 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक में आपके साथ रहेंगी निहारिका।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्यवेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: SR मीडिया एकेडमी।
1: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव, आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन करिए स्वीकार हमारी। नमस्ते, सलाम और प्रेस द लॉर्ड। दोस्तों, कई बार हम मनुष्य बहुत जल्दी ही निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं और नाना प्रकार के नकारात्मक विचारों की वजह से हमारे दिल में सब कुछ खत्म हो गया जैसी फीलिंग्स आने लगती है। लेकिन दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि ऐसे वक्त में तुम परेशान होने के बजाय एकांत में जाकर अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से ये प्रार्थना मांगना कि हे प्रभु, मुझ पर तरस खा, अपनी करुणा मुझ पर दिखा, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में होने पाए। दोस्तों, जब ऐसी प्रार्थना हम करेंगे तो आप अपने जीवन में तुरंत एक परिवर्तन महसूस करेंगे और आपका मन और दिल दोनों शांति से भरने लगेंगे। आपको ऐसा फील होने लगेगा जैसे स्वयं प्रभु आपके पास हैं और वो आपसे कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, निराश मत हो, मैं तो

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हमारा प्रभु हमेशा हमारे साथ साथ चलता है, कठिन राहों पर हमारी मदद भी करता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमारे परमेश्वर ने अपनी हथेली पर हमारा अक्स बना रखा है ताकि हम सदा उसकी नजरों के सम्मुख रहें। वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमारी आंखों के आंसुओं को पोंछकर हमारे दिलों में खुशियां और आनंद भर देता है।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हम सब उस परमेश्वर की रचना है जिसने हम सबको अपनी समानता में अपने हाथों से रचा है, ताकि हम हर दम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करते रहें। जी हाँ, जब हम उसकी आराधना हर पल और हर परिस्थिति में करते हैं तो हमारा जीवन प्रफुल्लित रहता है और प्रभु की आत्मा हमें चिंता मुक्त रखती है। इसीलिए हमेशा उसकी आराधना करते रहें और उसका नाम जपते रहें।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी वाणी आकाशवाणी में। मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ और बिल्कुल स्वागत है आप सभी का इस नई सुबह में। तो कैसे हैं आप? दुआएं हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब अच्छे से तैयार हैं आप एक नए दिन का स्वागत करने के लिए। हर नई सुबह नई शुरुआत लेकर आता है, एक नए सफ़र की शुरुआत। और यूँ भी कह सकते हैं कि जो सपने आप देखते हैं और जिनको पूरा आप करने की पूरी चाह रखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उन सपनों को पूरा करने की ओर एक और कदम आप बढ़ा रहे हैं इस नए दिन के साथ। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आकाशवाणी रेनबो के इस सफ़र में। मैं हूं आपके साथ नूपुर और शुरुआत करते हैं हमारे बेहद खूबसूरत कार्यक्रम की। आप सुन रहे हैं सुप्रभात।

जी हाँ बिल्कुल, आप ज़िंदगी को किस रंग से रंगना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। अब ब्लैक एंड वाइट सी दुनिया में आप कुछ कलर्स भरना चाहते हैं तो ये भी ज़रूरी है, बिल्कुल भरिए। ये रंग बहुत सुंदर हैं और हर एक रंग आपके दिल को छू ले ऐसा ज़रूर हो सकता है। देखिए ना, प्रकृति ने कितने खूबसूरत रंगों से नवाजा है। इन फूलों को देखिए, इन पत्तियों को देखिए, इन पेड़ों को देखिए, और कितने सारे फूल हैं, उनके अलग अलग रंग हैं। और कई बार तो आप देखते हैं कि एक कलर के कितने सारे शेड्स हैं और आप चकित रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि कितना सुंदर है सब कुछ आपके आसपास जो है। तो ये ज़िंदगी वाकई बेहद खूबसूरत है। ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है कि आप ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में किस रंग को शामिल करना चाहते हैं, इसको रंग बिरंगी बनाना चाहते हैं या फिर यूं ही उदास से रहना चाहते हैं और ब्लैक एंड वाइट का कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। ये ब्लैक एंड वाइट से ज़िंदगी भी अच्छी है, लेकिन तभी जब आप बिल्कुल भी निराश हताश ना हो, उसमें भी आप खुश रहना चाहें, क्योंकि जो ज़िंदगी है उसमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है ये हम सब जानते हैं, और इसको और भी बेहतर हम बना सकते हैं। बेहतर बनाने की जो कला है उसे आप सीख सकते हैं, और हर दिन के प्रयास के साथ ये और भी बेहतर होती जाती है, क्योंकि जो जीवन है ना, ये हर नया दिन हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका देता है, कुछ बेहतर करने का मौका देता है और ख़ुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। तो ज़िंदगी का ये जो सफ़र है, इसको गाते गुनगुनाते मुस्कुराते हुए ही हमें बस आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कला है मुस्कुराने की, उसे सिर्फ आपको ही नवाजा गया है। इंसान है जिसको इस कला से नवाजा गया है। क्या आपने कभी पशुओं को हंसते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा। तो इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मुस्कुराएं, खूब हंसें, है ना, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत है और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, अगर उसकी बात करें तो मुस्कुराने का मादा रखें, हमेशा खूब मुस्कुराएं। कल क्या आने वाला है, कौन सी नई चुनौती आपके सामने होगी, आप नहीं जानते, लेकिन अगर आपका रवैया, आपकी सोच, आपके विचार सकारात्मक हैं तो फिर कुछ तो आसान हो ही जाएगा। और ये जो आपकी मुस्कुराहट है ना, ये बहुत सारी समस्याओं का सामना कर सकती है और समस्याओं का हल भी रखने का दम रखती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल तैयार होंगे ना इसके लिए, ये तभी होगा। और जानते हैं, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, सिर्फ इसे कहिए मत, लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल। ये हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपके मन मुताबिक भी ना चीज़ें हो रही हों, लेकिन अगर आप मुस्कुराने की हिम्मत रखते हैं, इस मुस्कुराहट को कायम रखते हैं और अपनी ज़िंदा दिली को मरने नहीं देते, तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है अगर आप हिम्मत ना हारें। तो इसलिए बिना हिम्मत हारते हुए मुस्कुराहट के साथ ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए। ये तो बात हुई एक बात कि कैसे आप अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं और इस कला को सीख सकते हैं। क्या क्या बातें हैं, क्या क्या विचार हो सकते हैं इससे जुड़े हुए, बिल्कुल आपसे बात करते रहेंगे। आप जुड़े हुए हमारे साथ इसी सफ़र में जिसका नाम है सुप्रभात।

ये दिल छोटा सा वाकई है और कितने सारे सपने देखता है, उन सपनों को पूरे करने की पूरी हिम्मत रखता है। और ये ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है और इसको आप और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं अगर आप छोटी छोटी बातों को सीख जाएं और छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना भी छोड़ दें तो भी अच्छा हो जाएगा, है ना। और चीज़ें ना आखिरकार बेहतर हो ही जाती हैं। जब भी कोई परेशानी आती है तो वो हमें हैरान परेशान कर ही देती है, ये स्वाभाविक भी है, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात करें और अगर आप जब भी परेशान होते हैं, आप किसी से जुड़ते हैं किसी समाधान के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बात आपको समझ में आती है कि बुरे से बुरा दौर भी आखिर बीत जाता है। जीवन ऑड है तो इवन भी है। अब खुशियां हैं तो सफ़र में कांटे भी हैं, फूल हैं तो कांटे हैं, सुबह है रात है और दुख है सुख है। और ये जो पहिया है जीवन का वो यूं ही चलता रहता है, घूमता रहता है, है ना। तो अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप चीज़ों को कैसे लेते हैं, कब तक किस चीज़ के पीछे आप कितना खुद को परेशान करते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर कोई बात कुछ भी जो भी हुआ है वो आपको एक लर्निंग देके जाता है ना। तो आप उससे सीखते हुए ख़ुद को कितनी जल्दी उस चुनौती से उस परेशानी से बाहर निकालते हैं, ये पूरा सब कुछ आप पर निर्भर करता है। क्योंकि ज़िंदगी पता नहीं हम कितने वक्त यहाँ हैं और उस भी अगर हम हैरान हैं परेशान हैं तो इससे बाहर आना ज़रूरी है। इस नादानी से ख़ुद को निकालिए, ये नादान मत बने रहिए। जीवन में हर चुनौती का सामना आपको करना ही पड़ता है, या तो आप उसके लिए तैयार रहिए और तैयार नहीं है तो ख़ुद को तैयार कीजिए, क्योंकि चीज़ें आखिरकार बेहतर हो जाती हैं, इसलिए उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी का सफ़र बेहद ही खूबसूरत होता है। आप इसे खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे परेशान ना होकर। पहली बात तो ये, हमेशा खूब खुश रहें, मुस्कुराएं। मुस्कुराने की भी प्रैक्टिस की जा सकती है, हाँ। अभिनय करना ना, जब आप कलाकार को देखते हैं कि वो अभिनय कर रहे हैं तो सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगता है। और आपने देखा भी होगा ना कि कितना टफ है सब कुछ, कितनी लाइफ की सिचुएशंस टफ है और कैसे कोई भी एक करेक्टर है वो उस टफ सिचुएशन में उन हालातों का सामना करते हुए कैसे कैसे चीज़ें कर रहा है ना, और आखिरकार वो उससे निकल जाता है, कोई ना कोई समाधान हमें मिल जाता है, कोई ना कोई लर्निंग के साथ वो निकल जाता है और सब बड़े खुश हैं। कल्पना है वो जो दुनिया है और आप जो सोचते हैं, आपकी जो कल्पना शक्ति है उसको आप कितना मजबूत बनाते हैं, आप जो अपने लिए चाहते हैं आप उसको बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल निर्भर करता है आपके विचारों पर, आपकी सोच पर, आपकी कल्पना शक्ति पर। तो इसलिए इस पर विश्वास करें, इसकी ताकत को समझिए, आप हर परिस्थिति को बदलने की हिम्मत रखते हैं, आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफ़र में। गाना सुनेंगे अभी आप बॉम्बे फिल्म का, बेहद पसंद है मुझे गीत और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा।

मुझे आपसे कहना है और पूछना है कि आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है, आप किस चीज़ में सबसे अच्छे हैं, या फिर आपका टैलेंट क्या है? सोचना पड़ रहा है, भूल गए हैं कि बहुत अच्छा डांस करते हैं, या बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, और गाते भी बहुत अच्छा है। और सब बड़ा आपसे कहते थे कि क्या प्यारी सी आवाज़ है, कितना सुंदर गाते हैं आप, और बहुत अच्छा योग करते हैं आप, और बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, बहुत ही प्यारी बातें, बहुत ही सकारात्मकता भरी बातें। जब आपके पास लोग बैठते हैं तो सबको लगता है कि पूरा माहौल ही बदल गया है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं, यही तो है, आप भूल रहे हैं खुद को। तो ज़रा खींच कर वापस लाइए खुद को, भूलना नहीं है, खोजना है। अगर टैलेंट नहीं याद आ रहा है तो ज़रा देखिए, सोचिए कि क्या बात है जो आपको औरों से अलग बनाती है, क्या करना आपको सबसे अच्छा लगता है। तो जो बहुत अच्छा लगता है करना, उस पर थोड़ा सा वक्त बिताइए, है ना, जाइए उस तरफ, कुछ चीज़ों से खुद को निकालते हुए उस ओर जाइए जहाँ पर खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि ये भी आपकी ज़िंदगी को बेहद बेहद खूबसूरत बनाता है। तो छोटे छोटे कदम हैं ज़िंदगी के इस सफ़र को खूबसूरत और आसान बनाने के लिए।

तन्हा तन्हा बिल्कुल यहाँ पे नहीं जीना है, और जो जो दिल में बात है ना वो दिल तक ही नहीं रहनी चाहिए, वो किसी से शेयर कर देनी चाहिए। जैसे हम आपसे जुड़ते हैं दिल से दिल तक, हमारा आपसे कनेक्शन है, कितनी सारी बातें हैं जो यहाँ पर आपके साथ साझा होती हैं, और कोई ना कोई बात ज़रूर ऐसी होती होगी जो आपके दिल को ज़रूर छूती होगी, है ना, और वो बात ज़रूर आप तक पहुँचती होगी जो कुछ आपने सवाल किया होगा और आपने चाहा होगा कि इसका जवाब मिल जाए। तो किसी ना किसी रूप में आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंच जाते हैं। कई बार आप कुछ कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो वो भी एक ज़रिया बनता है, और कई बार आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमें सुन रहे हैं, तो भी बातों में ऐसी बात निकल कर आती है जब आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ सवाल किया था, उसका जवाब आपको मिल गया है। तो बिल्कुल ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत है, इसमें आपको रंग भरने हैं खुशियों के, और खुशी का दामन, खुशी का जो साथ है वो आपको थामे रखना है, है ना, और हम बिल्कुल आपको बिल्कुल रोके रखे हुए हैं और बिल्कुल बताना चाहते हैं कि अभी कुछ ही देर में जो कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा तो कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनेंगे, कौन कौन से कार्यक्रम आप तक पहुंचेंगे, तो बिल्कुल जान लेते हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और इसमें आपका साथ देंगे रविंद्र सिंह। उसके बाद गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे सेगमेंट में मैं जुड़ूंगी आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ। फिर आप सुनेंगे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक दिल के तराने गाने नए पुराने, इसमें भी आपके साथ होंगे रविंद्र सिंह। उसके बाद समय रहेगा प्रोग्राम, जी हाँ बिल्कुल बता देती हूँ कौन सा प्रोग्राम आप सुनेंगे, मैचलेस म्यूज़िक आर में आपके साथ होंगी निहारिका। उसके बाद बॉलीवुड की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स में रंजन अर्नेजा,

उसके बाद समय रहेगा मेरा वाला सॉन्ग कार्यक्रम का, और उससे पहले आप सुनेंगे 12:05 से लेकर 1 बजे तक प्लेट कुल, इसमें भी आपके साथ होंगी निहारिका। मेरा वाला सॉन्ग में आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे रंजन अरनेजा, और उसके बाद आप सुनेंगे आशियाना ज्योतिका सिंह के साथ, और उसके बाद समय है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, इसमें आपके साथ होंगी चंद्रानी मुखर्जी, अल्फाजन में आपके साथ होंगी ज्योतिका सिंह, और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 4:05 से लेकर 5 बजे तक, और उसके बाद सिटी लाइट्स में आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगी सिटी की खबरों के साथ चंद्रानी मुखर्जी 5:05 से लेकर 6 बजे तक। मिसेज मसाला मिक्स आप सुनेंगे माफ कीजिए सुनीता शहबादी के साथ, और उसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूज़िक सुजॉय के साथ, और उसके बाद म्यूज़िक मस्ती में आपके साथ होंगी सुनीता शाहबादी, और आपकी याद आती रही कार्यक्रम में आपके साथ होंगी जरीना। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। उसके बाद वीकेंडर प्रोग्राम में आप फिर एक बार जुड़ेंगे सुजॉय जॉन के साथ, और जरीनाज होंगी आपके साथ प्रोग्राम रंगे महफिल में। तो ये कार्यक्रम इस सफ़र में आपके साथ होंगे, और ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़ रहे हैं बस हमारे साथ, और मैं नूपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यकीन मानिए कि आपकी खुशियाँ जो हैं वो किसी और पर निर्भर नहीं करती हैं। फिर मिलेंगे जल्द ही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, आपकी वाणी आकाशवाणी और यहाँ पर हम हैं आपके दोस्त रविंद्र सिंह। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हम सुप्रभात से शुरुआत तो कर चुके हैं, लेकिन अब और गुड गुड बनाने के लिए हम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के लिए लाए हैं बहुत कुछ खास। आपको बस करना क्या है, जुड़े रहना है हमारे साथ, क्योंकि ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत है आपका हर पल। जितनी भी खुशियां आज आपके पास है ना, इससे भी अधिक हो कल, यही तो हमारे दिमाग में चल रहा है। भाई साहब सही चल रहा है ना? अगर सही चल रहा है तो बस सुनते रहो 102.6 FM रेनबो कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, क्योंकि आपके सामने जो है ना खिड़की जब खोल कर देखोगे तो क्या है, सवेरा।

तो सामने अगर सवेरा है तो आपको उस सवेरे को देखना चाहिए बहुत प्यार से, क्योंकि खूबसूरत सुबह जो है बाहें फैलाकर कह रही कि भाई अब तो चलना है ना अगले कदम की तरफ, क्योंकि एक खूबसूरत से सुबह यहाँ पर आ चुकी है। तो हमको बस इतना ही कहना है अपने प्रभु से कि भाई एक और सुबह मेरी झोली में डाल तो दी है मेरे प्रभु, आज हर पल को तेरे ही मुताबिक गुजारूं, या आशीर्वाद दे मुझे। फिलहाल कैसे जिएंगे ये तो हमें समझना होगा, क्योंकि अगर हम जान लेते हैं आज के मौसम का हाल तो फिर सब कुछ हो जाता है कूल कूल, और हम हो जाते हैं इस मौसम को देख के जमाजम मस्त हाल। तो आज जो दिल्ली का तापमान रहने वाला है 31 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान रहने वाला है थोड़ा सा इससे कहीं ज़्यादा। आपको क्या करना है, इस मौसम के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना है, क्योंकि गर्मी में जब सर्दी का एहसास होने लगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है और हमारा मन भी बदलता है, और इस मन को मत बदलिए क्योंकि हम बदलने नहीं देंगे, और प्यारे प्यारे गीत आपको सुनाते रहेंगे। तो चलिए बदलते मौसम के साथ प्यारा सा गीत। मन का क्या है, जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे मन बदलता है, और जैसे सुबह होती है सुबह का विचार होता है वैसे ही पूरा दिन बना रहता है। तो आपको खूबसूरत विचार अपने जहन में लाना है और बस निकल पड़ना है।

देखा, मन की बात जब होती है तो फिर मन से ही करनी चाहिए, और इसके साथ साथ जब तन की बात होती है तो तन से करनी चाहिए, और यही जिंदगी का मकसद होता है कि भाई हम आरोग्य रहें, और अगर हम आरोग्य रहते हैं तो फिर सब कुछ ठीक होता है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं आरोग्य पथ में योग और पोषण की, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अगर हम इसके बारे में बात नहीं करते, नहीं सोचते, नहीं समझते हैं तो फिर एक उम्र के पड़ाव पर आकर हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है जो हमारे जिंदगी में अगर सबसे बड़ा धन कोई कहा जाता है तो वो है हमारा स्वस्थ शरीर, और उसको स्वस्थ रखना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह की चीजें खान पान में मिलती हैं, वो अगर जरा भी गड़बड़ होती हैं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हमें जागरूक करने के लिए कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर होता है जिससे हमें अलर्ट किया जाता है कि भाई साहब, जिंदगी में अगर सबसे कीमती कोई चीज है तो वो आप खुद हो और अपना ख्याल रखो, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए बहुत खास हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं इस शरीर की, योग और पोषण की, जो कि आपस में बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। पूरे स्वास्थ्य के लिए योग जो है, यानी आसन और जो प्राणायाम है, उसके साथ सात्विक और संतुलित पोषण का तालमेल बहुत जरूरी होता है, और ये हमारे लिए हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से निरोगी और ऊर्जावान बनाए रखने का एक बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है। योग की भूमिका भी हमारे जीवन में बहुत होती है। अगर हम योगाभ्यास नियमित करते हैं तो शरीर में हमारे लचीलापन रहता है, जैसे कि एक बच्चे से छोटे से बच्चे के शरीर में रहता है, और हमारी जो आंतरिक अंग है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनका जो सिस्टम है, बहुत बेहतरीन रहता है। पाचन तंत्र हमारा ठीक रहता है, थायराइड और हार्मोन का संतुलन बना रहता है, हमारा मन भी शांत रहता है, यानी कि मानसिक शांति और डिप्रेशन के लिए सबसे अच्छा है शवासन और प्राणायाम, ये जो है, और अनुलोम विलोम जैसे जो, और भ्रामरी, ये सर्वोत्तम आसन है। अगर आप इनको करते हैं तो मानसिक तनाव से दूर रहते हैं, और इसके साथ साथ आहार का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। योग के अनुसार आपका भोजन ताज़ा, प्राकृतिक और मौसम के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि मौसमी सब्जियां और फल ज़रूर आपको खाने चाहिए, और संतुलित आहार रहें, अपनी थाली में मौसमी यानी सब्जियां, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज और नट्स को आप शामिल करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है भाई साहब, हमको यहाँ पर एक नियमित तो डाइट चार्ट बनाना होता है, सलाह लेनी होती है, और उसके बाद डेली ना सिर्फ खुद बल्कि अपने परिवार को भी उसी रास्ते से ले जाना होता है, और अगर हम इस तरह से चलते हैं तो सब कुछ बेहतरीन होता है। कहते हैं क्या कि अगर स्वास्थ्य ठीक है, शरीर में सबसे ज़्यादा अहमियत कोई चीज़ रखती है तो वो है हमारा शरीर, हमारा स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है ना। तो सब कुछ तो आपका है, जानकारी भी, चैनल भी, आवाज़, जज्बात, सब कुछ। ध्यान रखिए अपना। कोशिश यही है कि दिल के तार दिल से जुड़े रहें, दिल की बातें दिल तक होती रहें, और वो बातें जो जिंदगी में बहुत काम की है। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

देखा, कोशिश यही है कि गीत आपके दिल में उतरते रहें, लेकिन सब कुछ तेरा है का मतलब ये संसारी भाई पूरा आपका ही है अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए चलते हैं। हाँ, तो मैं हाथ डाले और एक खूबसूरत सा देश बनाते हैं, और जब खूबसूरत देश बनता है तो अलग अलग देश इसी तरह से जब खूबसूरत हो जाते हैं तो हमारा ये जहान बहुत खूबसूरत हो जाता है। लेकिन लेकिन जब हम बहुत आगे आ जाते हैं तो एक बार हमें पीछे मुड़कर ज़रूर देख लेना चाहिए कि हमने ज़िंदगी में क्या क्या पा लिया है और क्या चीज़ें हमसे छिटक कर दूर चली गई हैं, जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी हो जाता है ताकि हम उस पहली शुरुआत के बारे में जान सकें जो लोगों ने की थी और जिसकी बदौलत हम आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हैं, हम बात कर रहे हैं इतिहास के पन्नों में आज की तारीख की। जी हाँ, 12 जून। दरअसल 12 जून 1817 का क्या इतिहास है? इस दिन जर्मन आविष्कारक कार्ल ड्रेस मैनहेम ने अपना बांका घोड़ा ड्रेसिन या लॉफ मास्काइन साइकिल जो थी उसका सबसे प्रारंभिक रूप चलाया था, यानी साइकिल का सबसे पहला प्रारूप था ड्रेसिन या लॉफ मास्काइन इसका नाम था। इसी तारीख में 1964 की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेता नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 1967 में वेनेरा 4 लॉन्च किया गया था। वीनस शुक्र की खोज के लिए सोवियत वेनेरा कार्यक्रम में एक जांच थी, किसी अन्य ग्रह के वातावरण का इन प्लेस विश्लेषण करने के लिए ये पहली सफल जांच थी। इसी तारीख में 1968 की बात करें तो यूएस में रोजमरी की बेबी फिल्म का प्रकाशन किया गया था, और 1994 में दुनिया के सबसे बड़े ट्विन जेट विमान बोइंग 777 ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। 1905 की अगर बात करें तो सेवर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन पुणे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था, जिन्होंने इस संघ के गठन के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया और उनके साथ नरेश अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर और अनंत पटवर्धन जैसे शिक्षित भारतीयों का एक छोटा सा समूह था जो भारत में सामाजिक और मानवीय विकास को बढ़ावा देना चाहते थे और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो ये जो तारीख है ना, वो बहुत कुछ कहती है। 1990 में अगर आ जाए तो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह

इनसेट 1D लॉन्च किया गया था। ये एक परिचालन बहुउद्देशीय संचार और मौसम विज्ञान उपग्रह है। यह अभी भी सेवा में है और इसे यूएस के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर के यूएस डेल्टा लॉन्च वाहन द्वारा लॉन्च किया गया था। ये दूर संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज और बचाव कार्यों को पूरा करने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक बहुउद्देशीय भू स्थिर उपग्रह था। देखा आपने कितने पड़ाव पार करने पड़ते हैं जब हम जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंच पाए हैं जहां दुनिया भारत की ओर देखते हैं। और ये भारत यूं ही भारत नहीं बना। कहते ना, छोड़ो कल की बातें हैं, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नहीं गाने, है ना। लेकिन ये रंग बिरंगी विविधताओं में जो एकता देखने को मिलती है वो दुनिया के किसी देश में देखने को नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ भारत में।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: वेलकम बैक जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद अब वापस आ गए हूं और चल रहा है सिलसिला गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र। और अब बात एक बहुत ही मतलब गंभीर बात हम आपसे करने जा रहे हैं दोस्तों। कल्पना कीजिए एक मैदान जहां हर बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है, सपने बुन रहा है। भारतवर्ष में प्रारंभ से बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है। सोचा है कभी ईश्वर के बाल रूप, बाल गणेश, बाल गोपाल, बाल कृष्णा, बाल हनुमान इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। भारत की धरती ध्रुव, प्रहलाद, लवकुश और अभिमन्यु जैसे बाल चरित्रों से पटी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि रविंद्र जी ये आप हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बात ही ऐसी है, आज के दिन इन्हीं बच्चों को लेकर डिसाइड किया गया है। क्यों ये भी बताते हैं, लेकिन समझते हैं पहले, क्योंकि बचपन की हमने बात की है, बच्चों की बात की है, तो बचपन जो होता है हमारा हो, आपका हो, किसी का भी हो, वो बहुत अनमोल होता है, जिसमें बच्चों के हाथों में किताबें, आंखों में सपने और मन में नई उड़ानें होनी चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन भाई आज भी कई बच्चे शिक्षा और खेलकूद से दूर हैं, मजबूरी में श्रम करने को विवश हैं, काम करते हैं, अपने घर की जीविका चलाते हैं। आज भी लाखों बच्चे मैदान की जगह मकानों में, दुकानों में और कारखानों में अपना बचपन गंवा रहे हैं। जब भी जानते हैं संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के माध्यम से कहता है कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा, धारा 24 कहती है। लेकिन हम कई जगह बच्चों को काम करते देखते हैं। बाल श्रम दिन ही ऐसा है आज, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। दरअसल बाल श्रम है ना बच्चों के अधिकारों का हनन और उनके बेहतर भविष्य के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है। इस मौके पर हम सभी ये संकल्प लें कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन का अवसर मिल सके, इसके लिए दिल से और गंभीरता से प्रयास करें, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा।

और हम मिलकर ये कह सकते हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ किसी बच्चे का बचपन जो है ना काम के बोझ तले दबे नहीं, बल्कि उसके सपने खुलकर उड़ान भर सकें। उनका भी खुला आसमान हो और खुले आसमान में उड़ना सीखे, जो उनके सपने हैं उन्हें पूरा करना सीखे, यही तो जिंदगी है।

हाँ जी, तो प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में, हूँ आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र। उम्मीद कर रहे हैं प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें बहुत पसंद आते हैं, और अगर हम पुरानी यादों में जाते हैं और उनसे रूबरू होते हैं तो फिर कहने क्या हमें इस

में भी अपनी यादें ताज़ा कराते हैं। एक गीत है जिसमें हम आपको ले चलते हैं टाइम मशीन के ज़रिए, यानी कि अपने मन के ज़रिए, अपने ख्वाबों के ज़रिए, अपने विचारों के ज़रिए उस दौर में जहाँ पर ये गीत लोगों के दिलों पर राज करता था और सुपर डुपर हिट कहा जाता। ज़रा इसको ये जो हिट गीत है इसको सुनिए और कल्पना कीजिए कि वो दौर कैसा रहा होगा। थोड़ा सा डिफरेंट, जहां म्यूजिक और आवाज पहचान होती थी, और इसके साथ ही कुछ चेहरे ऐसे होते जो दिल में उतर जाते थे और हमेशा हमेशा के लिए यादों में बचाते थे। ऐसा ही एक चेहरा इस गीत में भी है, उसकी बात करेंगे।

बस बात तो ये है कि ऐसा कौन है जो ख्वाबों पर छा गया, और वो कौन सा खूबसूरत चेहरा है जो जिसके लिए हम बात करने जा रहे हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं खुर्शीद अख्तर यानी कि श्यामा, जो फिल्मी अभिनेत्री थी, बॉलीवुड की एक बेहतरीन अदाकारा थी और उस दौर की इतनी खूबसूरत हीरोइन थी। कहते हैं कि सन 1950 का जो दशक था वो मशहूर अभिनेत्री श्यामा का नाम सुनते ही आज भी उस दौर के जो हिंदी सिनेमा के चाहने वाले हैं उनके जहन में एक बेहद खूबसूरत सा, चुलबुला सा और बेहतरीन अभिनेत्री का चेहरा जहन में आ जाता है। ज़्यादातर लोग शायद इस बात से परिचित होंगे कि अभिनेत्री बनने से पहले श्यामा करीब 50 फिल्मों में, सोचिए 50 फिल्मों में बाल और अतिरिक्त कलाकार के तौर पर छोटे मोटे रोल करती रही थी। उनकी अगर फिल्मों की बात करें तो बहुत सारी उन्होंने बेहतरीन फिल्म दी हैं, श्रीमती जी, आर पार, हथियार, खेल खिलाड़ी का अजनबी, हनीमून, मिलन, बरसात की रात और भाभी जैसी हिट फिल्में दी हैं और उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। और जहाँ तक बात करें उनकी जो करियर था पूरा, उन्होंने कभी भूमिकाओं की सीमाएं तय नहीं की। यही कारण था कि फिल्म शारदा में उन्होंने अपनी हम उम्र अभिनेत्री मीना कुमारी की माँ का किरदार भी पूरे आत्मविश्वास से निभाया था और इस शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहनायिका का पुरस्कार भी मिला था। आज उनकी जयंती है, हम इस बहुमुखी अभिनेत्री को नमन करते हैं जिन्होंने अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर को और भी यादगार बना दिया था। और कहते हैं कि समय में कितने भी आगे बढ़ो लेकिन इतना धीरे चलना चाहिए कि हम आसपास की चीजों को देखते रहें और वो जो यादें हमारे जहन में बसी उसे याद करते रहें।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: जी, हम वापस आ गए हैं बस थोड़े से ब्रेक के बाद। आप अभी हमें अगर सुन रहे हैं तो हम आपको फिर से बताते थे भाई साहब, कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, और उसको आगे बढ़ाएंगे ऊपर हमारे। ठीक बात, आपको क्या करना है, बस जुड़े रहना है बिल्कुल हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां तो होती हैं हमारे पास। इसके साथ साथ प्यारे प्यारे गीत जब बजते ना, तो बस हम नहीं रहते, आप नहीं रहते, और जब हम नहीं रहते, आप नहीं रहते, तो क्या हो रहते हैं? अब कुछ भी रहते हो भाई साहब, उस समय तो नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि आपके दिल के तार हमारे दिल के तार से

जुड़ते हैं जब, और चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है और आपके संदेश जो हम तक पहुंचते हैं, बस दिन बना देते हैं भाई साहब हमारा। चलिए अब जब दिन बनाने की बात करें तो हम अपने विचारों की इस टाइम मशीन में और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, इसी दौर में रहते हैं, और बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने पहाड़ों को चीर कर रास्ते बना दिए और हमारे लिए ज़िंदगी और भी आसान हो गई, और हम ये समझ गए कि भाई साहब जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं होता। चलिए बात कर देते हैं। आप कल्पना कीजिए, एक इंसान जो पहाड़ों को चीर देता है, समुद्र को लांग लेता है, लाखों सपनों को ट्रैक पर ला देता है, एक इंजीनियर जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया, कई पहाड़ियों को पार किया जिनमें बेहद चुनौतियां थीं और हमारे सफर को आसान कर दिया, और पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं हुआ, यानी बजट भी बहुत ज्यादा नहीं लगा, और वो शख्स कोई और नहीं है, वो है हमारे हीरो ई श्रीधरन, जिनको मेट्रोमैन के नाम से जानते हैं। कोंकण रेलवे की चुनौतीपूर्ण पहाड़ियों को पार किया, दिल्ली मेट्रो को समय से पहले बजट के अंदर पूरा करके दिखाया, और हमारे प्यारे मेट्रोमैन साहब की जो मेहनत है आज आप देख रहे हैं, दिल्ली में जगह जगह जब हम जाते हैं कहते वाह मेट्रोमैन साहब थैंक यू सो मच। भाई साहब उनकी मेहनत, उनकी निष्ठा और उनका अटूट विश्वास ने दिल्ली मेट्रो को सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि एक सपना बना दिया, और देखते ही देखते भारत का ये सपूत लोगों के दिलों में समा गया। 93 साल की उम्र में भी उनकी आंखों में वही जुनून, वही ईमानदारी हमेशा रहती है, बल्कि 90+ ऊपर हुए, और जो आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देती है। श्रीधरन साहब, आपने साबित कर दिया कि सच्ची लगन से कुछ भी असंभव नहीं है, और हम सब भारतवासी आपके इन प्रयासों को सल्यूट करते हैं।

तो चलिए इस गीत के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं, गीत यूं ही बजता रहेगा और आपके दिल के तार भी यूं ही झनझनाते रहेंगे। जिंदगी में कभी ज्यादा किसी चीज के लिए परेशान मत हो, इसलिए जिंदगी जैसी है चलने दो। बाय बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आह बेलिसिमो,
2: stop.

कुड़ी बिल्कुल जानी पहचानी है और शहर भी कहाँ अनजाने रह जाते हैं जब हम और आप मिलते हैं आकाशवाणी रेनबो के इस सफर में। और शहर चाहे किसी भी शहर से आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन दिल से दिल तक का कनेक्शन तो बिल्कुल है। और नए नए जुड़े हैं तो वो कनेक्शन बिल्कुल हो ही जाता है और ये कनेक्शन जो है वो बिल्कुल आपसे बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट। और ज़रूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स और हमारे ही स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहें। बस यही दुआ रहती है, उसी दुआ के साथ मैं नूपुर कुलश्रेष्ठ स्वागत कर रही हूँ आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में।

ऐसे अगर मौसम अच्छा हो ना तो रूठे हुए को भी मनाना आसान हो जाता है, ऐसा है क्या? वैसे कोशिश की जा सकती है, क्योंकि जब मौसम अच्छा होता है तो मूड तो बदलता ही है और आप तो अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। फिर आप जब अच्छा महसूस करते हैं तो सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात हो भी गई थी तो चलो मना लेते हैं, मान जाते हैं। और देखिए ठंडी ठंडी हवा जो है वो आपके चेहरे को स्पर्श कर रही है, और सुबह बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। इनफैक्ट अभी भी अच्छी तेज़ गति से हवा चल रही है। और आज अगर आज के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान रहने वाला है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, और बारिश होने की संभावना है, हल्की बारिश होने की पूरी पूरी संभावना है। और आने वाले दिनों में भी अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम अच्छा रहेगा, थोड़ा सुहावना रहेगा, बादल छाए रहेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा गर्मी है उससे थोड़ा सा जो आने वाले दिन हैं उसमें बचा जा सकता है, ऐसी उम्मीद है और ऐसे वेदर फॉरकास्ट है। तो आप इसी उम्मीद के साथ हम ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते रहते हैं, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और इस उम्मीद को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि होप से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उम्मीद बनाए रखें। मैं आपके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है आकाशवाणी रेनबो। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: आकाशवाणी रेनबो के सफर में आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल चलते जाना है। जब आप घर से भी बाहर निकलें तो बिल्कुल तैयार होकर निकलें और सफ़र की पूरी जानकारी के साथ निकलें कि आपका सफ़र कैसे रहने वाला है। और जब भी हम सफ़र पर निकलते हैं तो हम चेक कर लेते हैं ना कि कौन सा रूट हमें फॉलो करना चाहिए, कौन सा रूट अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल टाइम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचें और किसी भी तरह की तकलीफ आपको ना हो। तो इतनी स्मार्टनेस तो आपको दिखानी चाहिए, है ना? बिल्कुल। और ताकि आप ट्रैफिक से बचें और बाकी पूरी तैयारी के साथ आप निकले, कोई भी बहाना ना हो, ना मौसम का बहाना हो, अच्छा है, कैसा है, धूप है, तपिश है, किसी भी बहाने की ज़रूरत नहीं होती जब आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। तो ये जो सफ़र है उसकी शुरुआत हो चुकी है और सफ़र में बहुत सारी जानकारियों के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं, और वो जानकारी जो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी है जानना। और बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी कि सफ़र को और खूबसूरत आप कैसे बना सकते हैं। आप जुड़ रही हैं हमारे साथ, हम रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन फिर लौट कर आएंगे। ब्रेक्स लाइफ में आते रहते हैं लेकिन ज़िंदगी हमारी यूं ही आगे बढ़ती रहती है। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
7: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
8: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
7: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
8: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
9: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में, और जिस लड़की की तलाश आपको है वो कहाँ पर है वो तो आपको ही पता होगा, वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो जो बातें मुझे पता है वो मैं आपको बता सकती हूँ। और अगर हम बात करें कुछ एडमिशन्स की, तो इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेंस में पोस्ट ग्रेजुएट और PhD प्रोग्राम के एडमिशन के लिए पोर्टल खुल चुका है, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन तो 22 जून से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी इस साल BSc MSc के इंटीग्रेटेड कोर्स भी शुरू कर रही है। इंटीग्रेटेड BSc MSc मैथमेटिक्स कोर्स के लिए दाखिला प्रक्रिया जो है वो जुलाई में शुरू होगी। और इग्नू में भी 36 PhD प्रोग्राम्स के लिए जो एडमिशन है वो जो विंडो है वो ओपन हो रही है, और कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है आवेदन करने की, और 1 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कई कोर्सेज हैं, जैसे कि 36 PhD प्रोग्राम्स के बारे में बात की है, तो उसमें अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स, थिएटर, म्यूज़िक, डांस, स्पेशल वर्क, सोशल वर्क माफ़ कीजिए, और होम साइंस। तो काफ़ी कोर्सेज हैं 36 PhD कोर्स, और आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, जो आपका बैकग्राउंड रहा है उसके हिसाब से अगर आप PhD में आगे फर्दर पढ़ना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं, शुरुआत कल से हो चुकी है, और आप www.ignu.ac.in या एडमिशन पोर्टल ignu-phd-samarth.edu.in के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल जुड़ रही हैं हमारे साथ, और भी जानकारी के लिए आप सुन रही हैं आकाशवाणी रेनबो।

तो आपको भी कई कॉल्स आती हैं और आप समझ नहीं पाते, कई बार आपको लगता है कि आपके बैंक से कॉल आ रहा है, आपके बैंक से कॉल आती है और आपको बोलते हैं कि आपने इसके लिए अप्लाई किया था और आपका ये अमाउंट कट सकता है, या फिर कई बार आपको ऐसे मेल्स आते हैं और आप उस पे लिंक पर चले जाते हैं और कोई ना कोई फ्रॉड आपके साथ हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए लगातार अवेयर किया जाता है कि जो साइबर क्राइम है, जो बढ़ रहा है, उसको कैसे रोक सकते हैं आप और उससे आपको जो नुकसान पहुंच सकता है उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग, पहचान चोरी और ऑनलाइन हरेसमेंट जैसे जो खतरे हैं, उनसे बच्चों को, इनफैक्ट पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी इसको लेके गाइड किया जा रहा है, बच्चों को इससे बचाया जा रहा है। और इसी को लेकर अब डिजिटल हाइजीन जो है ये अब स्कूलों में स्टार्ट किया जा रहा है। सीबीएसई ने अपने सभी स्कूलों में पेज की शुरुआत करने को कहा है ताकि साइबर अपराधों को जो लेकर जागरूकता बढ़े और सिर्फ स्टूडेंट्स ही अवेयर नहीं हो बल्कि टीचर्स और पेरेंट्स भी सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिस की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंचे कि वो किस तरीके से चीज़ों को करें। जैसे कि अगर आप कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मज़बूत और यूनिक पासवर्ड आप बनाना सीखें, सॉफ्टवेयर अपडेट करना सीखें और जो भी लिंक्स आ रहे हैं वो आप समझ पाएँ कि ये फ्रॉड है। अटैचमेंट जो हम क्लिक करते हैं उससे आपको कैसे बचना है, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कैसे चालू करना है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर IFOC ने साइबर सेफ्टी को लेकर कैंपेन की शुरुआत की है ताकि स्टूडेंट्स के अलावा, अगेन, टीचर्स, पेरेंट्स भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझ सकें और उसका सुरक्षित इस्तेमाल कर सके। IFOC.MHA.GOV.IN पर कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध हैं। आप बच्चों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया, गेमिंग एप्स, मैसेज फ्रॉड को लेकर एक कॉमिक जो है चाचा चौधरी जैसे करेक्टर के साथ स्टूडेंट्स को अलर्ट करती है और साइबर क्लब बनाए गए हैं जिससे कि साइबर सेफ्टी को लेकर क्विज है, पोस्टर है, डिबेट्स हैं और एक्टिविटीज़ को भी रखा गया है, थोड़ा सा एंगेजिंग बनाया गया है। तो इसमें आप जा सकते हैं, ऑनलाइन जाएं और चीज़ें देखें और इससे जुड़ी हुई आप किस तरीके से जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, डिजिटल हाइजीन को आप कैसे सीख सकते हैं, तो उसके लिए आप IFOC.MHA.GOV.IN पर जाकर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, उसको हासिल कर सकते हैं और एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं और अपने आप को किसी भी तरह के अपराध से बचा सकते हैं। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

देखिए, दिल जब भी कहता है और जब भी आप अच्छा फील कर रहे होते हैं और आपको एक ब्रेक चाहिए होता है और आपको अच्छा फील करना होता है, अगर आप फील नहीं भी कर रहे हैं तो आप निकल पड़ते हैं ना सफ़र पे। और कई बार जो लगता है कि बहुत ही पास है, और जैसे कि कुछ लोग, एक मेरी नोन है और हमेशा ऋषिकेश जब भी मौका मिले, चलो ठीक है देहरादून निकल लेते हैं, ऋषिकेश जाना है, हरिद्वार जाना है, और सफ़र पर निकल जाते हैं। तो अगर आप भी दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश आपको जाना पसंद है, मतलब आपको ऋषिकेश और हरिद्वार जाना पसंद है और आप दिल्ली से सफ़र कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर बिल्कुल ये हो सकती है। और वो इसलिए क्योंकि NCRTC ने दिल्ली ऋषिकेश तक नमो भारत ट्रेन चलाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद अब दिल्ली मेरठ से हरिद्वार ऋषिकेश तक नमो भारत रेल सेवा शुरू करने की पूरी योजना बनाई जा रही है। इस पर

काम करना शुरू हो गया है। तो अगर ये प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है तो फिर नमो भारत रेल सेवा की वजह से जो सफ़र है, ज़्यादा ट्रेन के जो टाइमिंग्स है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो सफ़र जो आप लोग कर रहे हैं तो आपको मौके ज़्यादा मिलेंगे और समय की भी बचत होगी जब आपके पास एक फास्ट ट्रेन है जो आपको पहुंचा देगी, जी हाँ, आपकी डेस्टिनेशन तक। तो इस पर विचार किया जा रहा है, तो एक अच्छी खबर हम सब के लिए ये हो सकती है। और वैसे भी अगर आप दिल्ली में हैं और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चलिए कुछ निकलते हैं, कुछ अलग देखते हैं, और आप सोच रहे हैं कि क्या प्लान करें आज, तो आप एक आर्ट एग्जीबिशन में भी पहुंच सकते हैं, सोलो पेंटिंग एग्जीबिशन वंचना और एक वृतांत, यहाँ पर पहुँच सकते हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर। और यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने किस तरीके से, किस विचार के साथ जो पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई है उसके बारे में आप और भी कई जानकारी ले सकते हैं। तो इस सफ़र पर आप ज़रूर पहुँच सकते हैं और बिल्कुल पहुँचिएगा। मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा रही हूँ, प्ले कर रही हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मैं हूँ नुपुर आपके साथ। और लोधी रोड आपको पहुँचना होगा अगर आप इस पेंटिंग एग्जीबिशन को देखना चाहते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इसकी शुरुआत रहेगी, ये टाइमिंग्स रहेंगे। और 15 जून तक ये जो पेंटिंग एग्जीबिशन है वो आप देख सकते हैं। और टाइमिंग्स मैंने बता दिए, 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी FM रेनबो पर कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने। आपके साथ होंगे रविंद्र सिंह और उसके बाद 10:05 से लेकर 11 तक आप सुनेंगे प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिकार। आपके साथ होंगे निहारिका और उसके बाद बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ जुड़ेंगे रंजन अर्नेजा। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में बस इतना ही। मैं प्रकुल श्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: हाँ जी, दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपका दोस्त रविंद्र सिंह। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप बेताब रहते हैं क्योंकि नए और पुराने गीतों का संगम यहाँ पर सुनने को मिलता है। भाई साहब और कहाँ मिलेगा, 102.67 रेनबो पर। जुड़े रहिए हमारे साथ, गाने चलते रहेंगे तारा रमपम करके, है ना भाई साहब, तो दिल की धड़कने भी बढ़ेंगी। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए एक और एक बेहतरीन गीत, वो गीत जो दिल में उतर जाते हैं, वो गीत जो हमेशा एहसासों में रहते हैं, वो गीत हम जब अकेले बैठे होते हैं तो हमें बड़ा सुकून देते हैं।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज़ एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: तो फिल्म का जबरदस्त गीत आपने सुना, और उजाला फिल्म जो कि 1959 में आई थी, एक प्रसिद्ध बॉलीवुड रोमांटिक क्राइम ड्रामा फिल्म है ये, और फिल्म का निर्देशन और लेखन नरेश सहगल ने किया था। इस फिल्म में शमी कपूर और माला सिन्हा और राजकुमार मुख्य किरदार में थे, और इसके अलावा लीला चिटनिस और टुनटुन भी इस फिल्म में थे। अलग तरह की फिल्म थी। फिल्म की कहानी गरीब व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो अपराध की दुनिया में कदम रखता है, और इस फिल्म का संगीत भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, जिसमें कुल 8 गाने शामिल थे। और पुराने इन गीतों को सुनकर तो लगता है कि भाई सुनते ही रहो। चलो वापस लौटते हैं अपने इस जहां में। कुछ अलग हटके एक प्यारी सी आवाज़ जिन लोगों के दिल में उतर गई, चुपिन गार्ग।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, आप सुन रहे हैं रविंद्र के साथ, आपके दोस्त। और इस वक्त हम आपको बता दें, जो गीत आपने सुना है आशा भोसले की आवाज़ में और आर.डी. बर्मन ने इसमें अपना संगीत दिया है, फिल्म कारवां है। 1979 में ये फिल्म आई थी और ये चीन में भी रिलीज हुई थी और

0: इसको बड़ी सफलता मिली थी वहाँ पर भी, और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म उस वक्त उस दौर में साबित हुई थी। इस फिल्म के जो मुख्य किरदार थे वो जितेंद्र और आशा पारेख थे, और अर्णा रानी इस फिल्म में थी, और ये फिल्म काफ़ी हिट रहा था। इसके बाकी गीत भी काफ़ी हिट रहे, हम तो हैं राही दिल के, अब तो अब जो मिले हैं तो, और चढ़ती जवानी, दैया ये मैं कहाँ, और दिल भर दिल प्यार दिल से प्यारे, गोरिया कहाँ तेरा देश, और कितना प्यारा वादा। और उस समय अगर देखा जाए तो फिल्में अगर मैसेज उसमें ऐसा होता था कि जो पारिवारिक भी होता था, और कई बार मसाला फिल्में भी होती थी, और कई बार अधिक सस्पेंस से भरी हुई फिल्में भी होती थी, तो उस दौर में संगीत का अपना एक अलग रोल होता था, और उसकी वजह से भी ज़्यादा भीड़ जो है फिल्मों तक खींच कर चली आती थी। चलिए लौटते हैं अपने वापस इस दौर में, क्योंकि ये संगम है, ये प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने, तो नए और पुराने गीतों का संगम। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बातें दिल से दिल तक हो रही हैं और गाने भी दिल में उतर रहे हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा। सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे, पड़ी डफली पर था और

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियू की उपस्थिति में ये पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागा

0: नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनीतिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बने राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IAM में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि तड़के करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आती रहेंगी बहारें फ्रॉम द फिल्म कस्मे वादे. द ईयर वॉज 1978 व्हेन दिस फिल्म वॉज रिलीज्ड एंड द ईयर वॉज ऑल्सो द ईयर व्हेन दिस फिल्म बिकेम द फोर्थ हाइएस्ट अर्निंग बॉलीवुड फिल्म आफ्टर मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल एंड डॉन. एंड बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज सक्सेस इट ऑल्सो गॉट रीमेड इन तेलुगु एंड तमिल इज वेल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई नीड टू गिव यू ट्रैफिक अपडेट्स राइट अबाउट नाउ. सो इट्स 10:21 AM बाय द स्टूडियो क्लॉक, विच मीन्स दैट इफ यूर

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख।

0: रुपए और फोर्थ प्राइज 1,00,000 रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: And after that short commercial break, we're back to the music on the Matchless Music Hour. Up next, we've got a lovely track in the melodious voice of Kishore Kumar Saab called Ek Roz Main Tadap Kar from the film Bemisal. Now, this film came out in 1982 and it was actually one of the last films and those rare films to have been shot in the Kashmir Valley before dire circumstances took over. So if you've watched the film recently or if you plan to watch it over the weekend, you might be pleasantly surprised and you might just, you know, be charmed by certain scenes that have been shot in the valley. We hope you sit back, relax and enjoy this track on the Matchless Music Hour.

गजब काहिदिन फ्रॉम द वेरी पॉपुलर फिल्म कयामत से कयामत तक इन द लवली वॉइस ऑफ अलका याग्निक. आई मीन द वेदर सीम्स टू बी फेवरिंग अस ह्यूमंस ऑन अर्थ टुडे, सो यू ऑलवेज गॉट टू अप्रिशिएट गुड वेदर, यू ऑलवेज गॉट टू अप्रिशिएट अ गुड डे, राइट? हेंस दिस हैड टू बी ऑन आर प्लेलिस्ट फॉर द मैचलेस म्यूजिक आवर. एंड समथिंग एल्स दैट इज गोइंग टू कैच योर अटेंशन टुडे इज द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. इंग्लैंड इज होस्टिंग द टूर्नामेंट एंड 33 मैचेस played between 12 teams. There's a lot of excitement in the air. The first match is happening today in Birmingham between England women and Sri Lanka women's cricket team. And All India Radio Akashwani is going to be covering the tournament live from the 14th of June. So all the India-specific matches you can catch on our channel. You can catch the live commentary on our channel. And well, you can cheer for our team. You can send us messages and you can send us good wishes and we'll pass them on to the Indian women cricket team. And with that, 10:50 a.m. by the studio clock, Eye of the Tiger by Survivor up next in you know, as an ode to the sportsmanship spirit that is surrounding this tournament on the Matchless Music Hour. Stay tuned.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। कांग्रेस सदस्यों, अमरीकी सीनेटर और बड़ी अमरीकी कंपनियों के अधिकारियों ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। वारबर्ग पिंक्स के चेयरमैन चार्ल्स आर, प्रतिनिधि फ्रेंच हिल, प्रतिनिधि ब्रैड शर्मन, सीनेटर सिंडी हाइड स्मिथ और सिस्को के जीतू पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय

ये हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतोनियो गुतरश ने सभी पक्षों से युद्ध विराम को पूरी तरह लागू करने तथा स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में हुई प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप से स्वदेश वापसी के समय तबीयत खराब होने के बाद उन्हें नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल करके मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और कार्यक्रम शुरू हो गया है बॉलीवुड ट्रेल्स। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ रंजन।

जी इन द इंडस्ट्री विच इज फिल ऑफ यू नो सुपरस्टिशंस, जैसे कि नाम को लेके बड़ा बहुत विचार और सोच विचार किया जाता है, स्क्रिप्ट या फिर बाकी चीज़ों पे तो काम करते ही हैं, और जाहिर सी बात है जब नाम आपके पसंद का हो तो काम भी आपकी पसंद का होगा, ऐसा माना जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है कंगना रनौत की जो फिल्म आज रिलीज़ हो रही है, भारत भाग्य विधाता। जब ये फिल्म बन रही थी तो इस फिल्म का नाम कुछ और सोचा गया था, लेकिन स्टोरी के साथ रेजोनेट उतना नहीं हो रहा था, एंड आई थिंक कंगना फेल्ट समवेयर कि इस फिल्म का नाम भारत भाग्य विधाता होना चाहिए। और जब उन्होंने इस टाइटल के लिए तैयारी की और पता किया तो पता चला ये तो टाइटल पहले से किसी के पास है। आपको पता है ना, आप भी रजिस्टर करा सकते हैं किसी मूवी, अगर आपको फ्यूचर में कोई मूवी बनानी है और आपको टाइटल पहले सोच गया और स्क्रिप्ट नहीं याद आ रही तो आप उसे टाइटल को रजिस्टर करा के रख सकते हैं, और ऐसा ही जॉन एब्राहम ने कर रखा था। तो कंगना ने उनसे रिक्वेस्ट किया, एंड जॉन बीइंग सच अ जेंटलमैन, वो ना कैसे कह सकते थे। इस तरह से ये फिल्म भारत भाग्य विधाता का टाइटल कंगना को उन्होंने बस यूं ही गिफ्ट कर दिया। तो फिर अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं, 2008 में 26/11 के हमलों के दौरान एक नर्स के जज्बे का, उनकी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्म के प्रति समर्पण का जो भाव है उसको दिखाती हुई ये मूवी है, तो आप जा सकते हैं सिनेमाज में। वैसे कंगना की ही अभिनीत एक फिल्म सिमरन मुझे बड़ी पसंद है, उसी से एक गाना आपके लिए, बॉलीवुड ट्रेल्स पर आकाशवाणी रेनबो पर।

वैसे देखा गया है कि पर्सनल एप्रिसिएशन तो सितारे और तारिकाएं अपने लिए चाहते ही हैं, यानी जब वो कोई काम करें तो पूरी दुनिया उनको सराहे, एंड द टाइम्स व्हेन एक्टर्स प्ले टू द गैलरी, और वो होना भी चाहिए बिकॉज एक्टर्स का काम है भाई अपने किरदार के माध्यम से पूरी दुनिया पर छा जाना। ऐसी कोई तारीफ करी है प्रियंका चोपड़ा ने, लेकिन किसके बारे में वो अच्छी अच्छी बातें कह रही हैं ये बताऊंगा एंड लॉट्स मोर, क्योंकि आप हैं आकाशवाणी रेनबो के संग। 90 सालों का स्वर्णिम सफर जारी है, सिल्वर स्क्रीन की बातें सुबह सुबह चाय के साथ, वड़ा पाव और पराठे खाते। मैं हूं आपके साथ रंजन, 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स।

बड़ी कोशिश की, लेकिन पूरा प्लॉट ऑनलाइन भी कैसे क्लियर होगा। मतलब देखिए, फिल्म देखने का मज़ा भी जाता रहेगा ना, फिर आप कहेंगे क्या किया यार। मतलब आप जब फिल्म में जाते हैं तो आपने मेहनत और पसीने की जो कमाई से जाके आप टिकट लेते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि अगर उसके अंदर किसी भी तरह का किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सरप्राइज कर सकती है, तो पहले ना ही बताई जाए। और जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा, मुझे खुद नहीं पता मैं आपको क्या बताऊँगा। ये शाप है, ये फिल्म बड़ी फनी है और एक बड़ी क्लेवर तरीके से बनाई है, ऐसा कहा है प्रियंका चोपड़ा ने। तो प्रियंका ने कहा है तो उनके बात को हम मान लेते हैं और हम समझते हैं कि अगर वो कह रही हैं तो इस बात में कोई दम होगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा कम होगा, लेकिन दम तो होगा। क्योंकि देखिए क्या है ना कि प्यार जो है वो इस किसी आर्ट से हो सकता है, खाने से हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है, क्योंकि प्यार कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होता है।

हम बात कर रहे हैं नन अदर देन माधुरी दीक्षित की, जिनकी तारीफ में तारीफों के पुल बांध दिए हैं प्रियंका चोपड़ा ने, और वो कह रही हैं कि कितनी प्यारी मूवी बनाई गई है। हम बात कर रहे हैं, ये ने अपना OTT के ऊपर रिलीज हुई फिल्म जिसका टाइटल है माँ बहन, उसके अंदर बड़ा अच्छा किरदार निभाया है। देखिए मैंने तो अभी तक नहीं देखी, बट मुझे भी अब बड़ी उत्सुकता हो रही है कि मैं इसे देखूँ। और क्या है इस फिल्म के अंदर ये तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने

भैया भैया, जब आप जहां भी कहीं रहते हैं तो अपने अड़ोस पड़ोस में लोग मोस्टली प्यार से, प्रेम से एक साथ रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई दफा कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े फार्म हाउसेस के आसपास, कि आपके पड़ोस में अगर कोई बहुत मशहूर हस्ती रहती है या रहता है और आपको उससे दिक्कत

रही है तो आप क्या करेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है सलमान खान के साथ और उनके नेबर ने, 2022 का एक केस है जहां ये बातें कोर्ट तक चली गई। अब इसमें क्या हुआ है ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, भाई एकदम से सब कुछ बता देंगे तो अगली तारीख पे बताएंगे ना। मतलब कहने का ये है कि तारीख पे तारीख है ना, वो तो आप समझते ही हैं। खैर हम करेंगे तारीख पे तारीख क्योंकि आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है बॉलीवुड सरताज के सवाल का। तो आज का सवाल पहले मैं आपको बता दूं और किस नंबर पर आपने मैसेज करना है वो है 9868107070 9868 10 70 70। इस नंबर पर आपने भेजना है व्हाट्सएप। और हमारा आज का सवाल है कि फिल्म वेलकम 2007 में जो आई थी उसके अंदर नाना पाटेकर साहब ने जो किरदार प्ले किया था उस किरदार का नाम क्या था। बस थोड़ा जुम्बा करते हुए, अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज हियर एंड देयर फॉर ऑल दोज हाउस मेकर्स, होम मेकर्स जो इस समय हमें किचन में लेट ब्रंच बनाते हुए गाना सुनना चाह रही हैं और बॉलीवुड ट्रेल्स को सुन रही हैं, या फिर टेलरिंग शॉप में कोई पैंट को काटते हुए या शर्ट का नाप लेते हुए हमें सुन रहा है, तो थोड़ा सा थिरके, हमारे सवाल का जवाब सोचे, भेजें और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स पर।

भाईजन को नहीं पता, कुछ साल पहले ज़ुम्बा एक सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, सॉर्ट ऑफ एन एक्सरसाइज है, रूटीन है, जो हमारे दिल्ली के जिम्स में, खास करके मुझे लगता है देश भर के सारे जिम्स में ही इसकी बाकायदा ज़ुम्बा क्लासेस होती हैं। जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, दे वांट टू कट डाउन ऑन द वेट एंड कार्डियोवैस्कुलर, अच्छी एक्सरसाइज रहती है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन देखा है, सुना है, इस लिहाज से बता रहा हूँ। तो वैसे भी आप डांस कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डांस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। मैं बात कर रहा था सलमान खान की, जो चाहे ना चाहे किसी ना किसी तरह से कानून से दो चार होते ही रहते हैं। खैर, जो केस उनके पड़ोसी ने उनके फार्म हाउस में कहा, वो क्या ऐसा उन्होंने कहा, हाँ, कि भाई वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ कर रखा है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कोर्ट ने उन्हें थोड़ा सा कहा है कि ये चीजें आप डिपार्टमेंट की तरफ जाके कहिए, और अगर कुछ ऐसी पोस्ट अगर किसी के लिए कोई भी करता है व्यक्ति, तो वो सामने वाले को इंसल्ट ना करें, ऐसा भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और मैं यहाँ खास तौर से उन बच्चों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा जो पूरा दिन इंटरनेट पर लगे रहते हैं, सोशल मीडिया में अपनी बातें, अपनी बयान रखते हैं, रखना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स से पूछ लेना चाहिए कि भाई, कईयों के पेरेंट्स ने तो कह रखा है जो आप लिखेंगे तो हम आपकी बेल नहीं कराएंगे। मतलब कहने का ये है कि बच्चों को हमें बताना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आप दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा ना लिखें जो आप साबित ना कर सकें। सो जस्ट बी अवेयर एंड एंजॉय योर लाइफ जैसे करती है सिमरन।

0: सिमरन मूवी अगर आपने देखी है, मुझे भी हल्का हल्का ध्यान आ रहा है, कुछ साल पहले मैंने कहीं देखी है, आई थिंक घर में ही लेजरली यू नो देखी, बड़ी प्यारी मूवी लगी मुझे। इसमें कंगना का काम मुझे बड़ा खास लगा, और विदेश में जब कोई बच्चे या हमारी इंडियन फैमिलीज जो रहती हैं उनके बच्चों को किस तरह की दिक्कतें पेश आ सकती हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा अड़ियल हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग होते हैं या बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक होते हैं बच्चों के प्रति। और एक एक शब्द है क्लिप्टोमेनिया, यानी कुछ बच्चों के अंदर ऐसी भी ऐसे गुण पाए जाते हैं कि उन्हें कुछ अच्छा लगता है तो वो चुपचाप अपने पास रख लेते हैं। इसे चोरी नहीं कह सकते, बट हाँ ऐसा कुछ प्लॉट था। एंड इफ यू नॉट सीन द मूवी प्लीज डू वॉच इट, हो सकता है आप सोशल मीडिया इंटरनेट पे कहीं मुफ्त में भी देखने को मिल जाए, तो यू कैन ऑलवेज गिव इट अ ट्राई। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का बॉलीवुड ट्रेल्स। आपसे सवाल फिर से पूछेंगे इन जस्ट अ लिटल व्हाइल, सवाल क्या है बताएंगे, बट आफ्टर द ब्रेक।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
8: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
9: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक।

जी हाँ, ले ले ले ले मेरा नंबर। जी हाँ, हुकअप करना पड़ेगा आपको, हमें मैसेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम सवाल एक फिर से दोहराने जा रहे हैं। सवाल है बॉलीवुड सरताज जो आपको बना सकता है आज। सवाल बड़ा सिंपल है, फिल्म वेलकम 2007 में जो रिलीज हुई थी उसके अंदर नाना पाटेकर साहब ने जो किरदार प्ले किया था, उस किरदार का नाम फिल्म में क्या था? वो उतना से बस लिख के हमें भेज दीजिए 9868 10 70 70 पर। दैट्स 9868 107070। इस नंबर पर आप भेजिए, बहुत से सही जवाब आ भी गए हैं, हो सकता है आप ही बन जाएं बॉलीवुड सरताज।

अभी आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल जो 15 दिन बाद रिलीज हो रही है 26 जून को, और उसका ट्रेलर आउट हो गया है, बहुत से लोगों ने देखा, मैंने भी देखा। उसके अंदर एक डायलॉग अक्षय कुमार को लेके इस्तेमाल किया गया है फ्लॉप एक्टर का। खैर, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने के लिए कहा है अक्षय ने खुद, बिकॉज ये मूवी के अंदर कुछ एक तरह से इस्तेमाल किया गया है, सो डोंट टेक इट दैट सीरियस ऑल्सो, ऐसा कहा है उन्होंने। वह देखिए, ट्रेलर देख के तो बहुत अच्छे से, बहुत ग्रैंड तरीके से उन्होंने ट्रेलर को लॉन्च किया है, जिसमें सभी स्टार कास्ट के बाकायदा नाम दिए गए हैं। उसका एक तरह से इंट्रोडक्शन

0: कह लीजिए, डायलॉग्स थोड़े और डालते तो बहुत अच्छा लगता, बिकॉज आपका मन करता है कि तुरंत आप जाके एडवांस बुकिंग करा दें। हो सकता है आने वाले ट्रेलर्स में कुछ ऐसा और हो। अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, तुझे कितना चाहने लगे हैं हम।
1: बन ही गया।
0: आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर।

0: बॉलीवुड सरताज का सवाल आखिरी बार आपके पेश खिदमत है। फिल्म वेलकम 2007 में रिलीज, नाना पाटेकर साहब द्वारा निभाया किरदार उस फिल्म में, उसका नाम बताएं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद एक गाना सुनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे बॉलीवुड सरताज। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं रंजन आपके साथ आकाशवाणी रेनबो पर। हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं न्यूज ऑन एयर, उसके बाद 24 घंटे पूरी दुनिया में हमें अपनी जेब में डाले फिरिए। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफर छोटा मोटा नहीं है बाबू मोशाए। 90 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास आकाशवाणी और आपका साथ।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक।

0: ऑडिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: जी हाँ टकराएंगे बॉक्स ऑफिस पर तो होगी गुफ्तगू। कुछ ऐसा ही मैसेज दिया है फिल्म धुरंधर ने और धुरंधर द रिवेंज ने। पुराने बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद अभी भी वो बरकरार रही उनकी जो ये दौड़ थी बॉक्स ऑफिस पर। 1,000 करोड़ से ऊपर की बिजनेस किया गया। अगर इसी के मुकाबले हम बताएं कि है जवानी तो इश्क होना है, लगभग हफ्ते भर में 50 करोड़ के आंकड़े को भी नहीं छू पाई है, जबकि इसके अंदर एक्ट करने के लिए वरुण धवन ने लगभग 30 करोड़ तो उन्होंने ही रख लिया था। खैर डिपेंड करता है, देखिए फिल्म बिजनेस इज नॉट दैट इजी अ बिजनेस, और आपको सरताज बनाने के लिए सवाल पूछते हैं तो आप जवाब देते हैं, वो भी इतना आसान नहीं होता है, मतलब कुछ लोगों के लिए, बाकी आज लगभग सारे जवाब सही आए थे। हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं कोई। हेलो
1: हेलो सर,
0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: हाँ जी, कौन? पंकज अमराठी महाराष्ट्र से सर।
0: कैसे हैं पंकज आप?
1: अच्छे हैं सर जी।
0: अच्छा ये बताइए कि आलू ले लो कांदा ले लो, महाराष्ट्र में तो वैसे भी कांदा ही कहते हैं इसको, है ना? दिल्ली में तो प्याज कहा
1: कांदा ही बोलते हैं, प्याज हिंदी में बोलते हैं, कांदा हम मराठी में बोलते हैं।
0: हाँ तो ये देखिए उदय शेट्टी जो बोल रहे थे, नाम बता दीजिए। चलिए आपने देखी है ना फिल्म?
1: हाँ देखी सर।
0: तो नाना
1: वेलकम फिल्म ने नाना पाटेकर का नाम उदय शेट्टी था।
0: अरे वाह, और आप जानते हैं वो कहाँ बेच रहे थे कांदा? फिल्म के अंदर दिखाया है जो पीछे सीन था,
1: शूटिंग थी वो फिल्म में हीरो बनने की।
0: हाँ वो
1: हीरो बनने के वो शूटिंग कर रहे थे,
0: वो शूटिंग वो दुबई में कर रहे थे शूटिंग।
1: हाँ
0: बताओ, आलू कांदा भी बेच रहे तो कहाँ यॉट के सामने खड़े होके। चलिए फिल्मों में तो कुछ भी पॉसिबल है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप रेडियो दिन भर सुनते हैं या थोड़ा समय निकाल पाते हैं?
1: नहीं, सवेरे के 2 बजे तक सुनते हैं और शाम से 6 बजे से रात 10 बजे तक।
0: चलिए बहुत बढ़िया करते हैं, आज आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक यू जी, थैंक यू। और आप भी बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज, डोंट लूज होप एंड डोंट लूज हार्ट। हम अब फिर कभी आपको बना दें बॉलीवुड सरताज। कुछ एक नाम यहाँ ले लेता हूँ अब लगे हाथ। सलीम मलिक का भी सही जवाब आया था, कांट से मोहम्मद फुरकान का सही जवाब आया था, और समर सिंह चौहान का खंडवा मध्य प्रदेश से, टोनी शाह, पुष्पिंदर पाल सिंह का भी जवाब आया है, एंड दे आर ऑल राइट। और उदय भाई नाम लिखा है, नाना जी का नाम था, नहीं उदय भाई नहीं, उदय शंकर शेट्टी ऑब्वियसली, हाँ ये भी नाम था फिल्म के अंदर। हरमनप्रीत का भी मैसेज आया है पंजाब फरीदकोट से,

भैया स्टूडियो क्लॉक हमें बता रही है कि रंजन अब यहाँ से जाने का समय हो गया है। अगला कार्यक्रम रहेगा प्ले इट कूल और आपके साथ रहेंगी निहारिका। वैसे अगर आप आर डी बर्मन साहब के फैन हैं, देखिए मैं भी हूँ, हर कोई है, ऑफ यार मैंने आखिरी गाना उनका क्यों नहीं लगाया। खैर अब जो चांस चला गया तो चला गया। फरहान अख्तर हो सकता है, बहुत जल्द आपको एक बायोपिक में नजर आएंगे आर डी बर्मन साहब का किरदार निभाते हुए। उसके लिए प्रिपरेशंस वगैरह तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वी आर कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस्ड बिकॉज फरहान गा भी लेते हैं और किरदार में पूरी तरह से डूब जाते हैं। आपसे मैं मिलूंगा 1:20 पर। टिल टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
8: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
9: And with that, as promised, we're back to the music on Plate Cool. You're with me, Niharika, 12:53 PM by the studio clock, and you're with us on Akashwani FM Rainbow. Lean On, up next by Major Lazer, featuring DJ Snake. Stay tuned.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: नमस्कार, मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी की रिहैबिलिटेशन विंग प्रशांति की डायरेक्टर संध्या गुप्ता सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम कैंसर के नाम से घबरा जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 40% कैंसर को हम अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाकर दूर रख सकते हैं। ज़रूरत है बस थोड़ी जानकारी की, जागरूकता की और स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाने की। तो आपको यह समझना चाहिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के परिवर्तनीय जोखिम कारक के बारे में। ये वे कारक हैं जिन्हें रोज़मर्रा के जीवन में आसानी से बदला जा सकता है, और ये छोटे छोटे बदलाव हमें इस बीमारी से बचा भी सकते हैं। तो आइए सुनिए ये बदले जाने वाले जोखिम क्या हैं। सबसे पहला कारण है तंबाकू का सेवन एवं धूम्रपान। इसके अलावा शराब के सेवन से उच्च बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI यानी अधिक वजन होने से, शारीरिक गतिविधि की कमी, पौष्टिक आहार की कमी यानी फल और सब्जियों के कम सेवन से तथा अत्यधिक सूर्य के संपर्क में आने से होती है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण या पोल्यूशन भी फेफड़ों के कैंसर के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। कैंसर उत्पन्न करने वाले कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV और हेपेटाइटिस, जो कम आय वाले देशों में लगभग 30% कैंसर के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम कैंसर से ही नहीं बल्कि अन्य बीमारियों से भी बच सकते हैं। अब जानिए ये रिस्क फैक्टर्स हमें कैसे प्रभावित करते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। इसमें सबसे अहम है तंबाकू का उपयोग और धूम्रपान। कैंसर से होने वाली लगभग 1/4 मौतें तंबाकू के उपयोग और धूम्रपान करने से होती हैं। धूम्रपान कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इससे आप अपना तो नुकसान करते ही हैं, साथ ही अपने घर वालों को और आसपास वालों को भी खतरे में डाल रहे हैं। दूसरे लोगों के तंबाकू के धुएं में सांस लेना यानी पैसिव स्मोकिंग भी आपके कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। अपने घर को धूम्रपान मुक्त रखना आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। तंबाकू विश्व स्तर पर कैंसर का एक प्रमुख रोके जा सकने वाला कारण है, जिसमें 70 ज्ञात कैंसर कारक पदार्थों सहित 7,000 से अधिक रसायन होते हैं। तंबाकू चबाना या चूसना सिगरेट पीने का सुरक्षित विकल्प नहीं है। यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपको मुंह और मौखिक कैंसर का खतरा अधिक हो जाता है। साथ ही यह भी जान लें कि ई सिगरेट भी उतनी ही हानिकारक होती है, क्योंकि उसमें भी निकोटीन, जहरीले यौगिक तथा कैंसर पैदा करने वाले तत्व मौजूद होते हैं। यह फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण बन जाता है और मुंह, गले, अन्न प्रणाली यानी ईसोफेगस, मूत्राशय तथा पैनक्रियास के कैंसर से भी जुड़ा हुआ है। सिगरेट छोड़ने से लंबे समय तक गंभीर बीमारियों की चपेट में आने का खतरा तेजी से कम होने लगता है। अगर आप सिगरेट या तंबाकू के सेवन को हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा। यदि आप धूम्रपान अपने आप छोड़ने में नाकाम हैं तो आपको डॉक्टर से मदद मांगनी चाहिए। तंबाकू और धूम्रपान छोड़ देने से आप अपने आप को और अपने परिवार को इस बीमारी से दूर रख सकते हैं। बेहतर स्वास्थ्य की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए और स्मोकिंग से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कोई उम्र या समय की सीमा नहीं होती। अब दूसरे कारक के बारे में बात करते हैं, वो है अतिरिक्त शारीरिक वजन और आहार। मोटापा कम से कम 13 प्रकार के कैंसरों के बढ़े हुए जोखिम से जुड़ा हुआ है, जिनमें स्तन, कोलोरेक्टल और पैनक्रियाटिक कैंसर शामिल हैं। प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट भी कैंसर का कारण बनने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। फलों और सब्जियों की कम मात्रा वाले आहार कैंसर के जोखिम को और बढ़ा देते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखने से कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जैसे हृदय रोग और मधुमेह का जोखिम भी कम होता है। आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगी। ऐसे स्वस्थ एवं पौष्टिक आहार लें जिसमें फल और सब्जियां भरपूर हों और विभिन्न रंगों की भी हों, और साथ ही वसा यानी फैट तथा चीनी की मात्रा कम हो। अपनी मेटाबॉलिज्म के स्तर के अनुसार केवल उतना ही भोजन करें जितनी आपको आवश्यकता है। नियमित व्यायाम करने से हार्मोन को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है, यह शरीर में होने वाली सूजन को भी कम करता है और स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है। शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय रहें, नियमित शारीरिक गतिविधि व व्यायाम कुछ कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करती है। अब तीसरा कारक है शराब का सेवन। शराब पीने से मुंह और गले के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। यह ग्रास नली यानी ईसोफेगस, आंत, लिवर और स्तन के कैंसर से भी जुड़ा हुआ है। आम तौर पर जितना अधिक आप पीते हैं उतना ही अधिक आपको आपका जोखिम बढ़ता है। यदि आप इनके साथ धूम्रपान भी करते हैं तो आपका जोखिम और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए आप जितनी शराब पीते हैं उसे सीमित करें, या फिर बिल्कुल ना लें या कम मात्रा में लें। अगला कारक है अत्यधिक धूप में रहना। बाहर कुछ समय बिताना आपको स्वस्थ रहने में मदद करता है। हमारे शरीर को विटामिन डी बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन अपनी त्वचा को बहुत अधिक धूप से भी बचाना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत अधिक धूप त्वचा के कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकती है, इसलिए धूप में सावधानी रखें। सनस्क्रीन का इस्तेमाल और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने आपको सूरज की तेज किरणों से बचाने में मददगार होता है। जब भी संभव हो घर या कार्यालय के अंदर या फिर

0: वायरस। कुछ संक्रमण यानी इन्फेक्शन ऐसे हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं, जिन्हें रोका, उपचारित या प्रबंधित किया जा सकता है। इनमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV तथा हेपेटाइटिस शामिल हैं। सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामलों को HPV टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। अब तो हमारी सरकार ने 14 वर्ष की लड़कियों के लिए यह टीका मुफ्त कर दिया है, इसलिए यदि आपके घर में बेटियां हैं तो उनका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए, जिससे उनका सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सके। तो आइए हम तंबाकू और शराब से दूर रहने, स्वस्थ भोजन करने तथा अपनी बेटियों का टीकाकरण करवाने का संकल्प लें। हमारे छोटे छोटे बदलाव हमें और हमारे परिवार को एक बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप कैंसर से दूर रह सकते हैं और अपने संपर्क में आने वाले परिवारजनों और मित्रों को भी इन बातों से अवश्य अवगत कराएं। इसके अलावा अपने शरीर के प्रति सतर्क रहना चाहिए और यदि कोई लंबे समय तक परिवर्तन महसूस हो तो समय पर जांच कराना भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे यदि कोई बीमारी हो तो उसे शुरुआत में ही पहचाना जा सके और उसका उपचार किया जा सके। जैसा कि कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि हम समय रहते ही अपना ध्यान रखें तो बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। हमारा एक डिटेक्शन सेंटर 42 बाबर रोड बंगाली मार्केट के पास स्थित है, जो सुबह 9 से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार खुला रहता है। यहाँ बहुत कम पैसों में कोई भी अपनी जांच करवाने जा सकता है। हमारी एक मोबाइल वैन है जिसकी मदद से हम निःशुल्क चेकअप कैंप लगाते हैं। हमारे डिटेक्शन सेंटर का नंबर है 011-237-169-41। मैं फिर से दोहराती हूँ, 011-237-169-41। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा एक मोबाइल ऐप भी है जिसका नाम है राइज अगेंस्ट कैंसर। इसे आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको 5 अलग अलग भाषाओं में विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में जानकारी देते हैं और साथ ही कैंसर से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। हमारा एक पुनर्वास केंद्र है प्रशांति, जो CR पार्क में स्थित है, जो यहाँ कैंसर रोगी जो ठीक हो जाते हैं, हम उन्हें यहाँ पुनर्वास प्रदान करते हैं और उन्हें जीवन में आत्मविश्वास दिलाते हैं ताकि वे पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें। यहाँ हम कुछ वर्कशॉप्स भी आयोजित करते हैं जिनमें कैंसर तथा अन्य विषयों की जानकारी दी जाती है। यहाँ हम स्तन कैंसर के रोगियों को निःशुल्क ब्रा और प्रोस्थेसिस प्रदान करते हैं। उनके हाथ की सूजन के लिए कंप्रेशन थेरेपी भी दी जाती है, साथ ही उन्हें इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग भी दी जाती है। यदि आपको कैंसर से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर नोट करें, 9910516562। मैं फिर से दोहराती हूँ, 9910516562। आशा करती हूँ कि आज की इस वार्ता को सुनकर आप भी अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए कुछ बदलाव लाएंगे। आज की इस वार्ता के प्रायोजक हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी और हमें सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: शुक्र है, आज है शुक्रवार और समय है दोपहर का और बज गए हैं 1:19:45। आप हो गए होंगे तैयार क्योंकि कार्यक्रम शुरू होता है मेरा वाला सॉन्ग। 9868-1070-70 पर आप कीजिए व्हाट्सएप। अपनी पसंद के खाना, अपनी पसंद का गाना, अपनी पसंद के नज़ारे, क्योंकि एक शायर ने खूब कहा है कि हम इंसान तो हैं लेकिन लगते हैं कुछ ना कुछ गुब्बारे, अलग अलग रंग के गुब्बारे।

तो भिन्न भिन्न रंग के ऑफ डिफरेंट कलर्स गुब्बारे यानी बलून्स वैसे ऐसे व्यक्तित्व होते हैं ना जिनमें खूब जैसे कहते हैं ना इनके

कदम तो जमीन पर पड़ते ही नहीं है, तो उड़ते रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायूस से रहते हैं। कुछ ऐसा ही इस गाने के प्रति मेरा विचार रहे जब जिसे लिखा गया होगा। भानु प्रकाश हमारे साथ मैसेज के द्वारा जुड़ गए हैं। उन्होंने बहुत तीन चार रिक्वेस्ट भेजी थी, उसमें से एक मुझे मिल गई है। रब ने बना दी जोड़ी से आपकी पसंद फिल्म का जो गाना आपने पसंद किया है वो मैं थोड़ी देर में प्ले करने जा रहा हूँ। और उत्तम नगर दिल्ली से मैं तीन चार नाम आप एक मैसेज में लिख देते हैं, बड़ी नाइंसाफी है ये। खैर मैं पढ़ देता हूँ। कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल एंड भानु प्रकाश। एक मैसेज, चार नाम, बड़ा भारी है ये काम, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। और भी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। एक मैसेज हमारे पास जो आया है वो कहते हैं कि आप कोई भी पंजाबी गाना सुना दीजिएगा और जो आपको पसंद हो। पाजी, थैंक यू पाजी। प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से लिखते हैं। तो थोड़ी देर में हो सकता है इन दिस प्रोग्राम, प्रदीप जी एंड संगीता जी, मैं हो सकता है आपके लिए एक पंजाबी नंबर मैं थोड़े वास्ते प्ले कर देंगा जी। थोड़ी नज़र इनायत इस तरह ही रहनी चाहिए। और हमारे से जो बन पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे। हमारे कंप्यूटर जी अगर उसमें हमारा साथ पूरी तरह से देंगे, क्योंकि देखिए कई दफ़ा क्या होता है, जो मूवी आप मांग रहे हैं वो तो होती है, लेकिन जो सॉन्ग आप मांग रहे हैं वो कई बार नहीं होता है। बट यू कैन ऑलवेज सेंड मी वन और टू चॉइसेस। 9868-10-70-70 पर आप कीजिएगा व्हाट्सएप हमें। आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूं आपके साथ रंजन।

0: सजदे सर। अनुष्का शर्मा मोर मूवी।
1: मैं क्या करूं, कुछ रब दिखता है।
0: सिर्फ एक मूछ से नहीं पहचान पाई कि वो जिनके साथ रहती हैं, जो उनके बेटर हाफ हैं, वही उन्हें डांस क्लास में मिलते हैं, ऐसी कुछ कहानी थी। थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन हाँ, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए मूवी देखते समय, क्रिएटिव लिबर्टी देनी चाहिए। जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर इतना पैसा लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, समय लगाते हैं, उसके बाद हम जाके कह देंगे ले कर लो गाल, मज़ा ही नहीं आया। खैर, हमारे पास मैसेज आया है मेलबर्न से, लिखती हैं, कहाँ चला गया आपका मैसेज मेलबर्न से, बड़ी दूर से आप इस समय सुन रहे हैं, वहाँ तो टाइम डिफरेंस भी आई थिंक 5-5.5 घंटे आगे चल रहे हैं आप यहाँ से, तो शाम का वक्त होगा वहाँ पे लगभग। और वो गाना आपने जो रिक्वेस्ट किया है स्त्री फिल्म से, वो एग्जैक्टली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार फिर से आप कोशिश कीजिए। जो गाना आप कह रही हैं ना, जोया, जोया मेलबर्न से, वो आपने जो लिखा ना आज की रात, उसके बाद क्लैरिटी नहीं है मुझे पास, और भी जो गीत है ना उनके बोल इससे नहीं स्टार्ट होते हैं। ये कई बार क्या होता है, मैं चलिए इस तरह से बता देता हूँ, हम कोई गाना सुनते हैं, हमें मुखड़ा याद नहीं होता, हमें सिर्फ अपना दुखड़ा याद होता है। हमें पहली लाइन गाने की नहीं याद होती, भीतर कहीं से हम एक लाइन उठाते हैं और कहते हैं जी ये सुना दीजिए, तो मेरे लिए बड़ा टफ हो जाता है। मतलब मैं पहले वो गाना अपने मन में गुनगुनाता हूँ कि यार इसमें वो लाइन कहाँ थी। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि हम आप तक पहुँचते हैं लाइव आकाशवाणी रेनबो से, और जो म्यूज़िक होता है वो कई दफ़ा कंप्यूटर की मेहरबानी पर भी होता है। जैसे सुनीता शर्मा जी ने हमारे पास एक मैसेज भेजा है, पहला पहला प्यार है फ्रॉम द मूवी हम आपके हैं कौन, शालीमार बाग से आपने ये रिक्वेस्ट किया है, आपने मांगा है ये गाना, तो हम मना कैसे कर सकते हैं? तो ये हुआ ना क्लियर, जैसे आपने मांगा गाना कि भाई पहला पहला प्यार है और यही टाइटल है सॉन्ग का, सो इट वॉज इजी फॉर मी टू स्पॉट, और कंप्यूटर जी ने आपके लिए प्ले कर दिया है। आप भी चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम है मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूं आपके साथ रंजन। ये वो प्रोग्राम है जहां पर आप अपनी पसंद के गाने ऑन रिक्वेस्ट ऑन डिमांड ऑर्डर कर सकते हैं गर्मा गर्म, जैसे बारिश के मौसम में गर्म जलेबी समोसे और चाय, वैसी ही अपनी पसंद का हुजूर एक गाना संग हो जाए।

0: बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। राजकुमार गुप्ता मेरठ से लिखते हैं, ओ हंसनी गीत सुना दीजिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। जहरीला इंसान मूवी में ये शो कर रहा है, आपने मूवी का नाम नहीं लिखा। अगर कोई और हंसनी फिल्म से है तो बताइएगा, वरना मैं ये गाना आपका क्यू करके मैंने रखा हुआ है। हे दुखभंजन, नाम है रंजन सर, नमस्कार, थैंक यू सो वेरी मच। आपने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो ये दो पंक्तियाँ लिखी हैं ये काम कर गई हैं। कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालविया, मनीषा मालविया, फिल्म हम सब चोर हैं गाना सावरी सलोनी तेरी झील से आगे। आई ट्राई, मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा, हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट भी बजाऊँ। तो थोड़ा हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से लौटेंगे तो फिर आपकी पसंद का गाना ज़रूर बजाएंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट। क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
8: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
9: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
10: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

वेलकम बैक है जी आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग और आपके सॉन्ग्स हम यहाँ बाकायदा ब्रेक में जाते हुए भी ढूंढ रहे थे. और हमारे पास जो नेक्स्ट गाना हमने क्यों किया है वो है साबरी सलोनी तेरी झील सी आंखें, कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मनीषा एंड हाँ बस ये दो ही नाम है, इन्होंने ये गाना रिक्वेस्ट किया है तो ये आपके लिए हम प्ले करने जा रहे हैं. ऐसे ही तवे से उतारे गर्मा गर्म गाने या फिर मिल्क शेक समान ठंडे गाने, मैंगो शेक, लस्सी, छाछ, जो भी आपको पसंद हो खाने में, खाने के संग और खाने के संग गाने. मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर.

कुमार सानू और अलका याग्निक की मधुर प्यारी बहुत ही बढ़िया अदाकारी वाली आवाज, खो गया है मेरा दिल। तो ये रिक्वेस्ट तो हो गई जी, अब आगे बढ़ते हैं। साहिल हमारे पास रिक्वेस्ट लिख के भेजी है, साहिल भाटिया ने मेरठ से, और वो कहते हैं कि चांदनी फिल्म का हमें गीत सुना दीजिए, लगी आज सावन की ऐसी घड़ी है, छड़ी है रादर। देखिए, दिल्ली में कल हल्की सी बरसात हुई, कुछ एक बूंदें गिरी, आंधी और हवा चली है, मौसम हल्का सा तो ठंडा हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मॉनसून भी पहुंचेगा नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में भी, तभी ये गाने और ज्यादा अच्छे लगेंगे मौसम के साथ। लेकिन कोई गाना सुनने के लिए कोई वजह जरूरी है या नहीं है, ये कौन कहेगा, ये कौन तय करेगा। इसीलिए तो हमारा ये कार्यक्रम आपके दिलों के करीब है, जिसे कहते हैं मेरा वाला सॉन्ग।

0: सावन। सुरेश वाडकर जी की आवाज में, सुरेश वाडकर जी की आवाज में आप सुन रहे हैं लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। और बस हमारी जो घड़ी है वो भी साथ साथ टिक टिक कर रही है और कह रही है कि भाई ब्रेक भी ले लो, कितना बोलोगे, कितने गाने बजाओगे, सबको अगर खुशी करते रहोगे तो एडवर्टीजमेंट कब सुनाओगे? क्योंकि उसके पीछे भी एक वजह है, मैं बताता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। देखिए, जैसे जैसे इंसान का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, इकोनॉमिक्स का विकास हुआ, वहाँ पैसे का लेन देन शुरू हुआ, पैसे के लेन देन से ही एडवर्टीजमेंट्स आती हैं और वो हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता। बहुत छोटी सी ब्रेक ली, यूं गया और यूं आया।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम में जिसका नाम है मेरे वाला सॉन्ग। और हमारे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट है रंजीत मस्ताना की रायबरेली से। लिखते हैं कि द डर्टी पिक्चर से इन्हें गाना सुनना है इश्क सूफियाना। तो आपकी पसंद का आगे चल रहा है गाना रंजीत मस्ताना ताना नाना नाना। अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट 9868107070 पर 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फिल्म का नाम बताइए, गाने के बोल लिखिए, अपना नाम और भेज दीजिए आकाशवाणी रेनबो पर।

स्टूडियो में टाइम हो गया 1:51, और देखिए आपकी घड़ियों में भी वही टाइम होगा, क्योंकि आजकल देखिए बड़ा बेमानी है ये बताना कि हमारे स्टूडियो घड़ी से घड़ी मिला लीजिए, क्योंकि मोस्टली सबके पास सेलफोन्स हैं और उसके ऑटोमेटिकली टाइम जो होता है वो अधिकतर एक समान ही होता है। अगर आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है जो टाइम दिखा रहा है तो वो ये बता रहा है कि भाई अभी कुछ और गाने ज़रूर बज सकते हैं। एक रिक्वेस्ट पीछे कही थी कि भाई पंजाबी गाना सुना देना, तो मेरे ख्याल से क्वालिफाई करता है गाना हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि आप लिख रहे हैं कल प्ले कर दीजिएगा, तो कल तो मैं नहीं रहूँगा साथ में, तो आज ही प्ले कर देते हैं।

जी अब ये नहीं कह सकते हमने आपके लिए टाइम स्पेयर नहीं किया, और ये हमने गीत बजाया है सलूजा साहब के लिए और उनकी वाइफ के लिए। उनका मैसेज कहीं गायब हो गया, बड़ी देर हो गई मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा जी, और जो नेक्स्ट हमारे पास गाना हमने क्यों किया है वो है विश्वात्मा मूवी से, और हमारे पास इसकी रिक्वेस्ट भेजी है सोलापुर महाराष्ट्र से, होतगी गाँव से, श्री कृष्ण भंसोड़े ने, प्रवीण शिवम और श्रवण श्रव्या ने। तो अब आपकी पसंद का गाना आगे आ गया है विश्वात्मा। एक समय पहले, मतलब एक अरसा हो गया जब ये मूवी आई थी, गाने इसके बड़े पैपी थे, सुनने लायक थे। आपकी पसंद है जी, बजा रहे हैं मेरे वाला सॉन्ग में।

रमिला का कर्नाटका से हमारे पास मैसेज आया है। कुछ एक दो नाम हम यहाँ और ले लेते हैं क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है कि हम बहुत सारे गाने आगे नहीं बजा पाएंगे। आई थिंक दिस वुड बी द सेकंड लास्ट और मे बी द लास्ट सॉन्ग। जिला मुरादाबाद से ग्राम दुल्हापुर से हमारे पास एक मैसेज आया है। सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप। अरे एक सांस में 100 नाम ले सकता हूँ मैं? मुझे ट्राई कर रहे हो?

जी हाँ, आ गई तो मुझे कहना पड़ेगा ज्योतिका सिंह के लिए, जो अगला कार्यक्रम पेश करने के लिए स्टूडियो में पहुंच गई हैं। रहेगा आशियाना, रेनबो डेस्टिनेशन, तो फिर घूमने फिरने की और देखने लायक जगहों के बारे में आपसे बात करेंगी ज्योतिका। फिलहाल रंजन को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी इन्हीं एयरवेव्स पर। टेक केयर, बाय बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन सिर्फ आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती हैं, है ना, महसूस की जाती हैं। कुछ सफर सिर्फ किलोमीटर्स में नहीं होते हैं, यादों में तय किए जाते हैं। आज हम रेडियो के जरिए निकल रहे हैं एक ऐसे ही ब्यूटीफुल जर्नी पर, एक ऐसी जगह जहां सुबह की शुरुआत पहाड़ों पर चमकती धूप से होती है, जहां झीलों पर आसमान उतर आता है और जहां की हवा में एक अलग ही सुकून बसा हुआ है। आज का रेनबो डेस्टिनेशन है कश्मीर। जून का महीना चल रहा है, देश के कई शहरों में गर्मी अपने पूरे जोरों पर है, लेकिन कश्मीर इस वक्त अपनी सबसे खूबसूरत रंगत में नजर आता है। तो चलिए दोस्तों, अगले कुछ पलों के लिए अपनी रोजमर्रा की दौड़ से थोड़ा वक्त निकालिए और मेरे साथ चलिए कश्मीर की वादियों में।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन और आज हम कश्मीर की तरफ सफ़र कर रहे हैं। जी हाँ, इतनी खूबसूरत जगह है ये, इतनी खूबसूरत कि क्या कहना है ना। सबसे पहले आज हम मैं आपसे बात करती हूँ कश्मीर कैसे पहुँचा जाए। श्रीनगर एयरपोर्ट देश के कई बड़े शहरों जैसे आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु, कोलकाता से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप रेल से सफ़र करना पसंद करते हैं तो जम्मू तावी रेलवे स्टेशन कश्मीर का सबसे बड़ा रेल गेटवे माना जाता है। जम्मू से श्रीनगर आप लगा लीजिए, आप 6 से 8 घंटों तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही प्यारी 6 to 8 आवर्स की जर्नी होगी ये। यकीन मानिए, ये सफ़र भी डेस्टिनेशन जितना ही खूबसूरत होता है। मतलब जून में श्रीनगर का जो टेम्परेचर है ना, आमतौर पर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दिन सुहाने और शामें हल्की ठंडी रहती हैं यहाँ। इसी वजह से जून को कश्मीर विजिट करने का सबसे पॉपुलर महीना भी माना जाता है। अगर आप पहली बार कश्मीर जा रहे हैं तो आप 5-6 दिन का एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। 2 दिन श्रीनगर लगाइएगा, 1 दिन गुलमर्ग, 1 दिन पहलगांव और 1 दिन सोनमर्ग के लिए ज़रूर रखना। और फिर देखिए ना, कश्मीर का हर वो जो दिन होता है आपको हमेशा के लिए एक नई कहानी, एक नई याद देकर चला जाएगा।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
5: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद।
7: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
8: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
7: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
8: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
7: और विनर्स को क्या मिलेगा?
8: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
7: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
9: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
10: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
11: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
10: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
11: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
12: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
13: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन और मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। कश्मीर पहुंचते ही जिस जगह से, जी हां जिस जगह से हम शुरुआत करते हैं वो है श्रीनगर। और श्रीनगर का दिल है कहां? डल लेक में। श्रीनगर एयरपोर्ट से लगभग आप लगा लीजिए 12 से 15 किलोमीटर दूर स्थित है डल लेक, ताकि टैक्सी से आसानी से पहुँचा जा सकता है। सुबह वहाँ पे जो शिकारा राइड है, पानी में आसमान का जो अक्स हो और दूर नज़र आती वो बहुत ही प्यारे से पहाड़, ये नज़ारा शायद कश्मीर की सबसे पहचानी हुई तस्वीर है। डल लेक को, डल लेक के जो ये फ्लोटिंग गार्डन्स हैं और फ्लोटिंग मार्केट भी काफ़ी मशहूर है। और जब बात श्रीनगर की हो तो मुगल गार्डन्स का जिक्र भी तो होना जरूरी है। आपका निशात बाग हो गया, शालीमार बाग हो गया या चश्मे शाही हो गया, है ना? जून के महीने में फूलों और फाउंटेन से सजे हुए ये इतने खूबसूरत लगते हैं कि क्या कहना। देखो मैं आपको एक और रीजन दे रही हूं, बहुत ही स्ट्रांग रीजन। जून का महीना है, बच्चों की छुट्टियां हैं, फटाफट प्लान कर लीजिए अगर आप कश्मीर को थोड़ा और करीब से महसूस करना चाहते हैं। तो आपको पता है क्या करना है? बस एक रात ट्रेडिशनल हाउस बोट में ज़रूर गुजारना है। ये सिर्फ अकोमोडेशन नहीं, कश्मीर की तहजीब का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है।

वेलकम बैक फ्रेंड्स. अब बात करते हैं कश्मीर की तीन सबसे मशहूर डे ट्रिप डेस्टिनेशंस की. यानी कैसे, आप सोचिए मैं किन की बात कर रही हूँ. सबसे पहले ऑफ कोर्स है गुलमर्ग. श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर गुलमर्ग को मीडो ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है. यहाँ की गोंडोला राइड दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार राइड्स में से एक मानी जाती है. अब चलते हैं कहाँ, पहलगांव की तरफ. श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर बसा हुआ है ये हिल टाउन. आपका लीडर जो नदी है उसके जो पाइन फॉरेस्ट और बेताब वैली के लिए मशहूर है. यहाँ की खामोशी और नेचुरल ब्यूटी दिल को छू लेती है. और फिर क्या आता है सोचो तो, अजी अपना सोनमर्ग. श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर दूर सोनमर्ग को मीडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है. जी हाँ, बर्फ से ढकी चोटियाँ, सिंध रिवर और ग्लेशियर व्यू पॉइंट्स इसे कश्मीर के सबसे फोटोजेनिक डेस्टिनेशंस में शामिल करते हैं. अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो इन तीनों जगहों के लिए कम से कम एक एक दिन जरूर रखिएगा, वरना बाद में कहेंगे मैंने बताया नहीं आपको.

देखिए, अब मैं आपसे बात करूंगी उन सब चीजों के बारे में जिनका आपको बहुत ज्यादा शौक है ना। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन और मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। और डेस्टिनेशन आज हमारी है कश्मीर। कहते हैं कि किसी भी जगह को असल में समझना हो, जानना हो, उसके नज़ारों के साथ साथ उसके स्वाद, उसकी तहजीब और उसके लोगों को जानना भी बड़ा ज़रूरी है। और कश्मीर इस बात का एक खूबसूरत उदाहरण है। यहाँ की जो सुबह अक्सर एक गरम कप कश्मीरी कहवा के साथ शुरू होती है और कहवा की खुशबू और वादियों की ठंडी हवा दिन को एक अलग ही सुकून के साथ शुरू करती है। खाने की बात करें तो कश्मीर की ट्रेडिशनल वाजवान दुनिया भर में मशहूर है। रोगन जोश, यखनी और दम आलू जैसे व्यंजन यहाँ की रिच कलिनरी हेरिटेज को दर्शाते हैं। और फिर बात आती है शॉपिंग की। जी हाँ लेडीज, आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप फैमिली वेकेशन पे जा रहे हैं या सिर्फ आप गर्ल्स जा रहे हैं तो शॉपिंग मिस मत कीजिएगा। पश्मीना शॉल्स, वॉलनट, आपकी जो वॉलनट वुड कार्विंग्स होती हैं, कश्मीरी कारपेट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स यहाँ की खास पहचान है। लेकिन फ्रेंड्स, कश्मीर से सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज जो आप घर लेकर जाते हैं ना, वो कोई सुवेनियर नहीं होता है, वो होती है यहाँ की यादें, लोगों की मेहमान नवाजी और वो सुकून जो दिल में काफी देर तक आपके बसा रहता है।

और दोस्तों, आज का रेनबो डेस्टिनेशन सफर यहीं समाप्त होता है। कश्मीर की वादियों के बारे में बात करते हुए एक बात जरूर महसूस होती है। क्या महसूस होती है? वो कि कुछ जगहें हमें सिर्फ खूब

खूबसूरत नज़ारे ही नहीं देती बल्कि हमें थोड़ा सा अपने आप के करीब ही ले आती हैं। और इसी बात के साथ याद दिला दें कि 21 जून को पूरी दुनिया इंटरनेशनल योगा डे मनाती है। सोचिए ज़रा, सुबह का वक्त हो, पहाड़ों पर सूरज की पहली किरणें बिखर रही हों, वादियों में ठंडी हवा चल रही हो और आप दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ कर रहे हो। आह, सोच के ही मजा आ रहा है ना। योगा और सफर दोनों ही हमें एक बात सिखाते हैं, रुक कर जीवन की जो खूबसूरती को महसूस करना होता है ना, बस वो सबसे इम्पोर्टेंट एहसास होता है। मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे थे रेनबो डेस्टिनेशन सिर्फ आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर। इस धुन के उस पार आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। मैं आपसे फिर मिलूंगी 4 बजे अल्फा जन में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: सिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है। प्रश्न एक बार फिर

0: से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार

हार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चीटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चीटी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन स्वीकार करिए। शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज का विषय है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली, बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी हां, हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं और अक्सर हमारे कार्यक्रमों में हम बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचाते हैं। कोशिश ये होती है कि जीवन के हर पहलू, स्वास्थ्य के हर पहलू की जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। और जब हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और किस तरह से उनको पहचाने, सिम्टम्स को ढूंढें और फिर इलाज कराएं। पर क्या आप ये जानते हैं कि शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक बीमारी या मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है? जी हां, बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य की तुलना में हम इस पर अक्सर कम ध्यान देते हैं। जैसे जैसे व्यक्तियों की उम्र बढ़ती है, उन्हें जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के संयोजन के कारण विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और बुजुर्गों में जो ये मानसिक समस्या या मानसिक स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, वो सारी जानकारी हम चाहते हैं कि आज आपको रेडियो डॉक्टर के माध्यम से मिले। हमारे साथ हमारी विशेषज्ञ, हमारी स्पेशलिस्ट आ चुके हैं स्टूडियो में। आपका उनसे तारुफ करा दें। डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता हमारे साथ हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में एम्स न्यू दिल्ली में। स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में एफएम के इस कार्यक्रम में। तो रेडियो डॉक्टर में जैसे मैंने कहा कि हम अक्सर बात हर पहलू की करना चाहते हैं और स्वास्थ्य के जब हम हर पहलू की जब बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम शारीरिक पर ही रुक जाते हैं कि ये बीमारी है वो बीमारी है और ये भूल जाते हैं कि हो सकता है ये बीमारी की उपज जो है वो मानसिक लेवल पे हुई हो। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ये बताएं।
2: आपने बहुत अच्छी चीज बोली एक शालिनी जी, कि कई बार शारीरिक बीमारियां जो हैं वो मानसिक प्रॉब्लम्स की उपज से भी हो सकती हैं। हमारे देश में बहुत एक मान्यता है कि अरे बूढ़े लोगों में फिजिकल प्रॉब्लम्स या शारीरिक परेशानियां होंगी, बट मानसिक स्वास्थ्य की तरफ उतना ध्यान नहीं जाता है। बीमारी होती भी है तो लगता है अरे ठीक है, हो जाएगी, ठीक, छोटी मोटी चीज है, बूढ़े हैं, इनको तो ये दिक्कतें होंगी। बट बहुत सारे ऐसे अभी अध्ययन हुए हैं जिनमें ये देखा गया है कि मानसिक बीमारियां बूढ़ों में उतनी ही कॉमन या कुछ बीमारियां जनरल पॉपुलेशन से भी ज्यादा बूढ़े लोगों में देखी गई हैं।
3: अच्छा।
2: तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा मन आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो मानसिक बीमारियों पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी उनके स्वास्थ्य।
1: सही बात आपने बोली और ये भी बात बिल्कुल सही है कि कई बार जब हम मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं या वर्किंग जो लोग हैं या नई नई शादी हुई है और 20s, 30s में है, 40s तक में है, इनको ज्यादा होगी, बिकॉज उनके पास इतने सारे काम है, उनके पास समय नहीं है सोचने का, भागदौड़ बहुत है जिंदगी में, उसके कारण स्ट्रेस है और स्ट्रेस के कारण उनका मेंटल हेल्थ खराब है, ये भी कहीं जुड़ता है। पर जैसे आपने कहा कि एल्डरलीज को भी होता है, तो हम जरूर इसके कारण भी जानना चाहेंगे और किस तरह से हम इससे डील करें, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कैसे इससे डील करें, ये भी हम चाहेंगे इस कार्यक्रम में हम बात करें। पर इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता जुड़ते हैं डॉक्टर स्वाति, और वो अपनी अपनी समस्याओं के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इस विश्वास के साथ जुड़ते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको बहुत सारी उनकी समस्याओं का घर बैठे समाधान मिल जाएगा। तो आज भी हम इस कार्यक्रम में यही चाहेंगे कि आपकी अगर कोई समस्या है, आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है, ऐसी कोई समस्या आपको लगती है कि उनको मानसिक स्तर पर आप फील कर रहे हैं, और नहीं तो जानकारी के लिए भी आप, हर किसी को तो उस स्टेज पे पहुंचना ही है, तो कोई जानकारी चाहते हैं आप इस विषय पर जो कि है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली यानी बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य, तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। जीवन चलने का नाम है और ये चलती ही रहेगी और इसे चलना भी है, पर हमें खुश रहकर अपने जीवन को बिताना है, रुकना नहीं है भाई, कहीं चलते जाना है।

जी हाँ, रुकना नहीं है, हार के और जीवन चलने का ही नाम है, चलते जाना है। पर कितनी अच्छे से आप अपनी स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, मेंटल एंड फिजिकल एज वेल एज सोशल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। बहुत जरूरी है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हों, जिससे कि हम जिंदगी

0: भरपूर जी पाएं। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली पर, बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य पर। तो पहले इनसे बात करते हैं, जगदीप सिंह जी हमारे साथ हैं कॉल पर। हेलो, नमस्ते जगदीप जी, स्वागत है आपका।
1: देखो 80 साल उम्र है मेरी सर।
0: जी जी।
1: मेरे घुटनों में दर्द 5-6 साल से हो रहा है। इलाज तो कर रहे हैं, भाई वही इलाज होता है, गोली दर्द की देते हैं और टूट देते हैं। 5 साल से यही इलाज हो रहा है। अब 6 महीने से मेरा हाथ कांपने लग गया। वो डॉक्टर कहता है कि ये घुटनों की वजह से हाथ कांप रहा है। ऐसा जानना चाहते हैं कि घुटनों का दर्द इससे साथ है या नहीं है, ये पता करना चाहते हैं।
0: ये घुटनों के दर्द से रिलेटेड है कि नहीं, आप ये जानना चाह रहे हैं?
1: हाँ, ये जानना।
0: जी जी जी, ठीक है। मैम से पूछते हैं, मैम आपका प्रश्न सुन रही हैं।
2: जगदीप जी, ये बिल्कुल मेरा एरिया नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: दिल्ली के
2: हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमारा एम्स में नेशनल सेंटर फॉर एजिंग जो एक सर्विसेज शुरू हुई है, जो सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है, वहाँ पर हमारे हड्डी के डॉक्टर भी आते हैं। आप वहाँ पर एक बार आ सकते हैं, उनका दिन होता है सोमवार, उसमें आके आप उन्हें एक बार दिखा लीजिए, वो ज्यादा अच्छे से इस बात का जवाब दे पाएंगे।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी बात करने के लिए, अपनी समस्या शेयर करने के लिए। और जैसा हमने कहा, हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी कहा डॉक्टर स्वाति, कि हम फिजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर ही ज्यादा कंसंट्रेट भी करते हैं और दिमाग भी वहीं ज्यादा चलता है, यहाँ दर्द है या ये बुखार है या बढ़ती उम्र की जो समस्याएं होती हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो बीपी हो चाहे जो भी बीमारी हो, लेकिन मेंटल जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उसको बहुत इग्नोर किया जाता है। और यही हम चाहते हैं आज इस कार्यक्रम में आपको बताएं कि इनको इग्नोर नहीं करना है, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ जो इश्यूज की हम बात कर रहे हैं वो उसकी क्या टाइप्स हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं?
2: सबसे कॉमन जो देखा गया है इस उम्र में वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन जैसे हम सब जानते हैं कि जिसमें उदासीपन रहना, लेकिन बूढ़े लोगों में कई बार देखा गया है कि उनमें चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे, वो बहुत नकारात्मक बातें करेंगे, पहले जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी, ज़्यादा सोने लगेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको नींद में दिक्कत भी होती है, भूख खत्म हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि जीने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद दूसरा जो चीज देखी गई है जिसको कहते हैं मतिभ्रम या डिमेंशिया। डिमेंशिया जिसमें याददाश्त बहुत ज्यादा खराब होने लगी है, आपको चीजें याद नहीं रहती, छोटी छोटी चीजें, कब खाना खाया, आज क्या किया, पिछले 24 घंटे में क्या किया, सवालों को बार बार दोहराते हैं आप, छोटे मोटे डिसीजंस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। सो डिमेंशिया। फिर हो गया आपका एंग्जाइटी, हम बहुत कॉमनली देखते हैं आगे क्या होगा, क्या मेरा कोई ख्याल रखने वाला होगा, मुझे कुछ हो गया तो।
0: और हम अक्सर ये भी कहते हैं कि इनके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए तो इसलिए ये ओवर थिंकिंग करते हैं, तो क्या ये उसी से होता है कि आप कुछ नहीं करते हो? तो ये भी मैं जरूर बात करूंगी कि अपने आप को बिजी रखना कितना जरूरी है। पर हमारे एक श्रोता है वो हमारे साथ जुड़ी है, मिसेस बेदी, तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है मिसेस बेदी आपका रेडियो डॉक्टर में।
3: जी जी, डॉक्टर साहब दोनों को बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बताएं आप क्या प्रश्न करना चाहेंगी?
3: ऐसा है डॉक्टर, मैं हूँ 74 की, पर मेरी लाइफ स्टाइल है 16 साल वाला। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इस एज में ये मत सोचिए कि मैं बूढ़ा हो गया। कहते हैं दिल हो जवान तो आप जिंदा रहे।
0: तो आज तो हम यही कार्यक्रम कर रहे हैं बेदी जी। हाँ। शॉर्ट में अपना लाइफ स्टाइल बता दीजिए सभी श्रोताओं को, 16 साल के बन जाए हम सब।
3: अपने आप को, क्योंकि मैं रेडियो से बहुत जुड़ी हुई हूँ, एक वर्ल्ड फेमस आरजे वो मेरी बेटी है, तो उसने मुझे बहुत जिंदा किया। मैं बड़ी नेगेटिव थी क्योंकि सारे छोड़ गए, पेरेंट्स छोड़ गए, चले गए, खत्म हो गए, हस्बैंड चले गए, तो मेरा थोड़ा सा कुछ पार्टनरशिप के झगड़े थे, उससे मैं बड़ी परेशान थी। तो मुझे कहते हैं ना कोई आपको ऐसा साथी मिल जाए जो जिंदगी दे, तो उसने मुझे पॉजिटिविटी दी। और अब मैं क्या करती हूँ, 25वां साल है मैं योग में हूँ। मैं इतनी बीमार थी कि 2 कदम नहीं चल सकती थी, अब 19 साल से उसी सेंटर की मैं हेड हूँ।
0: चलिए, तो योग ने बहुत आपकी मदद की, लेकिन कुछ
3: जिंदा ही उन्होंने।
0: हाँ, तो कोई प्रश्न है आपका? हाँ, कि
3: नहीं नहीं मैं खुद साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ ना, तो मैं समझती हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सब बुजुर्गों को।
0: जी बताइए।
3: एक तो अपने आप को बुजुर्ग मत समझिए, दूसरा बच्चों के साथ मिलके रहिए, उनको ज्यादा टोका टक्की मत करिए, उनको जो बात समझानी है थोड़े प्यार से समझाइए, नहीं तो बच्चे भी चिढ़ जाते हैं और उनके आगे जो बच्चे हैं वो और भी चिढ़ जाते हैं। थोड़ा सा हम लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा उनके साथ, ठीक है? और मैं देखिए योग करती हूँ, कुछ मैं बिजनेस करती हूँ कि जो मेरे हाथ कभी टेढ़े थे बिल्कुल, अब मैं उनसे केक सेल करती हूँ।

0: पसंद किया जा रहा
1: मेरे
0: है।
1: को आपका बताओ, मेरी क्लास का टाइम है, पर आज मैं 5 मिनट का लेट हूँ, आपसे बात किए बिना नहीं जाना था।
0: चलिए, धन्यवाद
1: थैंक
0: बहुत बहुत कॉल
1: यू
0: करने
1: दोनों
0: के
1: को,
0: लिए।
2: थैंक यू,
1: बहुत बहुत
0: और
1: थैंक
0: एक और श्रोता वेट कर रहे हैं, उनकी कुछ समस्या है। हेलो राजेंद्र
3: यू।
0: जी।
3: तो हाँ जी, शालिनी मैम और डॉक्टर साहिबा दोनों को नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
2: नमस्ते।
3: अब सवाल मेरा ये है कि आप बुजुर्ग कहते किसको है, पहले मैं जानना चाहूंगा। 60 साल से ऊपर, 65 साल से ऊपर, 75, 80, 90 साल से ऊपर, किसे आप बुजुर्ग मानेंगे? दूसरा सवाल मेरा ये है, कहते हैं कि चिंता ही चिता तैयार कर देती है, तो मानसिक रोग हो ही ना, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डाइट, एक्सरसाइज, या क्या एटमोसफेयर सरकम क्या
0: जी,
3: पैदा
0: जी
3: करना?
0: बिल्कुल, इसकी बात हम पूरे कार्यक्रम में करते रहेंगे, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए।
3: प्लीज तीसरा सवाल मेरा ये है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन और टेंशन में क्या फर्क है, प्लीज जरा इसको डिटेल विस्तार से समझाएं बजे में। और मुझे चौथा सवाल है, मेरे को स्लीप हैपनिया, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है मैं, तो प्लीज इससे मैं कैसे दूर रहूं, प्लीज इसका उपाय बताएं,
0: जी
3: बड़ी
0: जी
3: मेहरबानी
0: बहुत
3: होगी।
0: सारी बातें आप जानना चाहते हैं राजेंद्र जी, तो इसको हम धीरे धीरे करके कार्यक्रम के दौरान लेते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं मेंटल हेल्थ को, और डॉक्टर स्वाति आज हमें इस कार्यक्रम में यही बताने वाली हैं। तो सबसे जो आप इनकी पहला जो प्रश्न था, बुजुर्ग किसे कहते हैं, पहले तो इसे ही समझ लेते हैं।
2: तो राजेंद्र जी नमस्ते, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो डेफिनेशन है, तो बुजुर्ग वो है जो 60 से ऊपर है, जहां पे हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। बट मानसिक रूप से अगर आप अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानते हैं तो बुजुर्ग नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस 60 के हो गए तो अब तो हम बुजुर्ग हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे पहले हमारी जो श्रोता जुड़ी, उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को बुजुर्ग मानती नहीं हूं, मैं 16 साल जैसा महसूस करती हूँ। सो मजाक में बोले तो एज इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर है, आप उसे कैसे लेते हैं। प्रिवेंशन की जहां पे आपने बात करी कि हम कैसे उस चीज को रोकें, कैसे हम इंश्योर करें कि मानसिक बीमारियां ना हो, उसके कुछ कुछ चीजें हम कहते हैं। सबसे जरूरी है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे आप चाहे योगा करिए, वॉक पे जाइए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, बट फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। उसके अलावा अपनी डाइट का ख्याल रखना। आजकल जैसे अब छोटे बच्चों को भी अगर हम देखें, यंगस्टर्स को, सबकी डाइट बहुत खराब हो गई है, तो न्यूट्रिशियस खाना खाना, फ्रूट्स वगैरह का इंटेक, पानी का इंटेक अपना ठीक रहना, किसी भी नशे वाली चीज से दूर रहना, जैसे निकोटीन हो गया, सिगरेट्स हो गई, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, उनका सेवन या तो बिल्कुल नहीं करना या कम से कम करना। उसके अलावा जैसे मेडिटेशन के बहुत अच्छे इफेक्ट देखे गए हैं कि मेडिटेशन या प्राणायाम वगैरह करने से फर्क पड़ता है। सपोर्ट सिस्टम्स, आपकी रिलेशनशिप्स, हम लोग सब काम में डूबे रहते हैं कि काम करना है, पैसे कमाने हैं, ये करना है, बट बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने देखा है कि रिलेशनशिप्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके मेंटल वेलबींग के लिए। और वो भी ये नहीं कि 15 रिलेशनशिप, अगर 5 रिलेशनशिप भी है लेकिन वो बहुत अच्छी हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अपने ब्रेन को एक्टिव रखना, कोई नई चीज सीख ली, पजल्स वगैरह करते रहे, गेम्स खेले, अपने लोगों से बात करी, अपने काम को, रूटीन को फॉलो करते रहे, तो ब्रेन को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है।
0: और एक और जो प्रश्न उन्होंने पूछा, वो जो हम उससे पहले बात कर ही रहे थे, आपने अलग अलग जो टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज पे हम बात कर रहे थे, डिप्रेशन की बात आपने कर दी थी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, इन सबका डिफरेंस जो है वो हमारे और भी बहुत सारे श्रोता जानना चाहेंगे।
2: राइट, सो टेंशन और स्ट्रेस तो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है। टेंशन है कि बस किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचना कि अरे कल एग्जाम है कैसे होगा, या कल मुझे कहीं जाना है तो कैसे जाऊंगी। स्ट्रेस है अगेन वेरी सिमिलर, जहां पे हम किसी चीज को लेके परेशान हो रहे हैं कि ये काम कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमें दिक्कत हो रही है उसको प्लान करने में या मैनेज करने में। तो ये दोनों चीजें तो आपके जनरल डे टू डे लाइफ में सबके ही चलते हैं। जब हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बात करते हैं तो हम एक मानसिक बीमारी की बात कर रहे हैं। एंग्जाइटी जिसमें एक ऐसा समय जहां पे लंबे समय तक बिना किसी बहुत ज्यादा वजह के आपको परेशानी चल रही है, आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, दिल की धड़कन बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या हर समय बहुत ही ज्यादा ऐसा महसूस होता है कि सर चकरा रहा है या ठीक नहीं लग रहा है,
0: फीलिंग होना कि
2: अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से, और डिप्रेशन जैसे मैंने बताया, जहाँ पे आपका मन उदास या चिड़चिड़ा हो जाएगा, वहां पे उसके साथ साथ भी एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी और डिप्रेशन यूजुअली एल्डरली में हमने देखे हैं कि साथ साथ चलते अच्छा। हैं, बट डिप्रेशन का सबसे कॉमन फीचर रहेगा कि आपका मन परेशान रहेगा, चाहे वो चिड़चिड़ा रहे या वो दुखी रहे।

0: एंजाइटी में फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा आएंगे, पेट जल्दी खराब हो गया है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दिल की धड़कन बहुत बढ़ रही है, हाथ पैर में कंपन हो रहा
1: तो
0: है,
1: ये
0: तो ये सब
1: एंजाइटी और
0: चीजें।
1: डिप्रेशन ये अलग अलग कारणों से हो सकते हैं या सेम कारण से ही ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं?
0: सेम कारण से भी हो सकते हैं। किसको, जैसे मान लीजिए कोई लॉस हुआ आपके किसी के यहाँ, आपके किसी की डेथ हो गई, तो अब उसकी वजह से किसी को एंजाइटी भी हो सकती है कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, और वहीं डिप्रेशन भी हो सकता है कि अब मैं उस इंसान के बिना कैसे जीऊं। कभी कभी कुछ चीजों में, जैसे एल्डरली में हम लोग देखते हैं हेल्थ रिलेटेड एंजाइटी ज्यादा रहती है, ऐसा नहीं है कि उनको डिप्रेशन है,
1: जी
0: बट उनको बस ये एंजाइटी है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाऊं, या मेरा काम ठीक से चलता रहे वाला। डिप्रेशन ज्यादातर उन लोगों में देखा गया है जहां लोनलीनेस बहुत ज्यादा होगी, या पहले डिप्रेशन की हिस्ट्री रही है, या आपको अभी रिसेंटली कोई लॉस हुआ है, उन सब में डिप्रेशन ज्यादा देखा गया है,
1: तो मतलब जैसे कुछ अननोन का फियर जो होता है उसको एंग्जाइटी
0: उसको
1: समझे, है
0: एंजाइटी
1: ना?
0: कहते
1: और
0: हैं।
1: अगर आपको एक्चुअल कोई ऐसी फीलिंग हो रही है वेरी लो, वेरी डल, देन इट इज समथिंग
0: डिप्रेशन की
1: डिप्रेशन के
0: तरह।
1: जैसा। तो चलिए यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक गाना सुनेंगे, लौट कर आते हैं। और गाने भी बहुत अच्छे होते हैं अपने मूड को ठीक रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए। गाना सुनना भी कहते हैं ना, स्ट्रेस को रिलीव करते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो हम भी इस कार्यक्रम में बीच बीच में आपको स्ट्रेस फ्री करते रहते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना है, पर हाँ कार्यक्रम को में जो भी हम लेकर आ रहे हैं उसको समझना है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health airdelhi@gmail.com पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वेलकम बैक, आप हैं रेडियो डॉक्टर में। आज बात हो रही है बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य और हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कुछ बात की, कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े, पर एक मैसेज लेना चाहूंगी। यहाँ पर परिधि लिख रही है दिल्ली से, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग ग्रेट टॉपिक्स फॉर अस शालिनी मैम। क्वेश्चन ये है, कैन पुअर मेंटल हेल्थ ऑल्सो लीड टू बॉडी पेन्स? जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना कि फिजिकल मेंटल जुड़ा हुआ है, आपने कहा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसी की तरफ है ये, कि अगर पुअर मेंटल हेल्थ है तो क्या बॉडी पेन्स में मैनिफेस्ट हो सकता है? और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि आई हैव नोटिस दैट ऑन डेज आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, माय लेग्स स्टार्ट्स पेनिंग व्हेन आई गो टू स्लीप। तो क्या ये रिलेशन आपस में है?
2: हाँ परिधि जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से कभी कभी हमें बॉडी पेन्स वगैरह हो सकते हैं, चाहे वो लेग्स में हो, चेस्ट में हो, बैक में हो। उसका इलाज बेटर रहेगा कि आप एक बार किसी स्पेशलिस्ट से मिलने, चाहे साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट

0: से जो बाकी चीजों को भी असेस कर सके कि कोई अंडरलाइंग एक तो फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, और दूसरा अगर स्ट्रेस है तो क्या उसमें सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है या दवाई की भी जरूरत है अगर वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो। सो बेस्ट रहेगा कि मिल लीजिए, क्योंकि दोनों रिलेटेड हो सकते हैं
1: जी। और हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं, यामिन भाई से बात कर लेते हैं।
2: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार यामिन भाई।
2: मैम को नमस्कार
0: जी। नमस्ते।
2: मैं जानना चाह रहा था जैसे कि बुजुर्गों को हम खाना वगैरह टाइम पे देते हैं, सब कुछ दवाई वगैरह टाइम पे देते हैं, लेकिन जब भी वो चिल्लाते हैं कहते हैं और उसी शेयर करते हैं तो ये क्या बीमारी हो जाती है, कहाँ दिखाएं इनको?
1: मुझे जहाँ तक समझ में आता है यामिन भाई ये कहना चाहते हैं कि हम उनकी केयर तो कर रहे हैं पर फिर भी उनको कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है या हाइपर हो जाते हैं, क्या ऐसा होता है?
0: हाँ जी, वो हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड ना हो, हाइपर हो जाएं, उस समय खुद को बुरा लगता है। मान लीजिए आप उनकी केयर कर रहे हैं और वो सामने किसी को कह रहे हैं कि मेरा तो कोई देखभाल ही नहीं करता या मेरे साथ तो ये टाइम नहीं स्पेंड करता, तो वो चीज खुद को बहुत हर्ट कर सकती है। बट अगर हम उस समय अपने आप को हटाकर उन्हें देख पाएं कि चलो वो परेशान है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमें जानबूझ के हर्ट करना चाहते हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, सो थोड़ा सा पेशेंस रख के उनके साथ डील करें, या तो उस सिचुएशन से हट जाएं या उन्हें प्यार से थोड़ा समझा लें। और आपको अगर बहुत उस चीज का स्ट्रेस हो रहा है तो आप जाके अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी और फैमिली मेंबर से उस बारे में बात कर लें, बट उस समय अगर आप उनके ऊपर वापस चिल्लाएंगे तो सिचुएशंस खराब ही होंगी।
1: जी जी। और ऐसे ही एक और मैसेज आया, पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। हेलो।
3: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं? जितेंद्र जी।
3: हाँ।
1: जी बताएं।
3: जितेंद्र जयपुर से।
1: हाँ जी जितेंद्र जी, अपना प्रश्न करें।
3: जैसे हमारा प्रस्ताव 52, मेरी तो उम्र 52-53 साल है, लेकिन जैसे नींद की हमारी कमी है और मन चंचल टाइप का रहता है, ये भी कर ले वो भी कर ले, रेनबो भी सुन ले, एफएम गोल्ड भी सुन ले,
1: ऐसे करके कई तरह का
3: कितना दे, सभी पे अच्छा आते रहता है, सबके अच्छा आता रहता
1: है। हाँ, तो आपको अच्छा लगता है ना सुन के?
3: हाँ हाँ। तो इसमें पजल भी रहता है माइंड, मतलब ये भी होता है कि क्या क्या करें,
1: क्या क्या क्या देखें, क्या क्या छोड़ें,
3: क्या क्या, सारे अच्छा है ना,
1: सारे अच्छा है। चलिए,
3: प्रसार भारती का सारा ही चीज अच्छा है।
1: अरे

0: कुछ ऐसे भी थोड़ा सा हल्का सा मन प्रॉब्लम रहता है जैसे, तो कैसे ठीक रखूं अपने आप को जैसे ये
1: जी।
0: मेरे मैं जयपुर में रहता हूँ, मैं पहले कलकत्ता रहता था तो दोस्त लोग थे,
1: तो यहाँ दोस्त लोग नहीं है।
0: हाँ, नहीं
1: मैडम आपसे कुछ पूछना चाहेंगी तो आप लाइन पे रहिए।
0: हाँ
2: जी, सो नींद में क्या दिक्कत आती है जितेंद्र जी?
0: मतलब जैसे 3-4 घंटे के बाद फिर नींद खुल जाती है, फिर 1-2 घंटा काम करते फिर सोते हैं, और दोपहर में भी सोने की इच्छा करती है लेकिन ऑफिस में रहते हैं तो इसलिए ठीक से नहीं, मतलब नींद का ज्यादातर प्रॉब्लम है।
2: तो 3-4 घंटे बाद जब नींद खुल जाती है तो उसके बाद कितनी देर बाद नींद आती है?
0: करीब 1.5-2 घंटे बाद।
2: और उस 1.5-2 घंटे में आप क्या करते हैं?
0: कुछ घर का काम कर लेते हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं।
2: अच्छा ठीक है।
0: अच्छा, और दूसरा चीज है कि जैसे कहीं घूमने की प्लानिंग हो रहा है तो चित्तौड़गढ़ जाएं कि मथुरा जाएं, सब पास पास, तो इसी कंफ्यूजन में कहीं नहीं जा पाते।
2: राइट तो ये तो हम कहते रहे जब बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें कि क्या नहीं करें। बट एक देखिए, दो चीजें जो आप जहाँ पे आप कह रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें चंचल, ये चीजें हो सकती हैं, उसमें बेस्ट ये है कि एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे मैं हमेशा करती हूँ कि लिस्ट बना लेती हूँ क्या क्या करना है, उसमें से सबसे जरूरी क्या है या सबसे अच्छा क्या है या सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है या कौन सी चीज ज्यादा इजीली हो सकती है। जैसे आपने कहा 2 जगहों के नाम लिए आपने कहा, तो जहां पे ज्यादा इजीली जा सकते हैं वहां पे पहले हो आइए, अगला वाला अगले बारे के लिए लिख लीजिए। सो उस तरह से एक लिस्ट बना लीजिए। वही अगर आपको प्रोग्राम सुनने हैं तो उनकी लिस्ट बना ली कि अच्छा आज ये वाला सुन लूंगा कल ये वाला सुन लूंगा, ताकि हर चीज को बैलेंस कर पाए।
1: रेडियो डॉक्टर रोज सुनना है लेकिन जितेंद्र जी,
2: क्योंकि चीजों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, दिमाग में चलता रहेगा अरे ये छूट गया वो कर लिया लेकिन वो वाली चीज तो नहीं हुई, उन सबसे भी नींद की दिक्कत हो सकती है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा मन में परेशानी वगैरह चल रही है, तो अगर जो दोस्त यहाँ नहीं है तो क्या ऐसे कोई फैमिली मेंबर्स या दोस्त ऐसे हैं जिनसे आप थोड़ा रेगुलरली कम से कम फोन पे बात कर सकते हैं? सो वो चीज
0: और एक यहाँ पे नहीं है लेकिन दूसरे जगह है।
2: अच्छा नहीं, जैसे फोन पे बात कर लिया थोड़ा,
0: कर सकते हैं ना,
2: थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह सुबह करते हैं?
0: नहीं, शाम को करते हैं, 6:30-6 बजे शाम।
2: उसको कोशिश करिए सुबह कर लीजिए या शाम को थोड़ा और जल्दी कर लीजिए। और रात को जब नींद खुलती है तो घर के काम मत करिए उस समय, अपना जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया लेकिन बेड पे बैठ के मत पढ़िए उसको, कहीं कुर्सी पे या नीचे जमीन पे कहीं भी बैठ के पढ़िए, और फिर नींद आने लगे तो वापस सोने चले जाइए। या फिर जैसे योग निद्रा होती है या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस वगैरह तो आजकल बहुत मिल जाती हैं, वो सब सुन लीजिए और लाइट वगैरह बंद रखिए। बहुत ज्यादा घर के काम करने लगेंगे तो दिमाग फिर से एक्टिव हो जाएगा। सो दिमाग को रिलैक्स रखना है, फोन का ये नहीं कि फोन को देखते रहे या टीवी को देखते रहे, लेकिन कुछ रिलैक्सिंग सुन लिया या सिर्फ पढ़ लिया बैठ के।
1: धन्यवाद प्रश्न करने के लिए, हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। बहुत सारे मैसेज भी हमारे पास आ चुके हैं, धन्यवाद जितेंद्र जी। ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है नरदेव सिंह चौहान ने कोटद्वार उत्तराखंड से। शाली मैम एंड डॉक्टर स्वाति मैम को नमस्कार। मैम, डॉक्टर साहिबा से एक मानसिक रोगी के केयर टेकर जैसे उनके पुत्र या पति या बहू को क्या एडवाइस आप देना चाहेंगी? ये चाहते हैं कि आप उनको एडवाइस दें, क्योंकि इन्होंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो हमारे बुजुर्ग चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पाता है अपने बहू से, चाहे बेटे से, चाहे पति से, वट एवर दे एक्सपेक्ट, तो उससे स्थितियां और बद से बदतर होती जाती हैं। तो आपका केयर टेकर्स के लिए क्या एडवाइस रहेगा?
2: बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार हम मरीजों को देखते देखते उन लोगों को भूल जाते हैं जो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। सो उसमें हम लोग कहते हैं कि एक तो परफेक्ट कभी भी आप नहीं हो पाएंगे, कभी भी ये नहीं हो पाएगा कि सामने वाला पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। वो अपने आप में परेशान है तो उसको किसी न किसी चीज में परेशानी दिख जाएगी। सो जैसे मैंने कहा, हर चीज को अपने ऊपर नहीं लेना है कि ये मेरी कंप्लेन कर रहे हैं या मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, वो नहीं करना है। अपनी सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हम बोलते हैं कि आप थोड़ी देर आप एक्सरसाइज जरूर करिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए या एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, और उसके लिए जरूरी है कि सारी फैमिली कोऑपरेट करे। अगर सब लोग साथ में रह रहे हैं तो थोड़ा समय बेटे को भी मिल गया जहां पे वो अपना काम कर रहा है या अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ कर रहा है, फिर थोड़ा सा फादर का ध्यान रख लिया, वैसे ही बहू ने करा, वैसे ही वाइफ ने किया, या अगर वाइफ है तो हस्बैंड ने किया, तो एक सपोर्ट सिस्टम आपका रहेगा तो सबकी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी और सबको थोड़ा थोड़ा टाइम आउट भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो रही हैं, हम लोग आपस में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर के आसपास या एरिया में किसी साइकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हैं, जो एज अ फैमिली आपसे बात करके चीजों को समझ सके, आपको समझा सके कि आपको चीजों को

0: कैसे मैनेज करना है।
1: जी, और लगभग ऐसा ही एक और मैसेज हमारे पास आया है डॉक्टर, हाउ टू गेट डीप कंटिन्यूअस एंड रेस्टफुल स्लीप, जो अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले राजेंद्र जी के साथ, तो आपने थोड़ा सा तो बताया
0: जी।
1: इनको, कुछ और कहना चाहेंगे आप?
0: सो स्लीप के लिए ना हमारा एक मेथड होता है जिसको कहते हैं स्लीप हाइजीन। सो उसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं वो बता देती हूँ, शायद अगर उससे मदद मिले
1: जी
0: तो।
1: बिल्कुल।
0: पहला रूल होता है कि सोने का जाने का समय और बेड छोड़ने का समय एक होना चाहिए। कि अगर आप 10, 10:30 बजे सोने जा रहे हैं तो 10 से 11 के बीच में सोने चले जाइए। सुबह अगर 7 बजे उठ रहे हैं तो चाहे नींद आई है या नहीं आई है, 7 बजे बिस्तर को छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, अगर आधे घंटे तक नींद नहीं आती है तो बिस्तर पर लेटे नहीं रहना है, उठ जाइए, कोई किताब पढ़ लीजिए, कोई प्लेलिस्ट बना लीजिए जिसमें स्लीप स्टोरी, स्लीप म्यूजिक या योग निद्रा या मेडिटेशन टाइप की चीजें हो जिनको आप सिर्फ सुन सकें। टीवी मोबाइल वगैरह का उपयोग नहीं करना है, बल्कि सोने जाने से आधा घंटा पहले ही वो चीजें बंद कर दीजिए। एक्सरसाइज प्रेफरेबली मॉर्निंग टाइम में, अगर स्लीप के इश्यूज हो रहे हैं तो। शाम को 5-6 बजे के बाद चाय नहीं पीनी है, सिगरेट अगर आप स्मोक करते हैं या टोबैको लेते हैं तो वो सब नहीं लेना है, अल्कोहल अवॉइड करनी है, कैफीन अवॉइड करना है। रात को गर्म दूध पी के सो सकते हैं या गर्म पानी से थोड़ा नहा के सो सकते हैं, उससे माइंड कूल डाउन होता है। एक तरीका जो मेरे लिए बहुत काम करता है, आप सोचेंगे कि ये क्या तरीका है, बट मैं मुझे अगर नींद नहीं आई तो मैं हनुमान चालीसा करना शुरू कर देती हूँ। मेन पर्पज ये है कि आपका जो उस समय जब नींद नहीं आती, हम बहुत सारा नेगेटिव सोच रहे होते हैं, क्यों नहीं आ रही, कब आएगी, और जितना
1: या
0: नींद
1: कुछ
0: के
1: कुछ और नेगेटिव थॉट्स
0: या
1: आने
0: और
1: लग
0: कोई
1: जाते हैं
0: नेगेटिव
1: आपके।
0: थॉट्स आ रहे हैं तो हम कहते हैं जितना नींद के पीछे भागेंगे उतना नींद आपसे दूर भागेगी। तो आप चाहे कोई मंत्र पढ़ लीजिए या बैकवर्ड काउंटिंग कर लीजिए, तो उन सब से क्या होता है, उन नेगेटिव थॉट से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो अगेन माइंड रिलैक्स होगा, नींद आने लगेगी। सो ये कुछ तरीके हम बताते हैं स्लीप से।
1: हमारे साथ हमारे रेगुलर जो श्रोता हैं चट्टा जी, वो भी कॉल पे आ गए हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैडम
1: जी। नमस्ते नमस्ते।
2: रघुविंदर सिंह चट्टा बोल रहा हूँ
1: जी, आप अपना प्रश्न करें।
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
0: नमस्ते जी
2: डॉक्टर साहब। वैसे तो मैं बड़ा कूल माइंडेड पर्सन हूँ
0: जी,
2: और 37 साल गवर्नमेंट जॉब की एज ए ऑफिसर, और रेगुलर लिस्टनर भी हूँ आकाशवाणी का 45 ईयर से। लेकिन मेरे को एक दिक्कत ये होती है कि मैं कई बार छोटी सी बात पर एकदम से आग बबूला हो जाता हूँ, फिर मेरे से ना तो कोई काम होता है और ना मैं रात को सो पाता हूँ, बार बार नींद खुल जाती है। जैसे किसी मैं जा रहा हूँ और सामने से कोई जानकर आ रहा है, उसने मुझे इग्नोर कर दिया या मैंने मैसेज किया प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हुआ, तो मेरे को तो फिर मेरा माइंड जो है ना वो अपसेट हो जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए?
1: कोई मैसेज नहीं शामिल हुआ, इस पे आप आग बबूला मत हुआ करिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं।
2: नहीं वो बात नहीं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ।
1: हाँ, आपकी बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि आप हमारे सभी कार्यक्रमों में भी मैसेज करते हैं हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर में शामिल हो। तो हमने सुन लिया डॉक्टर, क्या बताना चाहेंगे इनको?
0: तो चड्ढा जी नमस्ते। नमस्कार। तो इसको हम कहते हैं कि एकदम से आग बबूला, मतलब ऐसा लगना कि कहीं ना कहीं दिमाग में शायद ये सोच चलती है कि मेरे साथ गलत हुआ है या मेरे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, या सामने वाले को तमीज से रहना चाहिए, या लोगों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, जो भी एक दिमाग में चल सकता है। तो जब हम ये बहुत ज्यादा इस चीज पे अटक जाते हैं ना कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है या सामने वाले को हमेशा चीजों को ठीक से करना चाहिए, तो वहां पर हमें फिर जल्दी गुस्सा आ जाता है, हमें लगता है कि हमारे साथ गलत कैसे हो सकता है। उसके लिए जो एक सिंपल हम लोग टेक्निक कहते हैं, टाइम आउट। आप जब गुस्सा आ रहा है, एक तो उस परिस्थिति से बाहर आ जाइए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करा। अगर फिर भी बहुत गुस्सा आ रहा है तो हम कहते हैं अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लीजिए, जैसे सारा गुस्सा उसमें भर दिया है, और उसको धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए मुट्ठी को छोड़िए। ऐसे करके 5 मिनट तक थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उस सिचुएशन से हटेंगे, और फिर सोचना है कि क्या मेरा गुस्सा जायज है, क्या सामने वाले ने अगर मुझे इग्नोर किया या मैसेज शामिल नहीं हुआ तो क्या उसका कोई और कारण भी हो सकता है। सो इस तरह से जब अपने आप को पॉजिटिवली समझाएंगे या अपनी सोच को क्वेश्चन खुद करेंगे कि मैं ऐसा किस वजह से सोच रहा हूं, क्या मेरा सोचना सही है, क्या इसको देखने का और कोई तरीका है, या मैं किसी और किसी बच्चे को अगर वो इस परिस्थिति में होता तो उसको क्या समझाता कि तुम्हें क्या सोचना चाहिए या क्या करना चाहिए, उससे आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। बट सबसे जरूरी है आपको एकदम से जो गुस्सा आया है उसको शांत करना। उसके लिए बेस्ट होता है थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए, मुंह पे ठंडे पानी से थोड़ा छींटा दे दीजिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि आप ब्रीथ करेंगे तो आपका इन जनरल बॉडी टेम्परेचर, माइंड सब काम डाउन होगा
2: जी। थैंक यू मैडम, जय हिंद
0: जी।
1: थैंक यू सो मच।

आज कॉल करने के लिए। और ये जो आपने प्रश्न पूछा है, मुझे लगता है बहुत सारे श्रोताओं के मन में भी हो सकता है, तो उनको भी जवाब मिल गया। यहाँ पर एक फिर म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, गाना सुनेंगे और वापस आएंगे, और जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं उनको भी शामिल करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली हमारे साथ हैं। बात हो रही है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली की, तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए रेनबो के साथ और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आवश्यकता, इसकी जरूरत, इसको कैसे पहचाने और कितना इम्पोर्टेंट होता है मेंटली हेल्दी रहना। सुखपाल जी हमारे साथ कॉल पर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: जी जी नमस्ते सुखपाल जी।
1: डॉक्टर साहिबा नमस्ते
0: जी, आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे?
1: मैम मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा से, मेरी उम्र तो 75 वर्ष है सर, तो ये 75 वर्ष के बाद जो है ये बुजुर्गों में चिड़चिड़ापन क्यों आ जाता है?
2: चिड़चिड़ापन
0: की बात कर रहे हैं
1: जी।
2: तो सुखपाल जी नमस्कार। चिड़चिड़ापन बेसिकली इसलिए आ जाता है क्योंकि शायद उस इंसान को, बुजुर्ग को लगता है कि उसने जिंदगी में या तो बहुत कुछ करा लेकिन उसको उसका फल नहीं मिला, या जिंदगी में वो ठीक से अपने जो चाहता था वो नहीं कर पाया दूसरों की वजह से, या कई लोग जो दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं चाहे फाइनेंशियली या फिजिकली, उस चीज में भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। या आपके पास रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ करने को नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे अपना दिन गुजारूं, उस केस में भी चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं चिड़चिड़ापन के। बस ये देखने की जरूरत है कि अगर चिड़चिड़ापन कंटिन्यू हो रहा है, वो चीज निकल नहीं रही है और उसकी वजह से बाकी दिक्कतें भी आने लगी हैं, जैसे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने लगी है, फैमिली के साथ नहीं बन रही है, या इन उसकी वजह से नींद में भूख में भी चेंज आ गया है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है ताकि वो ढंग से डायग्नोज कर सकें कि और कुछ डिप्रेशन टाइप की बीमारी तो नहीं हो रही है और उसका इलाज कर सकें
0: जी। और मैसेजेस हमारे पास हैं। सोहन जी ने लिखा है देहरादून से कि मेरी मदर की उम्र 81 इयर्स है और अचानक पता नहीं क्या हुआ बड़बड़ाने लगी, किसी को पहचान नहीं रही है, उनका बीपी भी उन्होंने बताया है 158/78 है और कुछ खा भी नहीं रही है, तो क्या हो सकता है ये जानना चाहते हैं।
2: इस केस में यूजुअली इस एज में जब अचानक से कोई चीज हो तो एक बीमारी होती है जिसको डिलीरियम कहते हैं, जिसमें अचानक से इंसान चीजों को भूलने लगेगा, अपने आसपास पहलों को नहीं पहचानेगा, या फिर उसको नहीं पता कि अभी क्या समय हुआ है, कहाँ पे वो रह रहा है या कहाँ पे बैठा है, और बड़बड़ाना, ये सब चीजें हो सकती हैं। कई बार ये चीजें स्ट्रोक में भी हो सकती हैं। तो बेटर रहेगा कि आप जहां भी रहते हैं आसपास किसी साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लें ताकि वो प्रॉपर ब्रेन स्कैन वगैरह करके देख सकें कि कोई और दिक्कत तो नहीं है।
0: अच्छा, और ये हमें लिखकर भेजा है, लिखने वाले ने नाम तो नहीं लिखा है पर लिखा है, नमस्कार टू डियरेस्ट दोस्त शालिनी जी एंड डॉक्टर साहिबा, थैंक्स फॉर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर ब्लड टेस्ट एंड अदर स्कैन्स नीडेड बट दीज आर नॉट डन टाइमली विच कैन अफेक्ट मेंटली। तो बहुत जरूरी है क्योंकि टेस्ट भी होने चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है, ये हम हमेशा कह ही रहे हैं। तो इन्होंने ये लिखा है कि कभी कभी विटामिन डी या B12 या अदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से भी मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है, तो कितना रेगुलरली करना चाहिए, हाउ फ्रीक्वेंटली?
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेंटल हेल्थ डायरेक्टली तो इनकी वजह से नहीं बिगड़ेगी, बट हाँ ये फिजिकल हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकते हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ में फर्क पड़ सकता है। सो बेटर रहता है कि कम से कम एक ईयरली अपना जांच करवा लीजिए, जिसमें बेसिक जो आपके ब्लड टेस्ट हैं या अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज हैं, ये एक बेसिक करवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर उसके बीच में लगता है कि कोई दिक्कत होने लगी है तो आप थोड़ा सा उसको पहले भी करवा सकते हैं
0: जी। ललित भाटिया हमको लिख रहे हैं, 65 साल के हैं, अहमदाबाद से। नमस्कार डॉक्टर मैडम और एंकर, आज का विषय धन्यवाद का पात्र है और मैडम का बताने का तरीका, वर्णन करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपकी तारीफ कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ रेडियो सुनना ही हमारी हर तकलीफ का इलाज है, तो इतना ही लिखा है उन्होंने, कोई प्रश्न नहीं किया है जी, और आपकी तारीफ की है। और ये हमें लिखा है मनोहर लाल गांधी जी ने चाणक्य चौक गाजियाबाद से, कि बहुत से बुजुर्ग अकेले रहते हैं, ऐसा बहुत आमतौर पर आजकल देखा जा रहा है, और उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं होता है, वो अक्सर खोए खोए रहते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, माइंड फ्रेश नहीं रहता है। तो ऐसे बुजुर्ग किस तरह से अपने दिमाग को ऑक्यूपाइड रखें, फ्रेश रखें, बिकॉज ये भी एक काफी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है,
2: बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है स्पेशली अर्बन सिटीज में जहां पे अकेलापन बहुत ज्यादा हो गया है लोगों में। तो उसमें हम कहते हैं कि अपने लेवल पे जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं वो है अपना रूटीन बनाना। कई बार क्या होता है जब बहुत अकेलापन है, कोई है नहीं, तो लगता है क्यों सुबह उठना है, क्यों नहाना धोना है, क्यों कुछ भी काम करना है, बट एक रूटीन अगर आप बना पाएंगे तो उससे आप फिजिकली मेंटली बेटर रहेंगे। दूसरा, आसपास अगर आपका कोई कम्युनिटी सेंटर है, कोई एनजीओ है जहां पे आप जा सकते हैं, या मंदिर अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो मंदिर में चले गए या गुरुद्वारे में चले गए जहां पे लोगों की थोड़ी हेल्प करवा दी या कर दी, वो उसमें मदद मिल सकती है। कई एनजीओज होते हैं जो ओल्ड एज के लिए स्पेशली काम करते हैं, तो आप वहां पे जा सकते हैं। कभी कभी हम बोलते

0: ऑर्फनेजेस वगैरह में भी आप जाके वॉलंटियर कर सकते हैं, तो छोटे बच्चे होंगे उनके साथ जब घुलेंगे मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे खेलेंगे, तो वहां पे भी माइंड फ्रेश हो सकता है,
1: अकेलापन दूर हो सकता है
0: अकेलापन दूर हो सकता
1: जी।
0: है। या अगर आपको लगता है कि आप कोई इस उम्र में कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई चीज जो आपने सोची थी कि मैं करूंगा लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से नहीं कर पाए, तो इस तरह का कोई नई चीज भी आप सीख सकते हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा बच्चों को चाहे फ्री में ट्यूशन पढ़ा दिया गरीब बच्चों को। सो जितना एक्टिव अपने आप को रख पाएंगे, अपन खुद को थोड़ा पुश जरूर करना पड़ेगा बट एक्टिव रखेंगे तो अच्छा रहेगा। योगा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पे और 4 लोग मिल जाएं आपको, उससे मदद मिल सकती है।
1: और ये हमें लिखकर भेजा है मोहम्मद इब्राहिम जी ने कि कई बार ये देखने में आता है कि कुछ एल्डरली जो होते हैं वो एज के साथ ओवर स्वीट हो जाते हैं या कुछ इरिटेबल हो जाते हैं, तो इसका कुछ खास कारण होता है, क्यों हो जाता है ऐसा?
0: देखिए वो तो सबका एक तो अपना नेचर भी है कि इंसान इन जनरल कैसा है, फिर उसके सरकमस्टेंसेस कैसे रहे हैं। एक थ्योरी है जो कहती है कि अगर बुढ़ापे में आके आपको लगा कि आपने अपनी जिंदगी अभी तक अच्छे से जी ली है, जो चाहते थे वो काम कर लिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक से सेटल्ड हो गए हैं, तो आप खुद में बड़ा कंटेंट फील करेंगे कि हाँ मैंने कर लिया, और आपको पता है कि फ्यूचर को लेके बहुत चिंता नहीं है। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं हुई हैं, आप जनरली परेशान रहे हैं लाइफ में, या फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही हैं।

0: बिल्कुल बिल्कुल. और ये एक जो मैसेज है, इससे ही हम कार्यक्रम को यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला खत्म करेंगे. गोविंद बंसोड़े जी लिख रहे हैं लातूर महाराष्ट्र से, नमस्कार. और बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ये बात रेडियो डॉक्टर में डॉक्टर राहुल खरे साहब ने कही थी. और इसी बात को हम रोज सुबह व्यायाम करते समय दोहराते हैं, जिससे हमारा हौसला और बढ़ जाता है. तो कहीं ना कहीं रेडियो डॉक्टर इनकी जिंदगी में इनको मदद कर रहा है. रेडियो डॉक्टर के कारण हमारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, बहुत बड़ा सुधार हुआ है. और हम रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता को और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे, नमस्कार कहना चाहेंगे. तो हमारी तरफ से भी गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, और साथ ही साथ आपने इतने अच्छे शब्द हमारे कार्यक्रम के बारे में कहे. और अब इस कार्यक्रम को खत्म करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है. मैं जरूर चाहूंगी कि कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात आप चाहें हमारे उन श्रोताओं के लिए भी जो देर से जुड़े, कहीं ना कहीं आपकी बातों को पूरा नहीं सुन पाए. तो जो आज का हमारा विषय है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली, तो इसमें हम क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आप कहना चाहेंगी?
1: दो तीन चीजें कहूंगी शालिनी जी, कि एक तो हर बूढ़ा इंसान बीमार

जितना जल्दी आप शुरू कर पाएंगे उतना आपकी एजिंग बेटर होगी। तो अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना, खाने पीने का, एक्सरसाइज का, अपने आप को मेंटली इंगेज रखना, बीमारियों से बचने की कोशिश करना, या अगर बीमारियां हो गई हैं तो उनका जल्दी इलाज करवा लेना। सो ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि जिस तरह से शारीरिक परेशानियां किसी को भी हो सकती हैं, उस तरह से मानसिक परेशानियां भी किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन अगर सही समय पे हम उनका इलाज करवा लें, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इन सब के लिए दवाइयां भी उपलब्ध हैं बहुत अच्छी, और साथ में काउंसलिंग भी होती है, अगर हम समय से इलाज करा लें तो जो बचे हुए दिन है, जो बाकी जिंदगी है, वो बहुत अच्छे से निकल सकती है। और तीसरी चीज, एक बुजुर्ग का भी परिवार की तरफ एक ये जिम्मेदारी, जैसे एक श्रोता ने कहा था कि आप अच्छे से बात कीजिए, बहुत ज्यादा टोका टाकी मत कीजिए, तो उनका भी एक फर्ज है, और साथ ही साथ परिवार का भी एक फर्ज है कि वो अपने

0: कुछ अच्छा नहीं लगता है उसमें, आप कुछ बदलाव चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें लिख सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर स्वाति केटिया गुप्ता को कि आप यहां आई, इस विषय पर इतनी जानकारी आपने श्रोताओं को दी, उनकी समस्याओं का समाधान किया। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में एम्स न्यू दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब यहां आने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: और स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों का विरोध दर्ज कराने के लिए आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। कल एक और जहाज पर हमला किया गया जिस पर चालक दल के 22 सदस्य भारतीय थे। मंत्रालय ने दूसरी बार किसी अमरीकी राजनयिक को तलब किया। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पहले इन्हें लापता माना जा रहा था। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय में आयोजित की गई। इसने सीमा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने और सीमा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन से जुड़े आपसी चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन

नमस्कार दोस्तों, लम्हे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे चेतन। समय एक बहती नदी की तरह है, क्योंकि जिस तरह के सेतु के नीचे से गुजर पानी कभी वापस नहीं आता, उसी तरह बीता हुआ समय भी कभी वापस नहीं आता। तो इसीलिए जिंदगी के हर पल को खुल के जिए। हम जिंदगी भी पानी की तरह जीना चाहिए। जिंदगी एक नदी है, चाहत इसकी जलधारा है, खुशी और गम के बीच बीच हो रहा गुजारा है। नदी में जल न हो तो उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। जीवन में अगर प्रेम न हो तो मानव जीते जी मर जाता है। वह अपना रास्ता खुद बनाती है। पर्वतों पत्थरों के सीने को चीर कर हर किसी के दिल में अपना घर बनाओ, मन की तृष्णा को मारकर सबके वह प्यास बुझाती जो उसके तट पर जाता है। जात पात धर्म भूलकर उसमें सब नहाते धोते हैं। नदी में तब तक जीवन है जब तक उसमें रफ्तार है। मानव तब तक मानव है जब तक उसके हृदय में प्यार है। जो भी सामने आता है वो उसे बह ले जाती है। सबको लेकर साथ चलो, हमें यही समझाती है।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: जीवन, जिंदगी क्या है? कुछ निश्चित समय के लिए मिली जीवन जो पता नहीं कब खत्म हो जाए। ये कह सकते हैं कि जिंदगी पानी के एक बुलबुले के समान है जो कभी भी खत्म हो सकती है, तो क्यों ना इस अनमोल जीवन का एक एक पल जिया जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में कितने पल हैं, ये सोचकर चलना चाहिए कि एक पल में कितना जीवन है। जो पल बीत गया वो चले गया, फिर हाथ नहीं आने वाला है। अब जरा सोचे, जो पल बीत चुका है, जो हमने मजबूरी में काटे थे, उन्हें जिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें याद करके ही घबरा जाए? यदि ऐसा हो तो हम अपने जीवन को जीवन नहीं कह सकते हैं। कर दिया बर्बाद यू वरक किताबे जिंदगी, कुछ हमी ने फाड़ डाला, कुछ हवा में उड़ गए। इस तरह अपनी जिंदगी को बराबर न करें। यह अनमोल है, इसे जितना भी हो सके खुशियों से भर दे। चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो और मुस्कुराते हो, इसी को जीना कहते हैं। तभी जिंदगी सार्थक हो सकती है। अगर जिंदगी में खुशी है तभी आप सही मायने में जी रहे हो, और खुशी तो आप छोटे से छोटे बात भी ढूंढ सकते हैं। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ऐसे कितना और कैसे प्राप्त करते हैं। याद रहे, दूसरों को खुशी देने से ही हमें सच्ची खुशी मिल सकती है। प्रयास करें कि हम अपने परिवार वाले और अपने परिजनों या परिचित लोगों को, जिन जिन के संपर्क में हम आते हैं, सभी को दिल से चाहे, किसी से भी नफरत न करें। इससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है और उसके साथ ही हमारा मन भी दुखी होता है और

दिल में दरिया बढ़ती है, जिससे भी मिले मुस्कुराकर मिले, क्या पता फिर मिले या ना मिले, हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। इस आखिरी मुलाकात की याद कैसी हो, कड़वाहट भरी या प्यार भरी, ये सब हम स्वयं ही सोच सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी सिर्फ एक बार के लिए मिले हैं, इस संसार से जाने के बाद कोई किसी से दोबारा मिलने वाला नहीं, बिछड़ जाएंगे सदा सदा के लिए, कभी दोबारा न मिलने के लिए, फिर चाहे हम लाख कोशिश कर ले, एक पल के लिए भी उन्हें नहीं मिल सकता, रह जाती है तो सिर्फ यादें और पछतावा सदा सदा के लिए। वो मेरे बाद रोने हैं, कोई उनसे पूछे कि पहले किस लिए नाराज थे, अब मेहरबान क्यों हैं? भाव यही है कि पहले तो हम किसी इंसान में कोई अच्छाई नजर नहीं आती थी, और उसके मर जाने के बाद कोई कमी नजर नहीं आती, उसके दोष भी गुणों में तब्दील हो जाती है और वह कम महसूस होती है, जो फिर कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो क्यों ना हम समय रहते ही संभल जाए और अपने जीवन का पूरा आनंद लें, इसे दुखों की भट्टी में न झोंके। ऐसे ही एक व्यक्ति का उदाहरण है जो अपने काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहता था।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: काम के बोझ के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। परिणाम स्वरूप वह तनाव में रहने लगा। घर वाले से भी प्यार के साथ बात न कर पाता। घर में झगड़ने लगा और घर का वातावरण तनावपूर्ण रहने लगा। एक दिन उसने सपने में देखा कि वह घर से अपने कार्यालय के लिए जा रहा था तो अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाया, जिसके कारण दुर्घटना हो गई और उसने वही दम तोड़ दिया। उसका शव उसके घर पहुंच गया। घर वाले पर तो जैसे अचानक पहाड़ टूट पड़ा। उसका अचानक बिछड़ जाना सहन नहीं कर पा रहा था। उधर उस व्यक्ति की आत्मा यह सब देख रही थी। उससे उनका रोना सहना नहीं हो रहा था। वो उन्हें छूने की कोशिश करता पर छू नहीं सकता। वो सोचता कि जब उसके पास सारा परिवार था तो उसके पास समय नहीं था और उसे उनकी अहमियत नहीं पता थी। अब वह इन सब को बताना चाहता है कि उनसे कितना प्यार करता था, परंतु बता नहीं सकता। वह सोचता है कि अगर मुझे एक पल भी मिल जाए तो मैं इन्हें बताऊं कि ये मेरे लिए क्या है, परंतु अफसोस, अब क्या हो सकता है ये सोचकर उस व्यक्ति की आत्मा को बहुत दुख होता है। उधर उसकी पत्नी और बच्चे उसकी जुदाई सहन नहीं कर पा रहे हैं। वह उसे बहुत प्यार करते थे परंतु वह कभी जाहिर नहीं कर पाए। अब उनके मन में यही अफसोस था कि काश हमने इन्हें खुश रखा होता। जो समय इनके साथ गुजरा वो खुशी से गुजरा होता। अब पत्नी व बच्चे यूं ही सोच रहे थे कि काश हमें कुछ लम्हे और मिल जाए, क्योंकि वो दुनिया में इतने उलझे हुए थे कि कभी एक दूसरे के मन में झांकने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब चाहने से क्या हो सकता है। अब उन्हें जिंदगी के एक एक पल की कीमत पता चल चुकी थी। इतने में उस व्यक्ति की आंख खुल गई और वह अपने चारों ओर देखता है। वह अपने घर में है, उसका परिवार उसके पास है। उसकी जान में जान आई। उसने अपने परिवारजनों को बहुत प्यार किया और पूरा जीवन प्यार से रहने का वादा किया, क्योंकि अब उसे जिंदगी की कीमत पता चल गई। क्योंकि जिसे हम बर्बाद कर रहे हैं ये अमूल्य है। इस दुनिया के जंजाल में इतना मत फंस जाओ कि जीना ही भूल जाए और केवल जीने की रस्म ही अदा करते रहे। तो दोस्तों, विद दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन,

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं अल्फा जैन सिर्फ आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। अभी आपने हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुना एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अल्फा जैन एंड एनी गेसेस। वैसे इतना तो आपको पता ही होगा है ना कि आज क्या

बाद रिलीफ वाली फीलिंग हो सकती है, या क्लासेस के बाद फ्रीडम वाली फीलिंग हो सकती है, और पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद एक छोटी सी विक्ट्री की फीलिंग। जी हाँ, आज अल्फा जेन में हम बात करेंगे किसकी, TGIF मूड की। अब TGIF तो पता है ना, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

अब ये मत कहना कि ये सब सुनकर, इतना अच्छा म्यूजिक सुनकर आपकी बॉडी में ऐसी झंझनाहट सी नहीं हुई, आपको फ्राइडे की फीलिंग नहीं आई, बस अब ये मत कहना। वेलकम बैक एवरीबॉडी, आप सुन रहे हैं अल्फा जैन और आज हम बात कर रहे हैं उस दिन की जिसका इंतजार स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स पूरा हफ्ता करते हैं, वो है फ्राइडे। सच बताइएगा, फ्राइडे में ऐसा क्या खास है भाई? कॉलेज वही होता है, क्लासेस वही होती हैं, टीचर्स भी वही होते हैं, ऑफिस जाने वालों के लिए डेस्क भी वही होता है और काम भी वही होता है, लेकिन फिर भी फ्राइडे की फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। शायद इसीलिए क्योंकि फ्राइडे हमें एक छोटी सी होप देता है, ये याद दिलाता है कि पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद अब थोड़ा सा ब्रेक मिलने का टाइम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार वीकेंड से ज्यादा एक्साइटमेंट फ्राइडे को होती है, क्योंकि एंटिसिपेशन भी तो हैप्पीनेस है ना, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब हमें पता होता है कि कल अलार्म लगाना ही नहीं है, या थोड़ा लेट उठ सकते हैं, या दोस्तों के साथ प्लान बना सकते हैं, तो मूड ना ऑटोमेटिकली बेटर सा हो जाता है, क्योंकि

फजर और मैं हूं ज्योतिका। एंड आज का क्या मूड है भाई? आज का मूड है TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। स्टूडेंट लाइफ और वीकेंड्स का तो अलग ही रिश्ता होता है। मंडे से थर्सडे तक असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल फाइल्स, अटेंडेंस और एग्जाम्स का प्रेशर, और फिर फ्राइडे आता है एक रिवॉर्ड की तरह। फ्राइडे के दिन कितने स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इस वीकेंड पूरा सिलेबस यूं ही कवर हो जाएगा। कोई कोडिंग सीखेगा, कोई जिम ज्वाइन करेगा, तो कोई अपनी लॉन्ग पेंडिंग लिस्ट ऑफ बुक्स खत्म करेगा, और फिर वीकेंड खत्म होने तक सिर्फ आधा प्लान ही तो पूरा होता है। लेकिन शायद यही स्टूडेंट लाइफ की खूबसूरती भी है। कभी लास्ट मिनट के प्लान्स, कभी अनएक्सपेक्टेड आउटिंग्स, और कभी पूरा दिन घर पर रहकर अपनी फेवरेट सीरीज देखना। वीकेंड का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है और वही उसे स्पेशल भी बनाता है। तो अब वीकेंड तो आ गया है, आपके क्या प्लान्स हैं? सोच लीजिए, और पूरे ना भी हो तो टेंशन मत लेना आप।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
6: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
7: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
6: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
7: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. मैं हूँ ज्योतिका और आप सुन रहे हैं अल्फा जैन. दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, फ्राइडे शाम को आप फुल मोटिवेशन में होते हैं, एक डिटेल्ड प्लान तैयार होता है सैटरडे मॉर्निंग जिम का, सैटरडे इवनिंग फ्रेंड्स के साथ, और संडे स्टडीज, संडे नाइट प्रेपरेशन फॉर द नेक्स्ट वीक, सब कुछ परफेक्टली प्लान्ड. लेकिन फिर सैटरडे मॉर्निंग आती है, अलार्म बंद होता है और आंख खुलती है सीधा 11 बजे, और उसके बाद पूरा शेड्यूल धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो जाता है. और फिर संडे रात को एक क्लासिक डायलॉग, यार वीकेंड इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया. अगर आप भी इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं है. वीकेंड प्लान्स और रियलिटी के बीच का जो गैप है ना, शायद हर जनरेशन का फेवरेट स्ट्रगल है ये.

देखो, आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम अक्सर बिजी रहने को ही सक्सेस समझने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि ब्रेक लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मेहनत करना, है ना? पूरे हफ्ते पढ़ाई, इंटर्नशिप्स, क्लासेस, ट्यूशंस, प्रोजेक्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच कभी कभी खुद के लिए भी वक्त निकालना भी जरूरी होता है। एक अच्छी वॉक, फेवरेट म्यूजिक, फैमिली के साथ डिनर या बस एक कप चाय के साथ शांति के कुछ पल, ये छोटी छोटी चीजें हमें मेंटली रिचार्ज करती हैं। और जब हम रिचार्ज होते हैं तभी नए वीक का सामना और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो अगर इस वीकेंड आप थोड़ा रेस्ट करते हैं तो गिल्टी फील मत कीजिएगा, आप अपनी बैटरी रिचार्ज कर रहे हैं।

दोस्तों, TGIF का मतलब सिर्फ वीकेंड नहीं होता है ना, ये उन छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने का भी दिन होता है जो हम पूरे हफ्ते अचीव करते हैं। हो सकता है देखो आपका असाइनमेंट टाइम पर सबमिट हो गया हो, या हो सकता है आपने एक डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली हो, या हो सकता है कि आपने बस एक चैलेंजिंग वीक को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल किया हो। बिलीव मी, ये सब अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करने लायक हैं। हम अक्सर बड़ी अचीवमेंट्स का ही वेट करते रह जाते हैं, लेकिन लाइफ की खुशी कई बार इन्हीं छोटी छोटी जीतों में छुपी होती है, छोटी छोटी विन्स में छुपी होती है। तो आज फ्राइडे है, अपनी किसी एक अचीवमेंट के लिए खुद को क्रेडिट जरूर दीजिएगा।

वेलकम बैक टू अल्फा जर्न। आज एक फन क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। आपकी फ्राइडे की पर्सनालिटी क्या है? क्या आप वो इंसान हैं जो फ्राइडे शाम होते ही फ्रेंड्स को कॉल करके प्लान्स बना लेते हैं, या फिर आप वो हैं जो पूरे वीकेंड के लिए ट्रैवल रील्स सेव करते रहते हैं और सोचते हैं कि आज यहाँ जाऊं कुछ चटर पटर खाने, कि आज वहां जाएं कुछ अच्छी फोटोज लेने? या फिर आपकी परफेक्ट फ्राइडे नाइट का मतलब है कंफर्टेबल क्लोथ्स, फेवरेट स्नैक्स और आपका अपना बेड और आपकी अपनी फेवरेट सीरीज? सच कहूं तो कोई भी आंसर गलत नहीं है, क्योंकि हर इंसान रिचार्ज अपने अपने तरीके से अलग तरीके से होता है। कुछ लोग एनर्जी लोगों के साथ, मतलब एनर्जेटिक लोगों के साथ स्पेंड करते हैं।

हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन और कुछ लोग अकेले वक्त बिताकर इम्पोर्टेंट तरीकों से डिसीजंस लेते हैं, उनको शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वीकेंड आपको खुश करे। तो आज जरूर सोचिएगा कि आपका फ्राइडे वाला वाइब क्या है भाई।

0: और दोस्तों,
1: आज का अल्फा जन यहीं समाप्त होता है। फ्राइडे हमें हर हफ्ते एक छोटी सी होप देता है, एक रिमाइंडर देता है कि चाहे वीक कितना भी बिजी हो, स्ट्रेसफुल हो या चैलेंजिंग क्यों ना रहा हो, ब्रेक लेना जरूरी है, खुद को अप्रिशिएट करना जरूरी है और लाइफ को ना सिर्फ डेडलाइंस के थ्रू नहीं, मोमेंट्स के थ्रू भी जीना जरूरी है। तो इस वीकेंड थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने फेवरेट लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ नया भी सीख सकते हैं आप, या फिर एक काम कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, कभी कभी वो भी बड़ा जरूरी होता है। मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे थे अल्फा जन सिर्फ आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर। हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड अहेड, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड रिमेंबर, मंडे जरूर आएगा, लेकिन अभी के लिए थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने के भक्तों के सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृहमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री शाह ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वे नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छुपाने पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरतों का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए थे। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 21 जून तक नई दिल्ली में BSF मुख्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान आपसी तालमेल वाली गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सुधार और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सम्मेलन में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अगले चरण में ऊर्जा की मांग में वृद्धि पर चर्चा होगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में PV सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकानो यामागुची से होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल रात तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1695 अंक के उछाल के साथ 75,528 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

है हर वो जानकारी जो आपको किसी न किसी तरह से काम जरूर आती है। और आज आवाज थोड़ी बदली हुई लग रही है हमारी, क्या आज आपने हमें पहचाना?

दोस्तों, मौसम ने अभी पूरी तरह से अंगड़ाई नहीं ली, लेकिन हमारा गला तो सबसे पहले ख़राब हो गया। चलिए मौसम का मिजाज भी जान लेते हैं। IMD ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाज़ियाबाद के लिए बारिश, गरज चमक और तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी किया है। हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 27 से 29 डिग्री के सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन शाम के वक्त कहीं कहीं तेज़ बारिश और आंधी की वजह से ट्रैफिक की रफ़्तार को धीमा किया जा सकता है, धीमी हो सकती है ट्रैफिक की रफ़्तार। इसलिए अगर आप घर लौट रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर ज़रूर निकलिएगा, मौसम का आनंद ज़रूर लें, लेकिन सावधानी के साथ। अगर आपके इलाके में बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश हो रही है या हवाएं अंगड़ाइयाँ ले रही हैं, तो हमें मैसेज करके बताइए कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। वैसे हमारा दिल तो क्या जा रहा है, आपका साथ पाना, आपके साथ रहना।

दोस्तों, योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है इसका पता तो हम सबको पहले से ही पता था, स्पेशली हम भारतीयों को। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जानते हैं क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, यानी पहली बार हम लोगों ने 2015 को दुनिया भर में आधिकारिक तौर पर पहला योग दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी यानी भौंरा, इसे करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने अंगूठों को, दोनों हाथों के अंगूठों को से अपने कानों को हल्के से बंद कीजिए, तर्जनी उंगली माथे पर

रखें अपने दोनों उंगलियों को तर्जनी और मध्यमा यानी बीच वाली उंगली आंखों पर और अनामिका उंगली नाक के पास रखें। इसके बाद गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए भौंरे जैसी आवाज की मधुर गूंज निकालें। इस गूंज के कंपन को महसूस करें। सुबह का समय इस अभ्यास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। भ्रामरी प्राणायाम तनाव कम करने, मन को शांत रखने, एकाग्रता बढ़ाने और मानसिक सुकून पाने में सहायक माना जाता है। तो आइए हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालें और योग के साथ स्वस्थ जीवन की

0: दोस्तों अगर आप योग करते हैं ना तो यकीन मानिएगा कि आपका मन बहकने से बच जाएगा। वीकेंड में चाहे जितना भी लजीज खाना आपको क्यों ना दिख जाए, लेकिन अगर आप योग करते हैं तो आप इन सबसे बच रहेंगे। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपका इंतजार कर रहा है उस तरफ।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज।

0: www.delhitalenthunt.com कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

और दोस्तों अब आपको देते हैं एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपका हो जाएगा आसान सफर। अगर आप दिल्ली से जयपुर का सफर करते हैं तो ये सफर आपका और सुहावना होने जा रहा है। NH 48 यानी दिल्ली जयपुर हाईवे पर मौजूद तीनों टोल प्लाजा अब इस महीने बैरियर फ्री होने जा रहे हैं। वाओ। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई व्यवस्था के तहत गाड़ियों को टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि AI और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से टोल अपने आप कट जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि कम जाम लगेगा, कम इंतजार होगा और ज्यादा आसान सफर होगा। और ये गाना आ रहा है जी हाँ आप ही के लिए जिन्होंने हमें पहचान लिया है और मैसेज कर करके हमें बोल रहे हैं कि आप कुछ भी बोल लो आपको पहचान लेंगे। थैंक यू।

दोस्तों आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, और आज हमारी आवाज़ की तो मतलब बहुत ही अच्छी आवाज़ हो रखी है। जो हमारी आवाज़ नहीं है वो हमारी आवाज़ निकल रही है, तो उम्मीद है आपने हमें पहचान लिया होगा क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस तो हमें यही बता रहे हैं। फिलहाल सफ़र की बात चल रही है तो आपको सफ़र से जुड़ी कुछ और जानकारी भी दे देते हैं। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिशा में एक और नया कदम उठाया गया है, जिसमें मेट्रो बसेस और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाली सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वाओ, दिल्ली में ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा करने से प्राइवेट वाहनों पर निर्भरता कम होगी, ईंधन की बचत होगी और राजधानी में प्रदूषण और यातायात दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। फिलहाल ये योजना शुरुआती तौर पर 6 महीने के लिए लागू की जाएगी। दोस्तों जिंदगी का ये सफर तो वैसे भी बहुत प्यारा है, और अगर हम लोग एक दूसरे को जाने बिना भी एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत रखें तो ये सफर और भी प्यारा हो जाएगा, है ना। और ज़िंदगी के सफ़र को और प्यारा बनाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ आपको पता है, बस उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये थोड़ा सा हमें अपने ऊपर ध्यान देके करना पड़ेगा।

और दोस्तों, अगर आपके घर के या घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसे विशेष शैक्षिक सहायता की ज़रूरत है, तो दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय यानी DOE ने राजधानी के 12 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त सोशल स्कूल्स में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के लिए एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 11 जून यानी कल से शुरू हो चुके हैं और ये आवेदन 26 जून शाम 5 बजे तक किए जा सकते हैं। फिर 27 से 30 जून तक संबंधित स्कूल्स में दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो दिल्ली शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या किसी की हेल्प कर सकते हैं। वेबसाइट है edudel.nic.in और लास्ट डेट 26 जून शाम 5 बजे है, इसलिए लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको आखिरी समय में परेशान होना पड़े।

0: और दोस्तों सच मानिएगा, आप जैसा कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे के मोबाइल में कान लगा लगा के आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए जनाब। अपने मोबाइल उठाइए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए, न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कीजिए और डायरेक्ट सुनिए हमें, अपने साथ रखिए हमें।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्त।

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और हमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी है, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस तो यही आ रहे हैं कि उन्होंने हमें पहचान लिया है, हमारा नाम बता रहे हैं। लेकिन एक मैसेज आया है जिस सिमरन का, वो बोल रही है कि वो आरजे बनना चाहती है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। सिमरन जी, अगर आपको आरजे बनना है तो आप आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए, इसमें आपको ज़रूर पता चलेगा कि जब वैकेंसी निकलेगी आप इसको भर दीजिएगा और आ जाइएगा इस हॉट सीट पर। और दोस्तों, अगर आपका अपना सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बनने का, तो आपको बता दें कि DU ने अपने फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत BTech एडमिशन 2026-27 के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। एडमिशन पूरी तरह से JEE मेन 2026 पेपर 1 के स्कोर पर बेस्ड होगा और सारे आवंटन ऑल इंडिया कमीशन रैंक लिस्ट यानी CRL के अनुसार किया जाएगा। इस साल DU में 3 BTech कोर्सेज अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और दोस्तों, अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स DU के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जा सकते हैं, admission.uod.ac.in, या सीधे BTech पोर्टल पर engineering.uod.ac.in engineering.uod.ac.in। तो देर मत कीजिए, क्या पता आपका एक स्टेप आपको DU के इंजीनियरिंग कैंपस तक पहुंचा दे, क्या पता। तो फिर सब कुछ भूल भाल के लग जाइएगा पढ़ाई में।

और दोस्तों आपको बता दें कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में एक अच्छी खबर ये आई है कि IGNOU ने इग्नू ने क्लाइमेट चेंज पर नया MSc कार्यक्रम शुरू किया है। इस कोर्स का मकसद ऐसी युवाओं को तैयार करना है जो पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों का समाधान खोज सके। 2 सालों के इस कार्यक्रम में किसी भी विषय में स्नातक छात्र प्रवेश ले सकते हैं। खास बात यह है कि पहले साल की पढ़ाई पूरी करने पर PG डिप्लोमा का विकल्प भी मिलेगा। यानी अगर आपको पर्यावरण, प्रकृति और धरती के लिए विषय की भविष्य की चिंता है तो आपके लिए शानदार अवसर हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है कि सिटी लाइट्स के साथ बिताया ये सफर आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में कुछ प्यारी सी बातें जरूर छोड़ गया होगा। याद रखिएगा, जिंदगी चाहे जितनी भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, अपने सपनों की रोशनी कभी कम मत होने दीजिएगा। शहर की चमक तभी खूबसूरत लगती है जब आपके चेहरे पर भी उम्मीद की चमक हो। फिर मुलाकात होगी नई बातों, नई किस्सों और नए गीतों के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो हम चलते हैं, उम्मीद है आपने तो पहचान ही लिया हमें, तो हम जाते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं।

इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग। 6:05 और 42 सेकंड हुए हैं। माय नेम इज सुनीता शाहवादी और ये है स्टेशन ऑफ द नेशन 102.6 FM। ऑलराइट, दिल से दिल तक। तो मैसेज मसाला मिक्स मेरे साथ शुरू हो गया है एंड मेरा एक प्रश्न भी है एज़ यूजुअल आपसे, और वो ये है कि अगर कोई इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है आपकी ज़िंदगी में, जिसको आप जानते हैं, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे, इस वक्त क्या सलाह देंगे, क्या मशवरा देंगे आप उसको अगर कोई बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है? सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम? बताइए हमें 9868107070 पर। माय नेम इज सुनीता शाहवादी और ये है स्टेशन ऑफ द नेशन, दिल से दिल तक। नंबर तो याद है 9868107070 पर।

और आईजी मैसेजेस आने लगे हैं। और संजय श्रीवास्तव गुना एमपीएस से कहते हैं कि बुरा टाइम भी निकलता है, हिम्मत रखनी चाहिए और ज़्यादा फोकस होकर काम करना चाहिए। और ये लिखा है, मैडम नमस्कार, मैं नरेंद्र सोनी हूँ देवीगढ़ पटियाला से, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हम तो एक ही बात कहेंगे कि धैर्य रखो, क्योंकि ऐसी कोई काली रात नहीं होती जिसकी सुबह नहीं होती। एब्सोल्युटली। एंड ये है, नमस्ते मैम, मेरा नाम रोशनी रावत है, गांव बम्हना, तहसील सफीपुर, ज़िला उन्नाव से, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, ये बताइए कि आप किसी को इस मुश्किल घड़ी में क्या सलाह देंगे। नमस्कार, मैं मेरठ से संजय बोल रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, समय की अच्छी बात यह है कि वो बदलता ज़रूर है। आज ख़राब है तो कल अच्छा आएगा, बस धैर्य बनाए रखें। ये तो है। और आदाब, कैसी हैं आप? हम भी आपको सुन रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, थैंक यू सो मच। और मेरे सवाल का जवाब कहाँ है? माहिदा सुल्ताना जम्मू एंड कश्मीर रजौरी से कहती है, अगर कोई ऐसा इंसान है जो मुश्किल से गुजर रहा है और मैं उसको जानती भी हूँ, तो मैं उसको यही एडवाइस दूंगी कि बुरा वक्त ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, आज रात है तो कल सुबह भी होगी, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऑलराइट, एंड दिस वन इज़ गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सोनिया विहार दिल्ली से, मैं कंचन, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और आज का टॉपिक भी मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक ये है कि अगर कोई मुश्किल टाइम से इस वक्त गुजर रहा है जिसको आप जानते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? कैसी हैं आप? बहुत दिनों के बाद आई हैं, आपको हम सभी श्रोता बहुत मिस कर रहे थे, थैंक यू सो मच। एंड यदि मेरा कोई परिचित बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तो मैं उसे सबसे पहले हिम्मत और उम्मीद बनाए रखने की सलाह दूंगा। मैं उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करूंगा कि वो अकेला नहीं है, उसके अपने लोग उसके साथ हैं। जीवन में कठिन समय स्थायी नहीं होता, धैर्य, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। साथ ही मैं उसे अपनी परेशानियां भरोसेमंद लोगों से साझा करने और आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता लेने के लिए भी प्रेरित करूंगा। मोहम्मद सरफराज आलम, जो कि हरदर्शना बाजार से, थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छी सलाह आपने लिखी हुई है। शुभ संध्या प्रिया आरजी सुनीता शाहबादी जी, मैसेज मसाला मिक्स में आपका स्वागत है, आपका भी स्वागत है। यदि मेरा कोई परिचित या मित्रगण हो या कोई भी हो, तो मैं यही कहूँगा, यथासंभव मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ ज़रूर बताएं। मेरे से जो भी बन पड़ेगा हेल्प करूँगा, उचित मार्गदर्शन करूँगा, मानसिक रूप से हिम्मत दूंगा। हीरामणि वर्मा, दतरंगी, भाटापारा, छत्तीसगढ़ से। ओके, बस ये याद रखिएगा कि जब बहुत मुश्किल टाइम आता है ना, तब लोगों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आई नो कि आजकल के दौर में सभी बहुत व्यस्त हैं, सभी बहुत बिजी हैं, लेकिन उस मुश्किल वक्त में, उस इस बिज़ी हमारी रूटीन से, थोड़े पल उन सब के लिए जो बहुत मुश्किल में है, आपसे ज़्यादा मुश्किल में है, उनके लिए निकालना बहुत बड़ी बात होती है। उनके लिए वो पल बहुत कीमती हैं, बहुत बेशकीमती हैं। आप वो उनको बहुत यू नो, उनके लिए वो पल बहुत बहुत बहुत प्राइसलेस हैं। एंड उनसे उनको जो ढाढ़स बंधेगा, उसका आप सोच भी नहीं सकते। जय श्री महाकाल, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खाते पीते रहो, वो आपकी सुबह ज़रूर आएगी। विपुल गॉड दिल्ली से। ओके, एंड दिस वन इज़ हाय, अब ये पिक्चर भेजी है उन्होंने, आया मजहर अली तुगलकाबाद विलेज दिल्ली से, गुड इवनिंग। जो भी मुश्किल हो, उसे सबसे पहले धैर्य रखना चाहिए और अपने आसपास एक नहीं, बहुत सारे लोगों से अपनी समस्या शेयर करनी चाहिए। हर समस्या का संबोधन, कई बार लोगों से ये भी होता है ना कि जब आप बार बार उनको अपनी दिक्कत बताते हैं, तो लोग आपसे कटने लगते हैं। आजकल के दौर में तो यही है कि वो सोचते हैं कि भाई आप तो ये रोज़ ही रोना धोना करेंगे, अब इनकी कहानी हम सुनो, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर परेशान रहते हैं, यू नो, बिजी रहते हैं। कोई मुसीबत में है तो दोस्त के नाते तन मन धन से सहायता करेंगे और समझाएंगे। कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष भी आता है, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। ताराचंद सोनी, खारा, राजस्थान से। वाह, क्या बात है, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष भी आता है, वाह। एंड दिस वन इज़
दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से प्यार भरा नमस्कार। कोई मुश्किल है तो मेरी सजेशन है कि हिम्मत रखो, कोर्सेज कर लो, सुकर्म करते रहो, एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। ऑलराइट, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। बताना आपको ये है कि अगर कोई आपका जानने वाला या आपका कोई दोस्त, आपका रिश्तेदार इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे। एक गाना आपके लिए, आप भेजते रहिए मैसेज और 9868107070।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

ऑलराइट, वक्त कैसा भी हो सब गुजर जाता है, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाता है। मैं हमेशा अपने दोस्तों को दिलासा देती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऑलराइट कंचन, सोनिया विहार से कहती है कि आज के टॉपिक पर मुझे बस यही कहना है कि मुश्किल समय सबके जीवन में आता है, लेकिन मुश्किल घड़ी हमेशा नहीं रहती है, बदलता ज़रूर है वो वक्त। चाहे मुश्किल समय सभी के जीवन में आता है लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहता है, गुजर ही जाता है मुश्किल घड़ी, बस आपको हिम्मत रखनी है। गुड इवनिंग सुनीता जी, मोहम्मद इम्तियाज़ इन सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्ति नगर से कह रहे हैं, वैसे तो मैं खुद ही फाइनेंशियल और रिश्तों की खास उस खटास से गुजर रहा हूँ, मगर मैं खुद पे भरोसा रखता हूँ कि अभी वक्त सही नहीं है लेकिन वक्त बदलेगा। मैं बस उस इंसान को कहना चाहता हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखो, समय बदलेगा। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी अच्छी मैसेजेस आ रही हैं। मैसेज मसाला मिक्स में आज ही सुनीता शाहबादी जी को नमस्कार, आदाब। अगर कोई इंसान परेशान है और उसकी परेशानी में काम आ सकते हैं तो फौरी तौर पर उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए। अगर आपके बस की बात है, अल्लाह किसी को भी परेशान ना करे, आमीन। और गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, हाय, गुड इवनिंग सुनीता जी। और सुनीता मैम कैसी हैं आप? एंड मैं तो आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे कोई भी रिलेटिव्स या कोई भी दोस्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो मेरा तो उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि बुरा वक्त में हमेशा हौसला रखना चाहिए और मुश्किलों से हारना नहीं है। मुश्किलें तो आती रहती हैं, हमें पेशेंस रखना चाहिए और कहीं ना कहीं सही वक्त आते आते सब ठीक हो जाएगा। मानसी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। अगर कोई मुश्किल घड़ी में है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ईश्वर पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे हजारों दिन गुजर गए वैसे गम के चार दिन भी गुजर जाएंगे। रंजीत कुमार मंडल सिक्टी अररिया बिहार से, वाह क्या बात है। एंड जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से कहती है, इफ़ समवन हुम आई नो इज़ इन ट्रबल आई वुड लाइक टू नो द इशूज़ फर्स्ट एंड विल प्रोवाइड द राइट एडवाइस टू रिजॉल्व दोज इशूज़ बिकॉज इशूज़ हैव सोल्यूशंस एंड दे डोंट गेट रिजॉल्व बाई इटसेल्फ, वन नीड्स टू नो द सोल्यूशन। वेल, हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आप उसकी प्रॉब्लम को जानें, बस अगर आप उस वक्त उसके कंधे पर हाथ रखें और उसको आप थोड़ा सा एक प्यार का झप्पी दे दें तो वो भी बहुत काफ़ी होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि पहले हम, हो सकता है वो आपसे शेयर ना करना चाहें अपनी प्रॉब्लम, तो उसको ज़्यादा कुरे दिए मत कि क्या प्रॉब्लम है और फिर हम, अगर उसको सोल्यूशन मिल जाएगा वो खुद ढूंढेंगे। हाँ, अगर वो हमसे खुद ही शेयर करेंगे अपनी प्रॉब्लम तो आई थिंक हाँ, देन वी कैन हेल्प हिम फाइंडिंग अ सोल्यूशन। बट इफ़ ही और शी डजंट वांट टू शेयर दोज प्रॉब्लम्स, वी कैन स्टिल बी विद देम, फॉर देम, यू नो, हम उनका फिर भी बहुत भरपूर साथ दे सकते हैं। वक्त बुरा नहीं होता दोस्त, अपना एक इम्तहान होता है। अगर आपको किसी की परेशानी की वजह मालूम हो तो थोड़ी सी मदद और उसके दिल पर मरहम लगने की कोशिश करें। अपने लिए जिया भी तो क्या जिया, इस ज़िंदगी पर दूसरों का भी हक है। दिन भी निकलेगा, कभी रात के आने पर ना जा। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, थैंक यू। एंड एनी सॉन्ग बजा दीजिए। ओके, गौरव इंदुरकर, रायभान इंदुरकर, रेखा और जय और भीम नगर तालुका चिंबू डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से। ओके, आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू टेक ऑल द मैसेजेस एज मच एज पॉसिबल। आप बस मुझे ये बताइए कि अगर आपका कोई अपना मुश्किल वक्त से गुजर रहा है तो आप उसको क्या सलाह देंगे इस वक्त। हेलो मैम, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली, हाउ आर यू ऑन टुडेज़ टॉपिक? आई वुड लाइक टू से दैट इफ़ समवन और एनी वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ इन सम प्रॉब्लम, आई वुड टेल माई फ्रेंड डू नॉट वरी, tell me your problem, this will make you feel better and the solution to your problem will also come, I'll also try to help you any possible way because a friend in need is a friend indeed, of course। ये तो है, मुश्किल वक्त में ही आपको दोस्ती की पहचान हो जाती है और यकीन मानिए सबके साथ ही मुश्किल दौर होता है और आता है, ओ आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ, और उस वक्त आपके साथ कौन खड़ा है उसकी पहचान तभी हो जाती है। भेजिए अपने मैसेजेस 9868107070 पर और बताइए कि आपका अपना कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप उसको क्या सलाह देंगे। मैं बजा रही हूँ आपके लिए ये बहुत ही प्यारा सा गाना।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मंगल भवन मंगल हारी,
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 5:30

0: 12 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

ज़िंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपने परिवार और अपने प्रियजनों के बारे में ज़रूर सोचिए, ज़िंदगी आसान लगने लगेगी। लोकेशन सिंह, मोना मुजफ्फरनगर। मेरा ये सवाल नहीं था, सवाल ये था कि अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कोई भी आपका जानने वाला, तो आप उसको इस वक्त क्या सलाह देंगे? सुनीता, मुश्किल के वक्त मदद करना ज़रूरी, दोस्ती की परीक्षा होती है। वक्त धूप छांव की तरह देखा है, मुश्किलें आती जाती रहती हैं, गम से लड़ना सीखो और जीत हासिल करो, जब धैर्य हिम्मत प्रॉब्लम सब ठीक करते हैं। अनिल शर्मा, सरिता विहार से। एंड ये है कि मैम नमस्कार, आपके द्वारा प्रस्तुतकरण बहुत अच्छा है, इस वक्त एफएम रेनबो सुंदर लग रहा है, और उत्तर प्रदेश ज़िला जौनपुर पोस्ट लापरी ग्राम में, और हम लोगों को ये यही सलाह देंगे कि अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए और दूसरों को खुश रखने के लिए अपने आप को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, अपने आप को खुश रखना पहले ज़रूरी है। जब आप खुश होंगे तो अभी दूसरों को खुश रख सकेंगे। मोरी गेट से कन्हैया लाल, देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, नमस्कार जी एंड थैंक यू एंड दिस इज़ गुड इवनिंग। मैम कैसी हैं आप? हम तो यही कहेंगे कि धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, और कोई भी ऐसी रात नहीं होती जिसकी सुबह नहीं होती है। किशन मंजानी, नीलम, स्वाति और किशोर, रेलवे कॉलोनी, आनंद विहार से। एंड नमस्ते सुनीता जी, रेडियो थोड़ा देर से ट्यून किया, आप काफ़ी दिनों के बाद शो में आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगा कि मेरी नज़र में जीवन है तो सुख दुख, खुशी गम, मिलना बिछड़ना, ये सब जीवन रूपी चक्र की शाश्वत सच्चाई है। मेरे किसी अपने को यदि कोई दुख होता है तो मैं केवल उन्हें सांत्वना ही नहीं देता, बल्कि पूर्णतया मजबूती से हर वक्त उनके साथ खड़ा रहता हूँ और कहता हूँ कि यूं जीवन नैया खेता चल, सुख दुख साथ में लेता चल, ना दुनिया में कोई मांगे फिर भी सबको खुशियाँ देता चल। थैंक यू सो मच प्रेमचंद जी, बहुत सुंदर लिखा है आपने। एंड हाय सुनीता, गुड इवनिंग, नमस्ते। यही कहूँगा, सुख दुख और दुख जीवन को के दो पहलू हैं, कभी खुशी तो कभी गम, यही ज़िंदगी है। बस वक्त वक्त की बात है, कृपया धर्म व समझदारी से और धैर्य से वक्त का सामना करें, सब ठीक हो जाएगा। रंजीत मस्ताना, रायबरेली से। बहुत टाइम के बाद आपका मैंने नाम देखा है इसमें। ओके, मुश्किलों का पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हमारे हौसलों से बड़ा नहीं हो सकता, और कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। हम पर या किसी और पर, अपने पर कोई मुश्किल घड़ी आती है तो हम हौसला नहीं तोड़ते, बल्कि उस मुश्किल का डटकर सामना करते हैं, क्योंकि खुशी और गम का देने वाला तो ऊपर वाला है। हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं, वरना घबराने से मुश्किल और बढ़ जाती है। यस, एब्सोल्युटली। एंड दिस वन इज़, थैंक यू सो मच सुनीता, मैं अंशी हूँ। ओके, आई नो दैट, आपकी मैसेज से ही मुझे पता चल जाता है। एंड आई हैव लॉट्स ऑफ मैसेजेस। सुनीता, कोटि कोटि धन्यवाद आपका ये चंदारे गीत सुनाने के लिए, क्योंकि इस गीत से हमारी गुड़माई रहस्यमय आड़ी जुड़ी हैं, यादें जुड़ी हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके चलो, कोई तो खुश है। गुड इवनिंग मैम, नमस्ते। मैं नवलू, वर्क फ्रॉम

मलगोवा से मैं इस वक्त सुन रहा हूँ आपका MMM, और आज के टॉपिक पर बोलूँगा तो कोई मुसीबत किसी को अगर आती है तो उसकी मदद करना चाहूँगा, और आज के टॉपिक पर बोलूँगा कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मदद करें। और पिछले 4 दिन से हमारे गोवा में बारिश लापता है और फिर से गर्मी बहुत बढ़ गई है। दिल्ली में इस वक्त मौसम कैसा है, वहाँ बारिश हो रही है क्या? हाँ, थोड़ी थोड़ी कल हुई थी रात को। और 628 पे आपने ये मैसेज भेजा था, चलिए मैंने आपका मैसेज तो एयर कर दिया। शुभ संध्या मैम, धैर्य रखें, हिम्मत तहारे, अपना रोज़गार करते रहें और कठिन समय भी बीत जाएगा। राजेश भल्ला, एडवोकेट, कंकट खेड़ा, मेरठ से, थैंक यू सो मच। एंड ये लिखा है कि हमने भी आपको मैसेज किया था, ओके, थैंक यू सो मच। 625 पे आपने कहा है, लिखा है, आपने कहा है कि कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं हूँ ना, ये समय भी कट जाएगा, रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है। किसी को सलाह तो दे देते हैं, उसका साथ ज़रूर दे दीजिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी, यही मैं अभी कह रही थी। शुभ संध्या, आपका जीवन बहुत सुखद हो। ये लिखा है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी एंड सिमरन मुखी ने, ओके, नाउ यू मस्ट बी हैप्पी। एंड सर्वेश पांडे वाराणसी से, बहुत दिन बाद आपको मैसेज कर रहा हूँ। मैं तो यही सलाह दूंगा कि जैसे रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही मुश्किल समय भी निकल जाता है, बस वेट करें थोड़ा सब्र। ओके, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, तुसी के में हो, असी चंगे हैं। और अगर दुख आए हैं तो वो जल्दी सुख भी आएगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, हम आपके साथ हैं दुख में भी सुख में भी। प्रदीप सलूजा जनकपुरी से कह रहे हैं कि ये सबको कहना चाहिए अपने दोस्तों को। ओके मैडम जी, नमस्कार, मैं कराची हैं, चाने सर कराची से, अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री और मोहम्मद अमीन जफर सादिक शेख, हम कहते हैं कि मैम प्रोग्राम में गाने अच्छे बज रहे हैं और यहाँ बहुत गर्मी है। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं एक गाना बजा लूँ और आप ये गाना सुनिए। अभी भी कुछ लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।
5: और जी मेरे जाने का टाइम हो चला है, बट जाते जाते एक आध मैसेजेस तो मैं जरूर लेना चाहूंगी। और प्रोफेसर टंडन माया एनक्लेव से कहते हैं कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी। क्या बात है। एंड ये लिखा है, थैंक यू सो मच आरदे, तो सी नेक्स्ट फिर कब आओगे 8 PM के बाद। जी 8 बजे ही आऊँगी मैं। गुड्डू धाकर जी मध्य प्रदेश उज्जैन ज़िले के बीरावन गांव से, कोई अपना वाला ही और परेशानी में हो तो मैं तन मन धन से उसका साथ दूंगा, और कोई दूसरा है तो यही कहना चाहूँगा कि रात कितनी काली हो, अमावस की हो, सुबह ज़रूर आती है। एंड मुश्किलों का ओके, ये तो मैंने पढ़ा था। शम्सुल कमर राही ने ये लिखा था, ओके। एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, और आपका कोई अपने दुख में है, परेशानी में है, सो प्लीज़ उनका साथ दीजिए। एंड आई वुड से कि मतलब उस वक्त उनको आपके साथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एडवाइस यही रहेगी कि आप बस चुपचाप उनके साथ रहिए। ज़्यादातर लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, ज्ञान ज़्यादा दे देते हैं, उतने ज्ञान की उस वक्त उनको ज़रूरत नहीं है जितने साथ की ज़रूरत होती है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स, आई विल सी यू एट 8, बाय बाय, टेक गुड केयर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधा के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर

0: तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आइए सुनते हैं आईसीसी विमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 पे एक विशेष कार्यक्रम।
2: History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations.
3: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक मशहूर कथन है, कामयाबी मिलने के बाद आराम मत कीजिए बल्कि अपनी मेहनत दुगनी कर दीजिए, क्योंकि एक तरफ आपके आलोचक इंतजार में हैं कि आप कब चूके और आपकी सफलता को वो महज एक तुक्का कह सके,
4: तो दूसरी तरफ आपके चाहने वालों की तादाद और उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, आप पर भरोसा और गहरा हो चुका है और आपके नाम की गूंज सीमाएं लांघने लगी है।
3: भारत की महिला क्रिकेट टीम ने जब पिछले वर्ष वर्ल्ड कप अपने नाम किया तो महज एक टूर्नामेंट नहीं जीता बल्कि बरसों के इंतजार को यकीन में बदल दिया, करोड़ों भारतीयों को फख्र महसूस करवाया और ना जाने कितने नए सपनों को दिशा दी।
4: हरमनप्रीत कौर की टीम एक बार फिर निकली है उस कामयाबी को दोहराने का इरादा लिए।
5: A great moment for all of us. We were waiting for that moment for so many years. After years hard work paid off and if we play good cricket, if we able create some good memories here, definitely things are going to change back home. We have seen the last ODI World Cup when we won. After that, we have seen massive change. Many girls they're coming to play cricket and I think when we do well. Lot of things change and hopefully we play a best cricket and try to you know make impact on women's cricket.
3: हालांकि इस बार चुनौती और कड़ी है क्योंकि इस बार फॉर्मेट 50-50 नहीं T20 है।
5: T20 cricket is all about you know adapting as soon as possible because it's quite fast and you don't have that much time and it's all about you know playing your best cricket and going fearless.
4: 2025 का ODI World Cup घरेलू जमीन पर खेला जा रहा था लेकिन ICC Women's T20 World Cup 2026 खेला जा रहा है इंग्लैंड में, जहां महिला क्रिकेट में भारत को कई बार हार्ट ब्रेक झेलना पड़ा है।
3: 2017 के विश्व कप का फाइनल आज भी प्रशंसकों के जहन में किसी बुरे स्वप्न की तरह ताजा है, जब लॉर्ड्स के मैदान में भारतीय टीम जीत से सिर्फ 37 रन दूर थी, 7 विकेटें हाथ में थी, लेकिन इंग्लैंड की आन्या श्रप्सोल ने ऐसा शिकंजा कसा कि टीम इंडिया जीती हुई बाजी हार गई।
4: 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए, जब गोल्ड मेडल मैच में शिखर के पास पहुंची टीम लड़खड़ाई और उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।
3: एक लंबे अरसे तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की यही कहानी रही, दबाव में, हड़बड़ाहट में, चंद लम्हों की बौखलाहट में किनारे के बेहद करीब पहुंच कश्ती डूब जाती, लेकिन 2025 की जीत ने बरसों का तिलिस्म तोड़ दिया।
6: हार के बाद क्या फील होता है?

0: हमें अच्छे से पता है, लेकिन जीतने के बाद क्या फीलिंग होती है, दैट इज समथिंग विच वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. और होपफुली ये जो कल का जो दिन है हमारे लिए स्पेशल रहे, हम अपना बेस्ट दें, बेस्ट क्रिकेट खेले. अभी तक बहुत हार्डवर्क करा है, इट्स ओनली अबाउट यू नो गेटिंग एवरीथिंग टुमारो फॉर द टीम.
1: इस T20 विश्व कप के लिए चुनी गई टीम की 15 में से 11 खिलाड़ी ऐसी हैं जो पिछले वर्ष वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, इसलिए इस बार यकी उधार नहीं लेना पड़ेगा, उसकी बुनियाद अपने अनुभव पर टिकी है.
2: टीम इंडिया का सफर 14 जून को बर्मिंघम में शुरू होगा और फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा. यानी जिन मंजिलों ने कभी मायूसी दी थी, वही अब नई दास्तान लिखने का अवसर दे रही है.
1: ऑफ कोर्स द स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट, कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन. और हर मैच में अच्छी स्टार्ट दिलाने का जिम्मा एक बार फिर स्मृति मानधना और शिफाली वर्मा पर होगा.
2: इस जोड़ी की काबिलियत किसी परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन हाल ही में फॉर्म नदारद रही है और इस बात को उप कप्तान स्मृति मानती हैं.
3: Me and Shifu both, I think we definitely are timing the ball well, but unfortunately we are not able to contribute in big ways for the team. But yeah, again, for both of us, I think we'll go back in the nets, keep working hard and make sure that we come back stronger, both of us as a opening pair.
2: दूसरे विकल्पों में यास्तिका भाटिया है, जिन्हें चोट के चलते 576 दिन तक टीम से बाहर रहना पड़ा था और 2025 का वर्ल्ड कप भी मिस करना पड़ा था, लेकिन हाल ही में अपने कमबैक मैच में एक जीत दिलाऊ अर्धशतक बना. उन्होंने बताया कि वो हर चैलेंज के लिए तैयार हैं.
4: Felt really special. And I'm very grateful. I have been coming back after a long time, and the team has welcomed me very nicely, and it has been very good to be back. And like in the injury time, it's not easy, but there were people backing me and supporting me. They took care of me very well.
1: आखिर support system ही कुछ इस तरह का रहा है. Middle order में खुद कप्तान और pocket rocket जेमिमा रॉड्रिग्स हैं, तो पावर हिटर के तौर पर ऋचा घोष, भारती फुलमली.
2: इंग्लैंड की कंडीशंस में पेस बैटरी का इनफॉर्म होना तो जरूरी है, इसलिए एक बार फिर नजरें होंगी अनुभवी रेणुका ठाकुर पर, जिन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी स्विंग से बड़े बड़े दिग्गजों को फंसाया था और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेटें ली थी.
1: भारतीय क्रिकेट में किसी क्रांति की तरह उभरी, पिछले साल इंग्लैंड में एक ही मैच में 6 विकेट्स ली थी.
2: इनका साथ निभाएंगी ऑलराउंडर अरुंधति रेड्डी और 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में ही प्रभावशाली डेब्यू करने वाली नंदिनी शर्मा, जिनके बारे में यास्तिका कहती हैं.
4: सीइंग नंदिनी, आई थिंक शी बोल्ड ब्यूटीफुली, शी कम बैक वेल विद हर स्लोअर वंस एंड दैट इज हर स्ट्रेंथ, एंड आई थिंक शी बोल्ड ब्यूटीफुली टू हर स्ट्रेंथ एंड गॉट दोस विकेट्स एंड इन अ डेब्यू गेम इट्स एक्सेप्शनल. एंड
2: स्पिनर्स का महत्व तो शायद और भी ज्यादा है. अनलाइक मेंस क्रिकेट, यहाँ पर आपको स्पिनर्स डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करते दिखते हैं.
1: टीम इंडिया के स्क्वाड में तजुर्बेकार दीप्ति शर्मा और युवा श्रेयंका पाटिल दाएं हाथ की स्पिनर्स हैं, तो वहीं श्री चरणी और राधा यादव बाएं हाथ की. बोलिंग कोच आविष्कार सालवी का मानना है कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है.
5: आई मीन आई थिंक दीप्ति, श्रेयंका, श्री चरणी एंड द एंटायर पूल ऑफ स्पिनर्स अवेलेबल फॉर अस हु हैव परफॉर्म रियली वेल व्हेनेवर दे हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी. श्रेयंका कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग ले ऑफ इनटू द साइड, यू नो काइंड ऑफ इंपैक्ट शी क्रिएटेड इन ऑस्ट्रेलिया, द काइंड ऑफ इंपैक्ट शी इज क्रिएटिंग नाउ. आई मीन वी ऑल नो दैट शी इज ऑल्सो अ चैंपियन मटेरियल बोलर. ऑब्वियसली वी आर गिविंग हर अपॉर्चुनिटीज, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हिच व्हाट रोल शी फिट्स इनटू. एंड ऑब्वियसली दीप्ति, शी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बोलर देन श्रेयंका, बट बोथ ऑफ देम आर ऑपरेटिंग इन टैंडम. श्री चरणी अगेन अ स्पिन कॉम्बिनेशन which is like a left arm spinner. You know that the sort of impact she created last year in England when she in the first debut series.
1: लेकिन चुनौती कड़ी है और भारत की महिला टीम ने T20 वर्ल्ड कप कभी नहीं जीता.
2: 2020 में टीम फाइनल तक जरूर पहुंची थी, जहां 86,000 से ज्यादा दर्शकों से खचाखच भरे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उसको हार का सामना करना पड़ा था. और इस बार के संस्करण को तो एक्सपर्ट्स इतिहास का सबसे कठिन बता रहे हैं. रिकॉर्ड 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और उलट फेरों का दौर टूर्नामेंट का आगाज होने से 2 हफ्ते पहले से ही शुरू हो गया है.
1: 30 मई 2026 तक नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड ने महिला क्रिकेट में कभी बांग्लादेश को नहीं हराया था. आयरलैंड ने कभी 2016 की चैंपियन रही वेस्टइंडीज को नहीं हराया था, लेकिन ये इतिहास हाल ही में पलट गया है. टीम इंडिया ग्रुप बी का हिस्सा है, जो अग्नि परीक्षा का ग्रुप माना जा रहा है.
2: भारतीय टीम अपने कैंपेन की शुरुआत

0: 14 जून को आर्च राइवल्स पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, जिनकी कप्तान फातिमा सना बर्मिंगम में बसी पाकिस्तानी कम्युनिटी से अच्छे समर्थन की उम्मीद कर रही हैं।
1: They are supporting the cricket, not the opposition. So I just believe that a lot of crowd will be there and cheering for us.
0: महिलाओं के T20s में नंबर वन रैंक्ड बोलर सादिया इकबाल पर भी नजरें रहेंगी। टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इस फॉर्मेट में खेले गए 16 में से 13 मुकाबले जीते हैं और इसीलिए हरमनप्रीत कौर की टीम फर्म फेवरेट्स की तरह इस मैच में मैदान पर उतरेगी। लेकिन नए कोच वहाब रियाज की अगुवाई में पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की टीम ने अपने खेलने के ढंग को बदल दिया है।
2: डर डर कर 20 ओवर तक खेलने की मशक्कत करने वाली पाकिस्तान टीम आज चौके छक्कों में बात करने की कोशिश कर रही है। भारत का अगला मुकाबला 17 जून को लीड्स के हेडिंग्ले में नीदरलैंड्स के खिलाफ होगा,
0: लेकिन उसके बाद इम्तिहान कड़ा हो जाएगा क्योंकि तीसरे मैच में 21 जून को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में सामने होगी दक्षिण अफ्रीका। वही दक्षिण अफ्रीका जो महिला क्रिकेट के पिछले 3 ICC टूर्नामेंट्स में फाइनल तक पहुंची है। इसी टीम को हराकर भारत 50 ओवर चैंपियन बनी थी, लेकिन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में खेली गई एक सीरीज में लॉरा वुल्फार्ट और उनकी टीम ने भारत को एक तरफा मात दी। दक्षिण अफ्रीका भी इस बार मंजिल की दहलीज पर लड़खड़ाने की अपनी आदत को सुधारने के उद्देश्य से मैदान पर उतरेगी। कप्तान लॉरा वुल्फार्ट कहती हैं,
3: It's been tough to lose the last 3 finals of big tournaments, but we're doing a lot right to find ourselves in those games. Hopefully we're able to make one again and can play a really good game of cricket when we get to that point. But yeah, had some good prep now. Obviously played against India a couple of games and were able to win a few. The World Cup's obviously totally different.
0: इस विश्व कप को लेकर दक्षिण अफ्रीका की तैयारियां मजबूत नजर आ रही हैं। एकमात्र कमजोरी गेंदबाजी में अनुभव को बताई जा रही थी, लेकिन उसका भी इलाज खोज लिया गया है। शबनम इस्माइल को रिटायरमेंट से वापस बुला दल में शामिल कर लिया गया है।
3: Really happy to have them back. I think they bring so much experience to the group. I think it gives us a really good mix of some knowledge and some exciting youngsters as well. So yeah, happy to have them back and hope.
2: भारत का चौथा ग्रुप स्टेज मुकाबला 25 जून को खेला जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ और फिर 28 जून को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भिड़ंत होगी ऑस्ट्रेलिया से।
0: 7 बार एक दिवसीय फॉर्मेट का वर्ल्ड कप और 6 बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुकी ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को किसी परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन पिछले 2 ICC टूर्नामेंट्स में ये टीम सेमीफाइनल में हारकर बाहर हुई है और इसलिए इस बार किसी भूखे शेर की तरह वापसी करने के लिए तत्पर।
3: The way that the game's going, it's evening up and T20 cricket, it could be anyone on any given day. But at the same time, yeah, we've taken a lot of lessons out of the last couple of World Cups, so we're all just really hungry and excited to be able to get out there and hopefully put it in.
0: अच्छी खबर ये है कि भारत हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ही खेली गई सीरीज में इस टीम को हराया था। हालांकि उस बात को अब कुछ महीने हो चुके हैं और इस टूर्नामेंट में भारत अपनी पिछली 2 सीरीज हार कर पहुंचा है।
2: लेकिन यही हाल तो पिछली बार न्यूजीलैंड का भी था। वर्ल्ड कप खेलने से पहले लगातार 10 मुकाबले हारे थे, लेकिन टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप अपने नाम किया। कप्तान अमेलिया केर उस प्रदर्शन को दोहराने के लिए उत्सुक है।
3: It was pretty special. But yeah, what it did for New Zealand and just being such a small country and our population and always kind of fighting and punching above our weight, it was a special day for us. Yeah, to be here now, I guess leading the side as well, it's a real honour and I guess just for me, it's kind of just living out my childhood dream. There's a lot of chat around defending your title and things like that, but I think for us that was 2 years ago and a lot's changed. We've got a slightly different side, a different group, but I think one thing about for us having won 2 years ago is knowing that we can do it, and I think that gives you belief that we can win when we're put under pressure on the biggest stage. Hopefully for us, knowing that whether things start good or bad, we have the belief that we can win from whatever position we're in.
0: New Zealand group A ka hissa hai, जिसमें मेजबान इंग्लैंड भी है। महिला क्रिकेट के इतिहास में जितने भी विश्व कप इंग्लैंड में खेले गए हैं, वो सभी इंग्लैंड ने स्वयं जीते हैं, इसीलिए उम्मीदों का वजन काफी भारी है। कप्तान नैट सिवर ब्रंट ये जानती हैं।
4: yeah, I guess the state of women's sport in England is that it's a perfect time to host a T20 World Cup, and hopefully we can drag the fans along with us, inspire as many people as we can along the way, and yeah, I suppose

0: Have a great summer. Yeah, there's lots of pressure. So being the host nation, also England haven't lost a host World Cup. There's loads of pressure. It'd be silly not to acknowledge that, I guess. But yeah, I suppose as a team, thinking about ourselves and trying to stay in that bubble.
1: इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला इंग्लैंड आज भारतीय समय के अनुसार देर रात 11 बजे श्रीलंका के विरुद्ध खेलेगी।
2: इसी ग्रुप का हिस्सा वेस्टइंडीज भी है, जो 2016 की वर्ल्ड चैंपियन रही थी। वेस्टइंडीज अपने दिन पर किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते।
1: स्कॉटलैंड और आयरलैंड की गिनती यूं तो फेवरेट्स में नहीं होती, लेकिन दोनों टीमों का हालिया फॉर्म अच्छा रहा है और इन दोनों ही टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, यानी यहां की परिस्थितियों से।
2: लेकिन हम भारतीयों का दिल तो हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम के लिए धड़कता है। आइए सुनते हैं हिंदुस्तान क्या कहता है।
3: नमस्कार, मेरा नाम विकास है और मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। दिन भर काम में रहता है, लेकिन जब भी कोई बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होता है मैं स्कोर चेक करना नहीं भूलता। इस वुमेन 2020 वर्ल्ड कप में मैं हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी देखने के लिए काफी इंटरेस्टेड हूँ। मुझे लगता है कि वो टूर्नामेंट की की प्लेयर होंगी और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी।
4: मेरा नाम ट्विंकल है और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ मुझे स्पोर्ट्स देखना भी काफी पसंद है और आजकल वुमेन्स क्रिकेट को भी बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं टीम इंडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करेंगी।
5: मेरा नाम अंकित है और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और जब भी इंडिया का मैच होता है तो दोस्तों के साथ काफी मजा आता है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ, स्पेशली स्मृति मंदाना की बैटिंग को लेकर। उम्मीद है कि इंडियन टीम बड़ा अच्छा खेले और वर्ल्ड कप जीतने की तरफ बढ़े।
6: हाय, मेरा नाम मुस्कान है, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मैं खुद भी क्रिकेट खेलती हूँ। जब मैं इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स को मैदान पर देखती हूँ तो मुझे भी लगता है कि सपने सच हो सकते हैं। मैं वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ और पूरी टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ।
7: मेरा नाम सुरजीत है और मैं एक इंजीनियर हूँ। काम के बाद क्रिकेट देखना मुझे काफी पसंद है और ये रिलैक्स करने का बेस्ट वे लगता है मुझे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को लेकर मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ, स्पेशली जेमिमा को बैटिंग करते देखने के लिए। उनकी काम स्मार्ट गेम मुझे बहुत पसंद है। मैं बस यही चाहता हूँ कि इंडिया अच्छा खेले और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे।
8: नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा है और मैं एक गृहिणी हूँ। सच कहूँ तो पहले मैं क्रिकेट ज्यादा नहीं देखती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से विभिन्न क्रिकेट ने मुझे काफी प्रभावित किया है। अब जब भी भारत का मैच होता है पूरा परिवार मिलकर देखता है। इस वर्ल्ड कप में भी हम सब एक साथ बैठकर मैच देखेंगे और इंडिया को फुल सपोर्ट करेंगे।
2: ये कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं है, ये उस लगातार चलते रहने वाले सफर की कहानी है, जिसमें हर गिरावट ने उठने की ताकत दी, हर असफलता ने सीख दी और हर प्रयास ने इस टीम को पहले से ज्यादा तैयार किया।
1: हर मैच के साथ अनुभव जुड़ता गया, हर पारी के साथ आत्मविश्वास बढ़ता गया और हर चुनौती के साथ ये विश्वास और मजबूत होता गया कि ये सफर यहीं रुकने वाला नहीं है। तो भारतीय टीम तैयार है, आकाशवाणी आप तक सीधा प्रसारण पहुंचाने के लिए तैयार है। रेनबो नेटवर्क पर भारत के सभी मैच और सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों की लाइव कमेंट्री सुनना ना भूलिएगा और हमारे साथ चिल्लाइएगा। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दर्पण टिकिया
2: और प्रेरणा शर्मा।

वाणी आकाशवाणी। गुड इवनिंग, 8:18 हुए हैं। शो चल रहा है म्यूजिक मस्ती और मैं हूं आपके साथ सुनीता शाहबादी। वेलकम टू द शो।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।

0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: राइट जी, मेरे जाने का टाइम हुआ है। आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।

वाणी आकाशवाणी 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं ज़रीन आपके साथ। सोचिए आप एक किताब पढ़ रहे हो और उसे वापस पलटने का विकल्प ना हो, कोई ऑप्शन ना हो, तो आप उसे कितना ध्यान से पढ़ोगे? बस यही ना जिंदगी है। इसलिए जिंदगी एक बार मिली है, जैसी मिली है जी लीजिए। लाइफ बहुत खूबसूरत है।

जब कोई आपका अपना आपके पास होता है, आपके साथ होता है, तो ज़िंदगी कितनी खुशगवार लगने लगती है ना। और हमें भी जब आपकी याद आती है तो हम ऐसे ही दौड़े चले आते हैं आपके अपने शो में, जैसे हम प्यार से कहते हैं आपकी याद आती रही। प्यार ना सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, प्यार एक एहसास है जो हमारी ज़िंदगी को मायने देता है, खुशी और अपनापन देता है। और यू नो, जब हमें किसी का प्यार और साथ मिलता है ना, तो मुश्किल वक्त भी आसान सा लगने लगता है। प्यार का मतलब महज पाना नहीं, देना है। किसी की परवाह करना, उसकी इज्जत करना, उसकी खुशियों में साथ देना। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हम यहाँ आते हैं और आप वहाँ से हमें सुनते हैं।

तिश्नगी रोज़ मुलाकात में रह जाती है, मेरी हर एक बात कहीं बात में रह जाती है। इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी का आलम यह है साहब कि सुबह के गम शाम को पुराने हो जाते हैं। तो ये अगला ट्रैक आपके लिए लेकर आई हूँ, प्रोग्राम आपकी याद आती रही, सुन रहे हैं आप ज़रीन के संग। के की शानदार आवाज़ में ये बहुत ही सूदिंग ट्रैक सिर्फ आपके लिए।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना

0: ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: हमारे आसपास बेशुमार आदमी है, भीड़ इतनी ज्यादा है कि हर एक का हिसाब रखना मुश्किल है। लेकिन इन सब में अजीब बात क्या है? इन सब में अजीब बात यह है कि इसी भीड़ के बीच इंसान सबसे ज्यादा अकेला है आजकल। किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी के कानों में एयरफोन है, किसी की जिंदगी ऑनलाइन है, पर दिल अब भी किसी अपने की आवाज को ढूंढता रहता है। कभी आपने सोचा है कि आखिरी बार आपने बिना किसी वजह कब किसी का हाल पूछा था? शायद हम बातें करना भूल गए, कुछ सुनना भूल गए। शायद रिश्ते अब टाइप किए जाते हैं, महसूस नहीं किए जाते। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, आपके सीने में एक प्यारा सा दिल है, तो बस इन लम्हों को जी लीजिए।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। किसी ने खूब कहा है कि अजीब चाहत है इस दिल की, सोचता है मोहब्बत भी करे और आज़ाद भी रहे।

म्यूजिक की बहुत अहमियत है जिंदगी में। ये संगीत आपको तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना सिखाता है। संगीत जितना अर्थहीन है उतना ही अर्थपूर्ण भी है। जहां लफ्ज नाकामयाब हो जाते हैं वहां बस संगीत रह जाता है। इनफैक्ट सुखी पलों का सच्चा साथी है संगीत, क्योंकि ये दुखी दिलों को अपना सा लगता है। क्या मानते हैं आप? अगला ट्रैक बेहद खूबसूरत कुमार सानू की आवाज़ में आप तक पहुंचा रहे हैं, सैनिक फिल्म का ये गाना।

तो बस ये कहना चाहेंगे कि ये मेडिसिन जो है संगीत वाला, ये मन के तमाम रोगों को ठीक कर देता है, इसलिए गाने हमेशा सुनते रहिए। इजाजत चाहती हूँ फिलहाल। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि

0: ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिग्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीकी राजनयिक को बताई गई। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकानो यामागुची से होगा। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अकानो यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराया। वहीं पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और MR अर्जुन की जोड़ी आज हार करके बाहर हो गई है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सैम मेजबान कनाडा का मुकाबला बोसेनिया हर्जोगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे खेला जाएगा। 10वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला आज 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारत इस विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में करेगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में भी तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिर

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के

0: में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ ना मेरा शेर मुकम्मल कर दो। आप सुन रहे हैं रंगे महफिल।

गुजरो ना बस करीब से ख्याल की तरह, आ जाओ ना जिंदगी में किसी नए साल की तरह। कब तक तने रहोगे यूं ही पेड़ की तरह, झुक कर गले मिलो कभी तो डाल की तरह। आंसू छलक पड़े ना फिर किसी बात पर, लग जाओ मेरी आंखों से रुमाल की तरह। आप सुन रहे रंग महफिल जरी के संग।

आप सुन रहे हैं रंगे महफिल जरीन के संग। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है नफ़रतों में दर्द होता है, कुछ मोहब्बत ना बड़ी कमाल की होती है। सांस थम जाती है पर जान नहीं जाती, दर्द होता है पर आवाज़ नहीं आती। अजीब लोग हैं इस ज़माने में, कोई भूल नहीं पाता और किसी को याद नहीं आती।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। मैं इस वक्त आपके साथ जर्रीं। मोहब्बत हमेशा मुकम्मल हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी अधूरी कहानियाँ ही सबसे खूबसूरत एहसास छोड़ जाती हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में बस मौसम की तरह आते हैं, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी बारिश और ढेर सारी यादें देकर चले जाते हैं। वैसे एक बात मानिए, कुछ रिश्ते उम्र भर साथ नहीं चलते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेमकसद होते हैं। कुछ न कुछ मकसद तो ज़रूर छुपा होता है किसी भी रिश्ते के पीछे।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

इस खूबसूरत महफिल को गज़लों से सजा कर, हम और खुशनुमा बनाकर, सजा सवार कर आप ही के लिए तो लेकर आते हैं। उदित जी की आवाज़ में आप

मोहब्बत में कोई खत मुख्तसर अच्छा नहीं लगता, लिफाफे में फकत तितली का पर अच्छा नहीं लगता। तुम अपने दिल के कैमरे में मुझे क्यों कैद करते हो? मुसाफिर हूँ, मुसाफिर को तो घर अच्छा नहीं लगता। जा रही हूँ इस वादे के साथ कि अगली दफ़ा इसी खूबसूरत मोड़ पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए रंग महफिल। शब खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक

चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहां के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:05 और 40 सेकंड हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो, और आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसे गाया है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने, और फिल्म का नाम है उत्सव।

और इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं नमक हलाल का ये गीत, आवाज़ आशा भोसले और बप्पी लहरी की।

की मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते,

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल ने, फिल्म का नाम है जंगल लव।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: बारह बजकर 32 मिनट और 5 सेकंड हुए हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीरो आर शो, मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे आवाज़ दी है विपिन सचदेवा ने, फिल्म का नाम है जुनून।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आप तो ऐसे ना थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसका गीत अब आप सुनेंगे, और इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म जुर्माना में।

और दोस्तों, जीरो आर प्रोग्राम के आखिर में आइए आपको सुनवाते हैं रूप तेरा मस्ताना फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास

पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहाँ के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों का कड़ा विरोध किया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय दल शामिल था। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:05:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुहानी रात, और इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, अब एक नए समय पर, हर गुरुवार शाम 4 से 5 FM रेनबो पर।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारी

की समीक्षा की। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मिजोरम में राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने अपने प्रवक्ता के ललतलुआ अंगकीमा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट ने अधिवक्ता और लेखक जोनथन संगीव हमार को मैदान में उतारा है। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक। प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों में 3

भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामूहिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। मिजोरम में राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने अपने प्रवक्ता के ललतुंग अंकिमा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट ने अधिवक्ता और लेखक जोनथन संगी हमार को मैदान में उतारा है। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज PV सिंधु का मुकाबला जापान के विश्व चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: कहानी।
1: कॉलेज के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक।
0: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने ले रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
1: इसके आगे मैं नहीं बता सकती, इनसे ही पूछ लो।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड

0: और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र

0: प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट PUG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने कहा कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। आज राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।